हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: एक नए इतिहास के
6: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर,
7: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
6: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
7: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

0: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा।
1: और क्या, हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी, अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
0: अच्छा
1: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और

0: वाहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
1: अरे वाह,
0: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
1: शुक्र है डबल इंजन सरकार है।
2: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
3: सुप्रभात, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड में, कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ है आप, और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में, हमारे एफएम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
4: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
3: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
4: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में, हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
3: बिल्कुल, एग्जैक्टली।
4: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उन पे कभी अवेयर नहीं होते, उन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस रहेगा और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
3: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
4: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
4: टाइम तो होना ही चाहिए।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें। okay. उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
3: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
4: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
3: ठीक है,
4: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है। हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
3: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करूं अपनी वुमेन्स की, अपनी उन घर की महिलाओं की, जो सुबह कामकाज में लग जाती हैं, उठते ही अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाती हैं और पूरा दिन बहुत बिजी रहती हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगी? अगर वो उठ रही हैं तो कैसे दिन की शुरुआत एक हेल्दी करें?
4: हाँ, अब जैसे उनका स्कूल बच्चों को भेजने का शेड्यूल होता है
3: जी,
4: तो वो सुबह के टाइम तो थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड्स को भेजने की, ऑफिस भेजने की ड्यूटी हो जाती है।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो 15 मिनट्स प्राणायाम करें सुबह मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर पीकर, तो उनके लिए सफिशियंट रहेगा। उसके बाद वो 40 मिनट्स का अपना वर्कआउट जरूर करें, जैसे फैमिली से फ्री हो गए थोड़ा सा और अपना ऑफिस हस्बैंड चले गए, तो आपका 10 बजे के बाद आपका टाइम फ्री हो जाता है थोड़ी देर के लिए। आपको 40 मिनट जरूर निकालने ही चाहिए अपनी एक्सरसाइज के लिए।
3: क्या बात है, तो लेडीज अब जो है आपको गाने सुनने के साथ साथ खुद को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आपको रुचि मैम को फॉलो भी करना पड़ेगा ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके, क्योंकि हर चीज, हाँ ये चीज मुझे इसलिए भी याद आ गई क्योंकि हमारी एक हैबिट बन गई रुचि मैम कि हम हर चीज को इंटरनेट पे सर्च करते हैं, हमें लगता है यूट्यूब पे इसका कंटेंट होगा, गूगल पे हमें ये मिल जाएगा, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं मिल तो जाता है, बट जो सही डायरेक्शन है, सही फॉर्मेट है, वो नहीं मिल पाता है।
4: सही,
3: एब्सोल्युटली, जब तक हमें सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, हम तो कुछ भी करेंगे और उसके नेगेटिव असर भी होते हैं शायद।
4: सही बात है, अगर आप अंडर गाइडेंस कोई एक्सरसाइज करोगे तो भाई आपको एक देखने वाला, सुपरवाइज करने वाला है, तो आप अच्छे से कर पाओगे।
3: राइट,
4: इन केस आपने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली देखकर, तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है।
3: 100% बिल्कुल। तो इसीलिए
4: देखिए, किसी की बैकएक है और उसने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली, तो उसकी बैकएक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
3: अच्छा मैम, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। योगा के बारे में हम ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं और ये टॉपिक ऐसा है जिसपे हम शायद जितनी बातें करें वो कम होंगी, करेक्ट? बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, योगा जब हम करते हैं तो इससे कौन कौन सी चीजें जो हमें लगता है कि रिलीव हो सकता है, उसमें हमें आराम मिल सकता है, वो कुछ चीजें हमारी छूमंतर भी हो सकती हैं?
4: देखिए, जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीजेस हो या हमें बॉडी के बॉडी एक्स होते हैं, बॉडी लेडीज की क्या आदत होती है, जरा सा हमें बैक पेन हुआ या शोल्डर पेन हुआ या नेक पेन हुआ तो फटाफट पेन किलर
3: ले लिया
4: और बस हमारा हो गया, नेक्स्ट डे उनको वही प्रॉब्लम दोबारा
3: रिपीट होने लगती है। बिल्कुल।
4: अब मेरे यहाँ जितने भी योगा स्टूडियो में लोग आते हैं, कोई भी अब एंटीबायोटिक नहीं लेता, सब लोग पेन फ्री हो गए हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ मेरा जोर रहता है और मैं सभी को इस चीज के लिए मोटिवेट भी करती हूँ, क्योंकि अब किसी को सियाटिका पेन और बैक पेन वगैरह सब सबके रिमूव हो गए हैं।
3: That's very nice. अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, और कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेडिसिन ले लेके परेशान हो रहे हैं और अंदर जाके वो प्रॉब्लम भी कर रही हैं।
4: और फ्रोजन शोल्डर और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स, तो मैंने फ्रोजन शोल्डर, सियाटिका, स्लिप डिस्क, ये प्रॉब्लम्स तो मैंने सभी लोगों की हील कर दी है।
3: वाह, लवली मैम, बहुत ही बढ़िया, ऐसे लोगों के लिए सल्यूट जाता है, प्लीज मैम।
4: बाकी जैसे हम लोग, मैंने थायराइड के भी 2-3 पेशेंट्स को ठीक किया है।
3: वाओ।
4: तो उनका थायराइड बहुत ज्यादा था, तो अब उनका जब वो नॉर्मल, मैं उनसे कहती रहती हूँ, उन्होंने मेडिसिन नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी जब वो मेरे पास आए थे।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: तो मैंने उन्हें मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं बोला था, साथ में उनकी मेडिसिन भी चल रही थी, मैंने उनको डाइट गाइडेंस दी, मैं सबको पर्सनलाइज्ड डाइट गाइडेंस देती हूँ, तो डाइट गाइडेंस दी, फिर उसके बाद मैंने उनको योगा कराया, तो उससे उनका हील हो गया। काफी चीजें हम हीलिंग भी साथ में कराते हैं, काफी चीजें, खाली एक योगा ही नहीं, काफी चीजें कराते हैं, तो उससे वो लोग हील हो जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं।
3: भाई मैं तो मैम की बातों में खो गया हूँ भाई, मुझे लग रहा है मुझे कोई जगाओ, मेरे को उठाओ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी प्यार से एक्सप्लेन कर रही है ना, आपको सुनने में जितना मजा आ रहा है, मेरे को देखने में और उनकी बातें सुनने में उतना ही मजा आ रहा है। एक तो नाम आनंद, ऊपर से बातें आनंदित वाली हो रही है, और जब बात हेल्थ की होती है तो डबल आनंद आता है, क्योंकि हमें, हम कुछ भी करें बट अपनी हेल्थ के लिए ना हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले। अच्छा मैम, टाइम से मुझे याद आया एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना रैंडम आते हैं, सॉरी, वो ऑन द स्पॉट चलता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं पूछ रहा था, क्या योगा करने का सिर्फ मॉर्निंग ही है या फिर हम शाम को भी कर सकते?
4: नहीं, हम इवनिंग में भी कर सकते हैं।
3: ओके।
4: हाँ, उसके पहले सिर्फ हमें 2.5 आवर का थोड़ा सा बीच में फूड अवॉइड करके 2.5 आवर का ब्रेक लेना होगा।
3: उसके बाद हम कर सकते हैं।
4: ऑल राइट,
3: मतलब फिर कोई इशू नहीं है। हाँ।

0: डोंट वरी, आप बने रहो और सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6। योगा एक्सपर्ट रुचि मदान जी मेरे साथ हैं, मेरा नाम आनंद है और आपको आनंदित करने के लिए, आपकी हेल्थ पर और ढेर सारी बातचीत करने के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ एक फैंटास्टिक मैम को जिनका नाम रुचि मदान है। सो ग्लैड यार, क्योंकि उनसे मैं बात करता रहता हूँ, उनका मैं जब भी स्टेटस देखता हूँ मुझे भी एक मोटिवेशन आता है, बट हाँ वो बात अलग है, मैं थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूँ, बट अब नहीं भूलूंगा क्योंकि अब मैम मेरे को मंत्र सिखा के जाने वाले हैं यहाँ पे लाइव। अच्छा मैम, ओम चेंडिंग की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वंस अगेन वेलकम बैक। और ओम चेंडिंग की अगर बात करें तो ओम चेंडिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं?
1: देखिए, ओम चैंटिंग में रोज अपने स्टूडियो जब हमारे साथ योग कराते हैं हाँ जी, तो हर बैच में ओम चैंटिंग अलग से होता है।
0: ओके।
1: क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल ओमकार मंत्र है जो मतलब हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से ही रिलेटेड है।
0: ओके।
1: तो ओम का जाप करने से हमारी 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती
0: है। वाओ, एक बार रिपीट कर देंगे, मैं भूल जाऊंगा, दोबारा बता दो आप।
1: 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं ओम का उच्चारण।
0: अरे वाह, कितनी देर तक कर सकते हैं ओम चैंटिंग?
1: ओम चैंटिंग आप जैसे हम लोग तो 3 times कराते हैं, 3, 5, 7 इस तरीके से,
0: मतलब odd, अलग अलग कैटेगरी
1: odd figures में ओम चैंटिंग कर सकते हैं।
0: ऑल राइट, ठीक है।
1: तो इसको करने का भी तरीका होता है जो हम मतलब मेथड से कराते हैं। ओम चैंटिंग से हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेशन हो जाती है,
0: ठीक है।
1: तो अभी क्या कहते हैं, हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कराते हैं। Okay. और इससे ओम चैंटिंग से रिलेटेड हम लोग अपना प्रज्ञा योग भी कराते हैं। तो प्रज्ञा योग इतना पावरफुल है जो कि ओम से ही कनेक्टेड है।
0: ऑल राइट,
1: तो प्रज्ञा योग में हम क्या करते हैं, उससे हमारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल है वो, और हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है उससे, हमारा कॉन्सेंट्रेशन मेंटल पावर इम्प्रूव होती है प्रज्ञा योग से, जो कि हमारे एटमोसफेयर में ऊपर जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे हमेशा सनातन धर्म में ये माना जाता है कि हमेशा ओम की वाइब्रेशंस होती रहती है,
0: चलती रहती है।
1: तो उसकी वाइब्रेशंस को प्रज्ञा योग में हम अपने भीतर लेते हैं।
0: ओके।
1: तो उसके करने के बाद जब भी वो सब लोग करते हैं, उसके बाद सब लोग, एक तो उससे बॉडी की टोनिंग तो होती ही है जो प्रज्ञा योग हम करते हैं, और उसके साथ हमारी मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, और सब लोग इतने हैप्पी हो जाते हैं उसको करने के बाद, बहुत सब लोग रिलैक्स और काम फील करते हैं।
0: दैट्स वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है रुचि मैम से एक बार ओम चेंडिंग करा ले क्या? क्या हम अभी लाइव चेंडिंग कर सकते हैं ओम की? पॉसिबिलिटी है,
1: कर सकते,
0: ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आंखें खोल लूंगा। वेल, आंखें मीच के ओम चेंडिंग करते हैं, आंखें खोल के पहले ये बताओ।
1: देखिए, जब हम प्रेयर करते हैं स्टार्टिंग में,
0: ठीक है,
1: हमारा सेशन प्रेयर से स्टार्ट होता है।
0: हाँ जी।
1: तो हम जब प्रेयर करते हैं तो हम आईज क्लोज ही रखते हैं,
0: ठीक है,
1: आईज नहीं खोलते।
0: कुछ लोग कहते हैं जब हम आईज क्लोज करते हैं या जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो बड़ी नेगेटिविटी मन में आने लगती है, हमारा मन बहुत भटकता है।
1: एक्चुअली जिनको थोड़ा सा मेंटली जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, जिनको थोड़ा डिप्रेशन का इश्यू होता है, तो वो लोग आईज क्लोज करके नहीं कर पाते। तो उनको मैं अलाउ कर देती हूँ कि आप आईज खोल के ही कर लो, क्योंकि उनको हेडेक या ये सब प्रॉब्लम
0: सारे लगते हैं। राइट।
1: लेकिन एक मेरे पास डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं, तो उनकी वो अब काफी इम्प्रूव्ड है और उनको अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती।
0: अरे वाह, ब्यूटीफुल। तो हम भी ट्राई करके देखें मैम एक छोटा सा, कितनी देर तक करना होगा?
1: आज तो हम शॉर्ट करेंगे ना,
0: ठीक है। तो ठीक है, रुचि मैम मुझे सिखाने वाली है ओम चेंडिंग। आई एक्सक्लूसिवली लाइव रेडियो पे पहली बार आप ओम चेंडिंग सुनोगे, अनबिलीवेबल यार, मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही, कैसे करेंगे हम, कैसे शुरू करना है आप बताइए। और दोस्तों आप भी हमारे साथ ट्राई करिएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं प्लीज ट्राई करिए, आपको बहुत आनंद आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, एंड आपको बहुत मजा आएगा। तो मैम शुरू करें? ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, आंखें बंद कर दी?
1: सबसे पहले हम लोग, आज तो हम लोग चेयर पर बैठे हैं,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते।
0: अच्छा, अलाउ है ये भी?
1: हाँ जी, हाँ,
0: ओके, ठीक है,
1: चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं वो अपने पृथ्वी तत्व से जुड़े और जमीन पर बैठ कर ही करें।
0: ठीक है, ठीक है।
1: तो सबसे पहले हम अपनी कमर, गर्दन और कंधे सीधे करके बैठ जाते हैं, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं,
0: ओके,
1: अपनी आईज को क्लोज करते हैं,
0: ठीक है,
1: और सबसे पहले हम 5 breaths लेते हैं,
0: ओके,
1: अपने आप को थोड़ा सा ऊर्जान्वित करने के लिए 5 breaths लेते हैं, लॉन्ग एंड डीप, इनहेल एंड एक्सहेल,
0: ओके,
1: लॉन्ग एंड डीप, इनहेल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप,

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

ने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: 44 बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
6: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशी सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ते ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening.
9: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, जामा टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
7: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
8: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
8: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कहते हैं कि फोकस ऑन योरसेल्फ, क्योंकि पीपल कम एंड गो, है ना, लोग तो आते जाते रहेंगे। जब आप अपने आप पे फोकस रहेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे, तो जिंदगी में आपको सफलता भी मिलेगी और आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। तो लोगों के ऊपर ध्यान ना देकर ना अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ, आप जो करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने ध्यान देना है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ा जो है प्रधान है, तो अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर कर्मा, है ना। जब आप अपने कर्मों में बिलीव करते हैं तो आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो आप एक्चुअली चाहते हैं ना। एंड नेवर स्टॉप लर्निंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जिंदगी में कभी भी ना अपनी सीखने की इच्छा को कम नहीं करना है। जिंदगी में जितना आप सीखेंगे उतना आप नया, अच्छा और बेहतरीन, कहते हैं ना, लर्निंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो हमारी जिंदगी का पार्ट है। जिंदगी में इंसान हर टाइम सीखता ही रहता है, हर एक नया दिन कुछ ना कुछ लेकर आता है, नई नई चीजें सिखाता है। तो बस वही चीजें हैं, जब आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं आप कि भैया आप जिंदगी में वहां पहुंच रहे हैं जहां एक्चुअली आप जाना चाहते हैं। हेलो, हाय, सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर आरजे आनंद के साथ। श्रोताओं, आई होप सब बढ़िया होंगे, ब्यूटीफुल होंगे और एकदम अपनी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कर रहे होंगे। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 8:21:12। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे 9837896896। स्टूडियो का नंबर बहुत सिंपल है। प्यारे प्यारे संदेश जल्दी से पहुंचाइए। एंड डोंट बिलीव इन योर लक, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो लक पे बिलीव करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा बिलीव करना है अपने हार्ड वर्क पे, है ना। जब जो हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत आगे पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे पहुंचेंगे। एक बेहतरीन गाना आपके लिए निकाल दिया, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और आज के सफर की शुरुआत करेंगे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
4: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
3: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
4: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
3: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
5: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
6: अरे सर वही बात है जो आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल आनंद के साथ ट्यूनिंग किया है आपने FM मुरादाबाद 89.6 आपकी शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। वक्त हो गया है 8:30। एक अच्छा गाना निकाल दिया, इस गाने के बाद बताता हूँ आज का दिन क्यों खास है और क्या कुछ स्पेशल चल रहा है हमारे आसपास में। सारी कड़क अपडेट आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर, तो दिल से कहो स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास, सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6 विद RJ आनंद, क्योंकि ये है आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन अपने दिन की शुरुआत कीजिए ना अच्छे गानों के साथ विद RJ आनंद। कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करो मुझे 9837 896 896।

क्या बात है यार, बेहतरीन जी, बहुत ही प्यारा गाना, फ्लैशबैक में ले गया ये सॉन्ग, मजा आ गया मुझे इस गीत को सुन के, आई एम श्योर आपको भी आ गया होगा। ढेर सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ गए। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? सुबह सुबह आपकी आवाज सुन के बहुत एनर्जी मिलती है। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग जी, ये मैसेज मेरे पास पहुंच गया है कुंदनपुर से, इन्होंने लिखा है सुनीता मेरा नाम है। गुड मॉर्निंग सर। साथ में कविता जी का मैसेज पहुंच गया है मेरे पास लाइन पार से। हेलो सुप्रभात आनंद जी, गुड मॉर्निंग, इस वक्त हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये इन्होंने कहाँ से मैसेज किया है? पुतली घर रोड से, नाम भी नहीं लिखा है, बताइए। श्रोताओं, आप भी अपने प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर मैसेज। अगर आप भी हमें बढ़िया बढ़िया मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमें मैसेज करना है यार 9837896896 पर व्हाट्सएप करना है। एक मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज रिंकू। हाय रिंकू, ये लिखते हैं कल करे सो आज करे सो अब, क्या बात है यार, हमें किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, जो काम हमें आज करना है वो आज ही करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। और भैया देखो, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो है आज का दिन बहुत ही खास है, आज 4 तारीख हो गई है जून की ना, तो आज का दिन क्यों खास है, चलिए इस पर एक नजर डालेंगे।

श्रोताओं, आपको पता है ना, हर दिन का इतिहास बहुत खास होता है। हर दिन की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आज की तारीख में क्या स्पेशल है, यही हम आपको बता रहे हैं, यही आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आज के दिन का पूरा कोटा, क्या कुछ खास है आज की तारीख में, क्यों महत्वपूर्ण है आज की ये तारीख, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। चलिए एक नजर डालेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, चार दिन, जो ये 4 जून का दिन है ना, अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि 4 जून के दिन भारतीय और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का जो है वैसा वर्णन किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो अब एक एक करके हम आपको बताते हैं क्या कुछ खास रहा आज ही के दिन। और आज का आज के दिन तमाम सारे बहुत प्यारे प्यारे कह सकते हैं हम सेलिब्रिटीज का भी बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं श्रोताओं।

श्रोताओं, आप आपको बता दें, आज के दिन सन 2008 में हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों को देने की भी घोषणा की थी आज ही के दिन। और आज के दिन सन 2006 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था श्रोताओं। और आपको बताते चले, आज के दिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री अमृतन सेन ने जो है पश्चिम देशों को भारत और चीन से सीख लेने की सलाह दी थी श्रोताओं आज ही के दिन। और आपको बता दें, 4 जून को कुछ खास महान कलाकारों का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले प्रवीण भगत जी का नाम आता है, 1988 में इनका जन्म हुआ। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं श्रोताओं, आज के दिन जन्म हुआ इनका। और आपको बता दें, आज के दिन 1946 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक में से एक रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनका भी जन्म हुआ आज के दिन। और 1936 में नीतू जी का जन्म हुआ था, जो हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, इनका भी जन्म आज के दिन हुआ श्रोताओं। और आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण दिन और हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, उस पर हम ज़रूर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। क्या कुछ महत्वपूर्ण आज सेलिब्रेट किया जाता है श्रोताओं, आपको बताते चलें। अभी फिलहाल वेदर की अगर बात करूं तो वेदर क्या कहता है, मौसम के हालचाल क्या कह रहे हैं। एक तो यार, रात को 32 किलोमीटर चालू बहुत हो रहा है, रात में लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इतनी लंबी लंबी तरीके से गुल हो जा रही है कि क्या बताएं। रात में कहाँ कहाँ पर लाइट गुम थी ज़रा बताइएगा ज़रूर। एक तो मच्छर इतने परेशान करते हैं, ऊपर से लाइट इतने लंबे समय तक चली जाती है, क्या बताएं यार, आखिर ये लाइट को हो क्या रहा है। फिलहाल करंट टेम्परेचर दिखा रहा है 31 डिग्री सेल्सियस, और अगर बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस आज, यानी कि 40 तक गर्मी अच्छी खासी पड़ने वाली है मेरे भाई, और अपना ध्यान ऐसे में रखना है आपने। फिलहाल बात करें आज की ह्यूमिडिटी की, तो 65% दिखा रहा है ह्यूमिडिटी, यानी कि आपको थोड़ी चिपचिपी वाली गर्मी मिलने वाली है, हल्का फुल्का पसीना भी आपको आ सकता है। बाकी एयर क्वालिटी मेरे को दिख रही है कुछ सही और ख़ास नहीं नज़र आ रही है, बट फिर भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको विजिबिलिटी की, अगर मैं बात करूँ तो आज का विजिबिलिटी 10 किलोमीटर दिखा रहा है, बहुत ओ माय गॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल वेदर की बात तो हो गई है, लेकिन अभी अगले कुछ घंटों में बारिश का एक बार फिर से अनुमान लगाया जा रहा है श्रोताओं, इस पर ज़रूर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास मैसेज आ गया है। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं। सुप्रभात, मेरा नाम है, क्या लिखा है इन्होंने अपना नाम, नदीम। ऑलराइट नदीम जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त जयंतीपुर से। लिखते हैं, आनंद जी सुप्रभात, सुबह सुबह आपके कार्यक्रमों को सुन के बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां आपके स्टेशन से मिलती हैं, और ये जानकारियां कहीं ना कहीं हमारे डेली दिनचर्या में हम इनको यूज़ भी करते हैं, और बहुत ही अच्छे गीत भी आपके स्टेशन से प्ले होते हैं, बहुत मज़ा आता है सुनकर आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, आप जो है इतनी शिद्दत से और इतनी प्यार के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें तो बस आपका ये जो साथ है वही चाहिए दोस्तों, और जब आपका साथ मिल जाता है तो और भी खूबसूरत हो जाता है हमारा ये प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, एक और प्यारा सा गीत आपके लिए निकाल रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। वक्त हो गया है इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 8:43, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
7: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
8: क्या मेरी कसम,
7: मिस कर दिया तो रीलोड।
9: चाय चाय चाय,
7: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
10: तमाम सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं आप भी अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं मेरे नंबर के जरिए 9837896896 के माध्यम से। बहुत सारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं।

0: श्रोताओं, अभी वक्त है आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने का। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इन्फॉर्मेशन से भरा है छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। इसको सुनेंगे, इसके बाद हम वापस आएंगे तो आपको कुछ और खास जानकारी देंगे। जरा सी देर में मिलता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सब के लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आखिर वो बात क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के। इतना मुनाफा, कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रूपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ, निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, OTP, UPI पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें, जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें, शक हो तो नहीं कहना सीखें, ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है। तो राज फिलहाल इस शो से अभी के लिए अलविदा लेना चाहता है और जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहता है कि लालच बुरी बला है। अगर कहीं पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा 2 गुना 4 गुना इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इन्वेस्ट करने से पहले कृपया करके जांच कर लें कि क्या आप सही जगह निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं। तो अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद। जल्दी मिलूंगा कुछ और ऐसी ही इम्पोर्टेंट बातों के साथ।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: अभी आपने प्रोग्राम सुना, अभी आपने छोटी सी जानकारी सुनी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी श्रोताओं। बस अब यही कहना चाहते हैं हम भी कि ऐसी जानकारियों के लिए बस आपने ट्यून इन रहना है FM मुरादाबाद पे, क्योंकि ये वो जानकारियां हैं जो कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन में काम आती हैं, आपके डेली दिनचर्या में काम आती हैं। श्रोताओं, छोटी छोटी जानकारियां हैं, इनको अवॉइड नहीं करना है, अच्छे से सुनना है और उनको फॉलो भी करना है।

0: घड़ी में कैसे 9 बज गए भाई, पता नहीं चल रहा है। और ये जो टाइम है ना, ये टाइम वो होता है जिसमें हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत तो करती करते हैं, लेकिन आपको ढेर सारी जानकारियां भी देते हैं। कैसे बताता हूँ।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
8: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

वेलकम बैक है सुप्रभात, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 थर्सडे की सुबह। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही बढ़िया सा दिन है यार, बहुत ही प्यारी सी तारीख है आज, 4 तारीख कैसे हो गई ये पता नहीं चल रहा है ना। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं भैया कि अगले 24 घंटों में दस्तक देगा मॉनसून। यस, तो भैया आपने क्या करना है ना, आपने बस इन चीजों को ध्यान में रखना है, मतलब जो अपडेट में दे रहा हूं आपको बता दें। उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में गर्मी का दौरा फिर से शुरू हो गया है और कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। इसी बीच मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है भाई साहब। हाँ जी, आपको बता दें IMD के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जो है भाई साहब बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 7 दिनों तक जो है बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभी जो अगले 7 दिनों की ये इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, तो फिलहाल केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बताई जा रही है श्रोताओं। लेकिन इसके अलावा इस पूरे हफ्ते में जो है उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी भारत, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में 40 से 50 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला तूफान, आंधी और ये हवाएं भी बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि गरज चमक के साथ अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो मतलब बारिश जो है सिर्फ केरल या कर्नाटक में नहीं, उत्तर भारत में, और मैंने आपको बताई दिया कि इन राज्यों में भी बारिश होने की संभावना तो है ही। लेकिन उसके साथ ही साथ बस इतना ही कहना चाहते हैं कि भैया आप अपना ख्याल रखिए। बाकी भारत में आज भी पहुंचेगा मानसून, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया है श्रोताओं। आपको बता दें जैसे गर्मी अपने पीक पर है, वैसे वैसे मौसम विभाग की तरफ से कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ भारी बारिश, आंधी तूफान जैसी स्थितियां रहने का अनुमान बताया जा रहा है आज 4 जून को श्रोताओं। चलिए गर्मी से राहत तो भाई मिली जाएगी, लेकिन ये जो लाइट है ना ये बड़ा परेशान कर रही है बॉस आजकल। चलिए अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या आपका आधार नंबर आप भूल गए हैं तो कैसे आप इसको रिकवर कर सकते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे और कुछ और खास इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं भी जरा सी देर में, जो आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है और बहुत ही काम की होने वाली है। देखिए जो लोग नींद पूरी नहीं करते ना वो कौन कौन सी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे श्रोताओं। लेकिन उससे पहले हम आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाना चाहते हैं, मतलब आई मीन टू से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा मैं पता करता हूँ कि कितने लोगों को पता है, आज का मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। कितने लोगों को पता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, जरा मुझे इसका आंसर करो बिना गूगल किए 9837896896। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, बच्चा पार्टी, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जरा मुझे व्हाट्सएप करके बताओ क्या है इसका करेक्ट आंसर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। कितने लोगों को पता है जरा मैसेज करेंगे आज की सुबह और देखते हैं भाई आप अपना दिमाग कितने अच्छे से चला पाते हैं और कितने लोगों को पता है ये सही जवाब। 9837896896। अभी लौट कर आता हूं, उसके बाद और इन्फॉर्मेशन है जो आप तक हौले हौले डिलीवर करता रहूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ब्यूटीफुल ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर, आप एंजॉय कीजिए। बेरी दियाल और हिमानी कपूर की आवाज, बैंड बाजा बारात से दम दम, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और तीसरे घंटे की शुरुआत करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, वेरी गुड मॉर्निंग।

सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम आनंद है। अभी लौट कर आता हूं तो बताता हूं, एक बहुत ही खास कैंपेन होने वाला है 20 जून को मुरादाबाद के अंदर, स्पेशली लेडीज के लिए ये होने वाला है। एंड इस संडे 7 जून को भी एक बहुत ही अच्छी मैराथन होने वाली है मुरादाबाद के अंदर, कंपनी बाग में इसकी शुरुआत होगी। कौन सी मैराथन होने वाली है, क्या कुछ स्पेशल है, दो कड़क अपडेट लोकल फॉर वोकल की आपको पता लगेगी। इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पे बने रहिए मेरे साथ, एक बहुत ही बेहतरीन गाना। इस गाने के बाद वी कम बैक, डोंट

भैया मेरा भी सलाम नमस्ते कबूल कीजिए जी। मैंने कहा क्या हाल चाल है, असलाम तुम जनाबे अली, सब बढ़िया चल रहा है ना, खुशामुदीन, सब कुछ फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छी बात है, सब बढ़िया रहना चाहिए। आनंद के साथ हैं आप, लेडीज एंड जेंटलमैन, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। मैंने आज आपसे पूछा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर आपने मेरे को करना है। भाई हेलो हाय गुड मॉर्निंग तो आप पहुंचा ही रहे हो, ढेर सारे मैसेज भी कर रहे हो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब कितने लोग दे रहे हैं ये बहुत मैटर करता है आज की सुबह। आप क्या कहा आनंद, सवाल में मुझे पता ही नहीं है, मैंने रेडियो अभी ट्यून इन किया है, तो कोई टेंशन नहीं है भाजी। आज मैंने पूछा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको मुझे इनमें से जो है, चलिए मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपने शॉर्टलिस्ट करके मुझे आंसर करना, मतलब सही जवाब आपने जो है, अब तुक्का ही बढ़ा लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, जरा पता तो लग जाए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आपने मेरे को मैसेज करके बताना कि भैया भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, चार ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, या ऑप्शन सी पीपल, या ऑप्शन डी आम। इनमें से कौन सा वृक्ष है जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग मुझे सही जवाब पहुंचाएंगे आज की सुबह, और कितने लोगों को पता है व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपको पता है तो मैसेज करो यार, 9837896896। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बर्गर, ऑप्शन सी पीपल, या ऑप्शन डी मैंगो, बोले तो आम। फल की बात नहीं कर रहा हूँ, पेड़ की बात करो। बॉस देखते हैं भाई, आई एम श्योर आप लोग मुझे जरूर सही जवाब पहुंचा दोगे, मेरे को पूरा यकीन है। बहुत सारे श्रोता मेरे साथ जुड़े हैं, पल्लवी मेरे साथ जुड़ गई हैं आज की सुबह, लिखती हैं हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है। गुड मॉर्निंग जी, एक मैसेज आया मेरे पास, हेलो हेलो गजरोला से मैं बात कर रहा हूँ, हाय माय नेम इज हर्षदीप, हेलो हर्ष, थैंक यू सो मच कि आप गजरोला में सुन रहे हैं। एक मैसेज मेरे पास रामपुर से पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, आज रामपुर का वेदर बहुत ही अच्छा है, हम आपको सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज फातिमा, नॉर्मल फातिमा नाम लिखा है इन्होंने, शायद कोई नई श्रोता हमारे साथ जुड़ी है। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, हेलो जी, माय नेम इज क्या लिखा है इन्होंने, बुलबुल, ओके वेरी नाइस नेम, बुलबुल बहुत प्यारा नेम है, लेकिन वो इधर कोने में घुस गया था। बुलबुल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, लिखती हैं हेलो जी कैसे हो आप, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है आनंद, यू आर सो ब्यूटीफुल। अच्छा मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ यार, भाई मुझे मारो, क्या हो रहा है ये। चलो अच्छा जल्दी से मुझे आंसर बताओ बुलबुल, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यू कैन टेल अस योर राइट आंसर। चार ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, या ऑप्शन सी पीपल, या ऑप्शन डी मैंगो, यानी कि आम। इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, देखते हैं कितने लोगों को पता है सही जवाब, और कितने लोग पहुंचा पाएंगे मुझे राइट आंसर। आपको बता दें भैया, देश में महंगाई के बीच अब दूध की कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है बॉस। आपको बता दें बिहार के कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं, और राजस्थान जैसे कुछ बड़े राज्यों में जहाँ पर दूध की जो है भाई साहब कीमतें थोड़ी बढ़ गई हैं, और दूध के साथ पनीर और दही भी महंगा हो गया है। तो देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि अगर अब आप दूध, तो वैसे अपने उत्तर प्रदेश में भी महंगा हुआ है ना, 2 रुपए शायद बढ़े हैं, आपको पता हो तो, रिसेंटली मैंने बताया भी था भाई, जो चीज़ बढ़ रही है उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज के लिए महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है ना, कोई इसका तोड़ नहीं मिल रहा है, क्या ही किया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड के बारे में। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर गलती से किसी का आधार कार्ड खो गया है या आधार नंबर भूल गए, तो ऐसे में क्या करें, तो भैया UIDAI की जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको हेल्प लेनी है, यानी कि अपने यूजर्स के लिए उन्होंने एक ऐसी सुविधा दी है जिसकी मदद से आधार नंबर या फिर अपनी ID को आप आसानी से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छे से प्राप्त की जा सकती है। यस, अगर आपके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है आपस में, तो आप घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में अपना आधार नंबर वापस पा सकते हैं। ठीक है बॉस, अगर आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा आधार कार्ड की वेबसाइट पर, वहां जाके आपको लॉगिन करना होगा, और अगर आपका ईमेल या आपका नंबर मोबाइल जो रजिस्टर है आधार कार्ड पे, उसकी हेल्प से जो है आप वापस रिकवर कर सकते हैं अपना आधार कार्ड का नंबर। आपको बता दें भैया, देश में नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों को अब जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने अब उन गाड़ियों की समीक्षा कर रही है भाई साहब, जो लोग अभी तक टोल प्लाजा पर टैक्स जिनको नहीं देना पड़ता था, इस बदलाव का असर ये हो सकता है कि भैया आने वाले समय में ऐसे सरकारी वाहन और अधिकारी भी जो है जो निकलते हैं, उनको भी अब टोल टैक्स देना पड़ सकता है। चलो अच्छी बात है भैया, सबके लिए सामान्य रूल होने चाहिए, है ना, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अब जो है एक बढ़िया सा गाना आपके लिए निकाल रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, दो
कड़क अपडेट है लोकल फॉर वोकल में। एक तो 20 जून को बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है, एफएम मुरादाबाद ऑर्गेनाइज कर रहा है शहर के इन्फ्लुएंसर के साथ मिलके, क्या होने वाला है और इस संडे 7 जून को क्या स्पेशल मैराथन हो रही है मुरादाबाद में, इस पे बात करेंगे। और बाकी अभी बताता हूँ, अगर आप पपाये का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली रूटीन में कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, नींद की कमी अगर आपको हो रही है तो इससे क्या प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आरजी आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। यह है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग, वक्त हो गया है 9:22।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

देखो यार, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ना कोई जादू नहीं डाला है। जो भी जादू डालते हैं ना आप डालते हैं, आपकी बातों का जादू होता है मेरे ऊपर। तो भैया सुबह सुबह जो इतनी एनर्जी मेरे को मिलती है ना, वो आप लोगों की वजह से मिलती है, बिकॉज आप लोग इतने बढ़िया और बेहतरीन मैसेज करते हैं यार, जिसे मतलब जो है पढ़कर सुनकर फील कर मजा आ जाता है। वेलकम बैक है वंस अगेन, सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप, निकल चुके हैं अपनी गाड़ियों में, तो ऑल द वे बेस्ट जहां भी आप जा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं नई मरी, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, मुरादाबाद लाइन पार कुंदनपुर ढक्का से मैसेज कर रहा हूं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सर। हाय गुड मॉर्निंग, आई एम एकता फ्रॉम मंडी चौक। हाय एकता जी गुड मॉर्निंग।

एकता जी बहुत प्यारी बात आप लिखती हैं, आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बाकी मंडी चौक से जुड़ी थी रिहाना, मेरे साथ जुड़ी है रानी नांगल से। हमारे प्रिय मित्र जुड़ चुके हैं सहारनपुर से, जोन रोजी पलविलीज लिखते हैं, आनंद ब्रो गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग, स्टे ब्लस, एंजॉय योर डे विद हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। और साथ में लिखते हैं कि जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा पवित्र प्रेम करने वाला अपना कोई हो ही नहीं सकता। हां जी बात तो सही है जनाब। साथ में लिखते हैं, जब दर्द और कड़वी बोली मीठी लगने लगे तो समझ जाओ जीना आ गया है। क्या बात है जॉन साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं रेडियो वाले आरजे आनंद को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे, आपको सुनकर बहुत मजा आता है, नई नई जानकारियां आपके प्रोग्राम्स के जरिए हमें मिलती हैं और आपका वीडियोस भी हमें देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, हम सुनते हैं देखते हैं आपको, बहुत आनंद आता है। सोनू कुमार सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से जुड़ रहे हैं, क्या बात है, आफ्टर लॉन्ग टाइम सोनू जी। रिजवान खान साहब जुड़े हैं ग्राम बिजना से, लिखते हैं हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, काफी दिनों के बाद आज मैसेज भेज रहा हूं, आपकी आवाज काफी दबी हुई आ रही है, शायद कोई टेक्निकली प्रॉब्लम होगी जनाब। और लिखते हैं कि और आपने जो लिखा है ना साहब, बस उसे मेरे तक ही रहने दीजिए। विक्की सागर जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और मैंने पूछा था भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, और मैंने आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बर्गर, ऑप्शन सी पीपल या ऑप्शन डी मैंगो, उन्हीं में से एक सही जवाब दिया है विक्की सागर जी ने, क्या बात है, सबसे पहले गजब गजब गजब, अभी बताऊंगा नहीं बट अभी आप लोगों का भी मैसेज का वेट करूंगा मैं। मुरादाबाद की शान, पीतल नगरी की पहचान, दिल में बसता है अपना हिंदुस्तान, इमरान अली लोधीपुर, ये अमरोहा से मैसेज कर रहे हैं, बाप रे बाप क्या राइमिंग बना डाली बाबा आपने, तो गजब कर दिया इमरान साहब। मेरे पास मैसेज आ गया है, नमस्कार गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, उमा शंकर सिंह, अवंतिका अर्चित, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से मैसेज करते हैं और साथ में मेरे सवाल का जवाब भी देते हैं, क्या बात है। गुड मॉर्निंग पाजी, कैसे हाल चाल है आनंद जी, निसार नासिर हुसैन, इनके नाम में बड़ी मिस्टेक हो जाती है मेरे से यार अक्सर, ये नासिर साहब जुड़ चुके हैं रहमत नगर करूला मुरादाबाद से, इन्होंने भी मेरे को मेरे सवाल का जवाब दे दिया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष ये होता है आनंद जी। एंड सुभाष जी मेरे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से, लिखते हैं हेलो आनंद जी, आज हमारे यहाँ मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, सुबह सुबह आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी के प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, इतना खूबसूरत ये जो माहौल आप बनाते हैं अपने मैसेजेस के जरिए, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी आपके जो ढेर सारे मैसेजेस हैं ज़रूर हम इस प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, अभी आपके और भी संदेश पहुँच रहे हैं, वक्त हो गया है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:33, और आज नेशनल हग योर कैट डे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब जो लोग कैट से प्यार करते हैं, जो कैट लवर हैं, वो अपनी कैट्स को हग करते हैं, आज का दिन देखिए ना यार कैसे कैसे दिवस आ गए यार, मतलब बड़े अजीबोगरीब डेज आजकल सेलिब्रेट होते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सा दिवस मनाया जा रहा है यार। आज 4 जून को शॉपिंग कार्ट डे भी मनाया जाता है, इसके अलावा आज के दिन और क्या कुछ खास देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो तमाम सारे दिवस हर दिन सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। चलिए श्रोताओं, मुझे कुछ ऐसा है और स्ट्रांग दिख नहीं रहा है जो आपके साथ शेयर किया जाए, एंड बाकी आपसे जो सवाल पूछा है उसका मैसेज तो आप मुझे पहुंचा ही सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के जरिए। आपको बता दें 16

वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया जो है अब नहीं यूज कर सकेंगे, उनके अकाउंट्स बैन हुए हैं। कहां पर हुए हैं भैया? मैं आपको बता दूं, मलेशिया में। यस, मलेशिया में सोशल मीडिया बैन फॉर किड्स, यानी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बैन। एंड मलेशिया में जो है, जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लागू किया गया है। और मलेशिया सरकार ने कहा है कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री की ओर लेके जा रहा है, और अगर उन्हें इन चीज से बचाना है तो उन्हें थोड़ी टाइम के लिए सोशल मीडिया से अलग करना होगा। एंड दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। मलेशिया गवर्नमेंट ने भाई साहब बैन कर दिए हैं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वहां पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तेरह साल के बाद लौटेगी कॉकटेल का जादू। यस, इटली की वादियों में दिखेंगे ये प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज। किस क्या है ये पूरी स्टोरी, अभी आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, और अभी जब लौट कर आएंगे तो आपको वो पपाया के बारे में मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आपके साथ एक क्वेश्चन भी मैं लेकर आने वाला हूँ, म्यूजिकल क्वेश्चन। एक बहुत ही कमाल के प्लेबैक सिंगर का बर्थडे आज हम मनाते हैं, दैट इज द एब्सोल्युटली धाकड़ प्लेबैक सिंगर, जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और इनकी आवाज़ सलमान पाजी पे क्या जचती है ब्रो, क्या मैच करती है, हूबहू लगता है सलमान पाजी गा रहे हैं। अभी उनके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ आज के कड़क क्वेश्चन की। आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, जरा बताओ। राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है ना, राष्ट्रीय फल सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यू कैन टेल इस 9837896896, दैट इज माई नंबर। 20 जून को क्या हो रहा है ये आपको मैं फटाक से बताता हूँ। अभी जरा सी देर में लौट कर आ रहा हूँ इसी स्टेशन पर। बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है यार, काम की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ गीत संगीत भी बहुत जरूरी। मैं भी थक जाता हूँ यार, तो मैं थोड़ा पानी शानी पीकर आता हूँ, तब तक आप थोड़ा डांस कीजिए। और आज का क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, टेल मी, बताओ मुझे जरा। चार ऑप्शन मैंने दिए हैं आपको, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी मैंगो, यानी कि आम का पेड़। इन चारों में से कोई है करेक्ट आंसर। अपने भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है जरा बताओ, बिना गूगल के दिमाग लगाओ और मुझे सही जवाब पहुंचाओ। इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का। ठीक है जी, अभी फिलहाल एक बढ़िया सा गाना निकाल रहा हूँ, इस गाने को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, ऐसे ही सुनते रहेंगे आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। हाँ जी, मेरे साथ बोलो, बजाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। वेरी गुड।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
10: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आनंद विडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुरुवार की सुबह है भैया, इट्स नॉट रिकॉर्डेड प्रोग्राम, दिस इज लाइव प्रोग्राम है ये। बिंदास मॉर्निंग सुनते हैं आप मंडे टू सैटरडे आनंद के साथ। सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग को थोड़ा सा रिचार्ज बनाते हैं, थोड़ी फ्रेश वाइब आपको देते हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और पिछले 3 सालों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आने वाली 7 जून, दैट इज वेरी एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे 3 साल पूरे होने जा रहे हैं मेरे शो को, जो हमने शुरू किया था बिंदास मॉर्निंग का सिलसिला। 3 साल कैसे हो जाएंगे 7 तारीख को, आई कांट बिलीव दिस यार। चलो इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं सुबीर पाजी की आवाज में। मैं भी थोड़ा डांस करता हूँ, आप भी डांस कर लो यार मेरी डांस। तो दिल से बोलो हो दिल करे, आहा हो दिल करे, अरे कह दो यार।
1: मैं तो बंगड़े चे होए होए।

0: टेंशन भूल जाया करो यार।
1: मैं भी भूल जाता हूँ ना।
0: तेरे नाचा दिल करे मैं तब,
1: सारे लोगों ने डांस कर लिया मेरे साथ। वेरी नाइस यार।
0: सुखवीर पासी की ब्यूटीफुल आवाज।
1: बाजी मैंने बहुत डांस कर लिया।
0: बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले, वीकेंड आने वाला है। बस मैं भी उसी फील में जो है एंजॉय कर रहा हूँ कि भैया दो दिन और काम करेंगे, छुट्टी हो जाएगी। जब संडे वाली छुट्टी आती है तो बहुत सारे काम याद आ जाते हैं भाई, इतने सारे काम कि मैं आपको क्या बताऊँ यार।
1: वेलकम बैक है, सुपर उपर वाला गुड मॉर्निंग है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ कर रहे हैं। एंड आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तालियां, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने जो है जवाब दिए हैं, बट कुछ लोगों ने बड़े फनी जवाब दे दिए। किसी ने बोला है सर आम का पेड़ भारत का राष्ट्रीय पहला वृक्ष है। भाई मुझे मारो, लगता है भैया जी के थोड़ी कमजोर हो गई आपकी है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, चलिए आपके मैसेजेस को फटाफट यहाँ पर शामिल करेंगे। गुड मॉर्निंग मुरादाबाद से मनोज कुमार सैनी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। इन्होंने लिखा है आनंद जी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, दिस इज करेक्ट आंसर। और सबसे पहले इसका जवाब मुझे विक्की सागर जी ने दिया था यहाँ पर व्हाट्सएप करके। क्या बात है भैया, जोरदार तालियां। मतलब आप लोगों की जनरल नॉलेज अच्छी खासी है, मानना पड़ेगा यार। यही तो मैं बस चेक आउट कर रहा था कितने लोगों को पता है। जैसे ये नासिर साहब को भी एकदम सही जवाब पता था, अवंतिका जी का मेरे को सही मैसेज पहुंचा था, विकी भाई का पहुंचा था, एंड मेरे पास जवाब सही पहुंचा था यहाँ पर। गुड मॉर्निंग जी, सुभाष जी मेरे साथ जुड़े थे मुजफ्फरनगर से। ईदगाह से शफी अहमद अंसारी साहब जुड़े हैं, साथ में रईस दूला अंसारी लिखते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, आपका शो सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद जी, आपके साथ बहुत ही मजा आता है, बेस्ट फॉर द शो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास मैसेज पहुंचा था सर भारत का नेशनल ट्री है बरगद का पेड़। क्या बात है, नाम इनका क्या लिखा है इन्होंने, एकता जी, एकता जी थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास मैसेज आ गया है शबीना खान जी का, लिखती है आपको सुनकर माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, और आपके क्वेश्चन का आंसर है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। क्या बात है शबीना जी, वेरी नाइस। मेरे पास मैसेज और भी ढेर सारे पहुंचे हैं श्रोताओं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी आज की सुबह, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अल्टीमेट था आज का सेशन। अभी मैं लौट कर आता हूं तो आपको कुछ खास बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अभी आज क्या कुछ खास है उस पर तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन अभी मैं आपकी हेल्थ के बारे में बात कर लेता हूं। जो फिट है वो हिट है ना, वो जरूरी है बोलना। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए 20 जून को आने वाली 20 जून सैटरडे को हम लोग एक बहुत ही अच्छा इवेंट प्लान कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए होने वाला है, जिसमें फ्री हेल्थ चेकअप्स करा सकती हैं लेडीज़, एंड साथ ही साथ इसमें बहुत सारी अवेयरनेस जो है लेडीज़ को मिलने वाली है। इसमें 112 की टीम भी होगी, और इसके मतलब इसमें मिशन शक्ति 5.0 की टीम होगी, और डॉक्टर्स होंगे बहुत सारे, और भी बहुत सारा फन होगा, गेम्स होंगे, क्विज होंगे। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई लेडी आना चाहते हैं तो बिल्कुल, ये होने वाला है रामगंगा विहार थाईचिली में 20 जून को। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एफएम मुरादाबाद और के कुछ इन्फ्लुएंसर हमारे साथ मिलके, सोशल मीडिया पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डोंट फॉरगेट, फॉलो कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 की ऑफिशियल आईडी, या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एफएम मुरादाबाद के साथ ही साथ रेडियो

आनंद 95 नाम से मिलता हूँ। सो डोंट फॉरगेट फॉलो कीजिए, वहाँ आपको कड़क अपडेट मिलेंगी। आने वाली 20 जून को बहुत ही अच्छा एक कैंपेन लेकर आ रहे हैं FM मुरादाबाद, और साथ में शहर के कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर जिनके साथ मिलकर हमने एक पहल की है नारी शक्ति को और ज्यादा मजबूत और सक्षम बनाने के लिए। ठीक है, उनकी फ्री हेल्थ चेकअप के साथ साथ उनको ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी, बहुत सारे प्राइजेस भी मिल सकते हैं अगर आप वहां आएंगी तो। आने वाली 20 जून रामगंगा बिहार थाई चिली प्लीज, सो आना मत भूलिएगा। अभी बात कर लेते हैं 7 जून को क्या होने वाला है। आपको बताया ना, हमने अभी कल ही वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेट किया। 3 जून को हर साल वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है, लेकिन आने वाली 7 जून को वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेशन होने वाला है अपने मुरादाबाद के अंदर। देश बचाएंगे साइकिल चलाएंगे, फिट इंडिया एम्बेसिडर आपको बता दें भैया ये जैनुल भी इसमें जो है रहने वाले हैं, और बाकी स्मार्ट सिटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कैंपेन होने जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भैया वर्ल्ड साइकिल डे स्पेशल 7 जून को ये होने वाला है, संडे को सुबह 6:30 बजे प्लीज़ ज़रूर पहुँचिए। संडे को साइकिल से जो है आपने दौड़ लगानी, मतलब साइकिल चलानी है बस। अगर मैं बताऊँ तो आपको, अगर आप साइकिल चलाने के बहुत शौकीन हैं तो इस रविवार इस अभियान में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, और बहुत ही आपको आनंद आएगा और बहुत ही मज़ा जो है आने वाला है। आपको बता दें मुरादाबाद में होने वाला है, साइकिल चलाने के फायदे भी इन्होंने इंक्लूड कर दिए भैया। अगर आप चलाते हैं तो देखिए शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, खुशहाल जीवन होगा, पर्यावरण संरक्षण एंड साथ ही साथ ईंधन की बचत, तनाव मुक्त जीवन। तो आप जरूर जो है आइए अगर आप भी आना चाहते हैं इस कैंपेन में। और लग रहा है कि आपके पास साइकिल नहीं है तो भैया आपको साइकिल भी प्रोवाइड कराई जाएगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको साइकिल भी मिलेगी। और आपको बता दें 10 किलोमीटर आना जाना रहेगा, तो अगर आप रेडी हैं आने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी बाग से इसकी शुरुआत होगी इस संडे सुबह 6:30 बजे, कंपनी बाग पहुंच जाइए जहां पर वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेशन होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोर डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप करके इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नंबर बता रहा हूं 9997723915, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी इस कैंपेन के बारे में। आने वाली 7 जून को मुरादाबाद में होने वाला है वर्ल्ड साइकिल सेलिब्रेशन डे, अगर आप जाना चाहते हैं तो वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं नंबर 9997723915। ठीक है जी, इस नंबर को नोट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको जाना चाहिए तो जरूर जाइए। और बाकी आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कड़क लेकर आ रहा हूं फटाफट से, जिसका जवाब देकर आप बनेंगे आज हमारे शो की सुपरस्टार। वेल, आप सभी के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। वैसे अब मैं 8:30 बजे आने लगा हूं, तो आप मुझे 8:30 भी ट्यून इन कर सकते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आगे बढ़ेंगे, एक बढ़िया सा गाना सुनेंगे आप ही के इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां भैया मतलब मत पूछो वाइब फुल मिल रही है मुझे आपके साथ। जब आपका प्यार होता है, आपका साथ होता है, तो सुबह ऑटोमेटिकली गजब की हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है, मतलब है ना। तो बस एक काम करते हैं, ये गाना सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना है, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। हरी संधू राइट हियर, तू मेरे वाल तक दी रवे, वॉल्यूम बढ़ा लो यार मेरे।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सबको ऐसे लगता है कि 7 घंटे की नींद क्या क्या करेंगे, अगर हम 5 घंटे भी सो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। 5 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है एक हेल्दी रूटीन में, एक हेल्दी अगर आपको शरीर चाहिए तो 5 घंटे की नींद सफिशिएंट है। लेकिन ये चीज़ ना भाई गलत भी हो सकती है, तो इसीलिए आपने गलत इन्फॉर्मेशन को नहीं जो है पकड़ना है, आपने सही इन्फॉर्मेशन को पकड़ना है। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से कुछ कड़क इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी है भाई और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भैया नींद की कमी जो है, अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसीलिए भाई साहब आपको नींद पूरी लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद जो है आपको ज़रूर लेनी चाहिए, जो बॉडी को रिपेयर होने में काफ़ी जो है आपको हेल्प करती है। आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा होता है अगर आप पूरे 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। आपका स्किन भी बहुत ही बढ़िया जो है चमकने लगता है, शाइन करने लगता है अगर आपकी नींद बढ़िया होती है तो, ठीक है। आपका स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है और आपका मूड भी बहुत ही अच्छा रहता है अगर आपकी नींद पूरी होती है तो, आपकी सुबह भी बढ़िया होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भैया लग रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो भैया देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है आपको दिक्कत कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है और बाकी ये आदतें आपको जो है जितना हो सकता है अपने अंदर से दूर करनी है। सबसे पहले तो लगातार भैया झुककर बिल्कुल मत बैठिए, कोशिश करिए कि कम से कम फिजिकली एक्टिविटी ज़रूर करें पूरे दिन में। आप जो है चाहे आप लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने घर में ही, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से फिट भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, है ना। तो देखिए शाम के समय का मौसम बहुत ही बढ़िया होता है, उसमें जो है आप खुद के लिए समय ज़रूर निकालें और छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप खुद को यंग रखना चाहती हैं, खुद को यंग दिखना चाहते हैं पाजी, तो आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने रोज योगा करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, 7 से 8 घंटे की बढ़िया नींद लेनी है, स्ट्रेस को जो है अपने दूर करना है, मतलब खुद से थोड़ा सा दूर रखना है पाजी, अपनी हेल्दी डाइट को बैलेंस रखना है और स्क्रीन टाइम जितना हो सकता है कम करें, लिमिटेड अपना टाइम कर दें, डेली वॉक करें, फिजिकली एक्टिविटी करें, उसके बाद दिल से कहें जो फिट है वो हिट है, जो फिट रहता है ना पाजी फिर तो बल्ले बल्ले यार। अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, आपका शरीर बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है ना। तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, डजंट मैटर आप मोटे हैं पतले हैं, लेकिन आप अगर पूरी तरह स्वस्थ हैं फिट हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। और अगर आप पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो भैया ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में। अगर आप डेली पपाया लेते हैं तो ये आपको जो है विटामिन सी इसमें मिलता है जो आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, आपके दिल को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करता है। पपीते में जो है ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। कब्ज से राहत मिलती है, पपीता पाचन को तंदुरुस्त करता है और कब्ज से राहत दिलाता है, वजन घटाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये लो कैलोरी फल है जो फैट बर्न करने में भी मदद करता है। तो अगर आप जो है पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी त्वचा का निखार बढ़ाता है, विटामिन ए इसमें होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सुबह सुबह अगर आप फिटनेस के साथ साथ अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। बाकी मोर डिटेल्स के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी आज का कड़क सवाल लेकर आ गया हूँ जी, 9:10 को है, फटाफट से आपने मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है ये जो गाना प्ले कर रहा हूँ इन गानों में कौन से बॉलीवुड प्ले बैक सिंगर की आवाज़ है। कमिंग अप नेक्स्ट गाना दूसरा कौन से सिंगर की आवाजें पहचानना है आपने। मैंने कहा था ना सलमान खान पाजी के ऊपर बड़ी जमती है इनकी आवाज। दूसरा चला दो कौन से सिंगर की आवाज।

0: व्हाट्सएप करके बताइए मुझे, पहचान लिया आपने कौन से सिंगर की आवाज है ये? चीटिंग मत करो यार, बहुत प्यारे सिंगर हैं यार।
1: तूने क्या किया,
0: दूसरा बजाओ यार।
1: मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा।
0: नहीं नहीं, वो दीदी वाला बजाओ, दीदी वाला बजाओ सर, दीदी वाला।
1: अभी तेरी बहना को माना।
0: अब तो व्हाट्सएप कर दो यार, 9837896896 यही नंबर है जिसपे आपने मेरे को मैसेज करके बताना है कौन से प्लेबैक सिंगर की आवाज है आज इनका बर्थडे मनाया जाता है। व्हाट्सएप करके ही जाना। चलो जी, बड़े सारे गाने मैंने सुनवा दिए, आई होप आपको क्लू मिल गया होगा आज की सुबह कौन से सिंगर की आवाज है। व्हाट्सएप करना है आपने मेरे नंबर पे 9837896896, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। बिना किसी देरी के जल्दी से तत्काल प्रभाव से पहले आप मेरे को मैसेज करके बताओ अभी जो आपने गाने सुने हैं वो कौन से प्ले बैक सिंगर की आवाज में है। अगर आप देंगे सही जवाब तो आज की सुबह आप बन सकते हैं मेरे शो के सुपर स्टार। बनना चाहते हो व्हाट्सएप कर दो मेरे यार।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
9: यार जाने का समय हो गया है, पता नहीं चल रहा है कैसे 10 बज जाते हैं। 10:06 हो गए हैं, लेकिन जाने से पहले वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा आज का सवाल दोहरा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिए लेकिन मैं सोच रहा हूँ शायद और ज्यादा अच्छे जवाब आ जाएं। आपको बस गेस करना है ये कौन से प्लेबैक सिंगर की आवाज है।
10: ये रात आए दूरी, तेरा मिलना है जरूरी।
9: कौन से सिंगर है आज इनका जन्मदिन होता है। पास एक आखिरी और फाइनल मौका है, जल्दी से मेरे को आइडेंटिफाई करके बताना है ये जो आवाज सुन रहे हैं वो कौन से सिंगर की है।

0: बैक टू बैक गाने लगा रहा हूँ।
1: मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और
0: ये गाना सुन के आप आइडेंटिफाई कर लो।
1: तेरी बहना को माना हाय राम, कुड़ियों बहुत प्यार करते हैं।
0: चलो जल्दी से मैसेज करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और किसी एक लकी कॉलर को हम कॉल भी करने वाले हैं, तो अपने फोन के करीब आ जाइएगा जरा, क्योंकि किसी एक लकी कॉलर की सुबह को बनाएंगे थोड़ा सा झकास, थोड़ा सा खास और फर्स्ट क्लास इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। ठीक है, अभी लौट कर आ रहा हूँ मैं, आप ही में जाइए। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: ओदे पैसे ने है जादू जे हा पा लिया।
1: यार ये गाना सुनते रहूंगा तो शायद मैं यही डांस करता रह जाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज मैंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, एक बहुत ही खूबसूरत प्लेबैक सिंगर है जिनका आज बर्थडे होता है, उनके गाने मैंने कुछ प्ले किए थे यहाँ पर, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सिंगर की आवाज है। बताने के लिए जुड़े हैं कॉलर। हेलो जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर?
1: मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताएं अपने बारे में, अपना नाम बताएं सबसे पहले तो।
2: मेरा नाम है राजवीर सिंह।
1: राजवीर जी कहाँ रहते हैं आप? मुरादाबाद में,
2: हॉस्पिटल के पास।
1: आपकी वॉइस ब्रेक हुई, दोबारा बताएं।
2: विवेकानंद
1: हॉस्पिटल के पास आप रहते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं, फिर जनगणना में लगे होंगे आई एम श्योर आप भी।
2: हाँ जी, हाँ जी, जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है, वैसे छुट्टी चल रही है।
1: अच्छा, जब जनगणना के लिए आप घर घर पहुँचते हैं तो कुछ समस्याओं का सामना तो करना पड़ता होगा ना?
2: जी जी जी, समस्याएं तो बहुत होती हैं सर।
1: हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उनको डर लगने लगता है।
2: जी जी जी, कुछ लोग तो सोचते हैं पता नहीं हमारी सूचना कहाँ जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं हमारी कोई योजना कट जाएगी।
1: हाँ वही वही वही,
2: तो पहले पूछते हैं कि इस फसल क्या होगा, हम बताते हैं जी ये जनगणना से पता चलता है कि हमारे देश में 10 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, अब कितनी और बढ़ी।
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही
2: कहा। तो जवाब देते हैं।
1: ओके, तो राज जी फिलहाल सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
2: जी, जी,
1: और रेडियो सुनते हैं, रेडियो सुन के कैसा लगता है आपको?
2: बहुत ज्यादा सुनते, बहुत अच्छा लगता है आपको।
1: बहुत बढ़िया, एफएम मुरादाबाद सुनते रहते हैं आप मतलब?
2: जी जी, बहुत ज्यादा सुनते हैं।
1: अच्छा, ये जो सिंगर की आवाज अभी आप सुन रहे थे, वो उनका नाम क्या है?
2: सुब्रमण्यम।
1: अच्छा वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनकी आवाज सलमान खान भाई से बिल्कुल मिलती जुलती है ना?
2: बिल्कुल, शुरू में सलमान खान के गाने आए थे, इन्होंने प्ले किए थे।
1: बहुत बढ़िया, इनके ऊपर ही, इनकी आवाज में ही सलमान खान जी के ऊपर एकदम शूट करी।
2: सलमान खान जैसी आवाज ही लगती है जैसे सलमान खान बोल रहे हैं।
1: आपके लिए जोरदार तालियां। और रेडियो पे आरजे आनंद बोल रहे हैं।
2: जी
1: जी सर, और बताइए सब बढ़िया चल रहा है?
2: जी बहुत अच्छा चल रहा है।
1: चलिए राज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। और बाकी कुछ संदेश देना चाहते हैं जब आप लोगों के घर घर जनगणना करने पहुंच रहे हैं, तो इस विषय में अगर कुछ मैसेज दें ताकि कोई आए तो।
2: जी जी जी, मैं मैसेज देना चाहूंगा सभी लोगों को कि इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें आपसे कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं मांगी जा रही है।
1: जी,
2: आपका बैंक अकाउंट या किसी आपसे इस तरह कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी,
2: और अपनी सही जानकारी सही से इसमें नोट कराएं और अपनी इसमें जनगणना में अपना भागीदारी करें,
1: भागीदारी करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा राजी, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर, नमस्कार।

0: फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह फ्राइडे मॉर्निंग में। अपना ख्याल रखिए। 10:13 हो गए। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे। देखिए, सत्यम गुप्ता जी जुड़े थे मुरादाबाद से सही जवाब के साथ। मेरे पास मैसेज पहुंचा था कश्मीर से मेहराजुद्दीन साहब का, इनको भी बहुत अच्छा लगा, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। गौरव टेलर जी जुड़े हैं नवीन नगर से, लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर, काफी बढ़िया मॉर्निंग हो जाती है, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन होती है और तमाम जानकारियां भी मिलती हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़े थे, लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आपके प्रोग्राम से तमाम जानकारियां मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है और सही जवाब भी दिया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मैसेज मेरे पास पहुंच गया है। हेलो हाय नमस्ते आनंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है। और बाकी सुभाष सैनी जी का मुजफ्फरनगर से सही जवाब आया था। उस्मान टेलर जी मेरे साथ जुड़े थे ग्राम बीजना से आज की सुबह, और ये मैसेज आया था डीके अरोड़ा जी का मेरे पास आज की सुबह। और देखिए, बुद्धि बिहार से अलका वर्मा जी भी जुड़ी थी हमारे साथ आज की सुबह, इन्होंने भी सही जवाब पहुंचाया था अपनी वॉइस नोट के जरिए।
1: राधे राधे आनंद जी, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बैनियन ट्री बरगद का पेड़।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा।
1: मैं अलका वर्मा, बुद्धि बिहार।
0: थैंक यू मैम।
1: ये सभी गाने बाल सुब्रमण्यम की आवाज है।
0: बहुत ही बढ़िया, सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब समय और इजाजत नहीं दे रहा है, श्रोताओं आपसे जरूर बातचीत करेंगे। ये नूर साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह। नूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की सुबह। एंड मेरे पास मैसेज पहुंचा था, हेलो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है। नमस्कार जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है मेरे पास। ये उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। भास्कर जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। एंड ये रिजवान खान साहब जी ने सही जवाब दिया था। यशपाल यमुनानगर हरियाणा से सही जवाब के साथ जुड़े थे। एंड और भी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं। गाइज समय कम है, फिर मुलाकात होगी कल सुबह। ख्याल रखिए अपना। लव यू सो मच इतने प्यार के लिए। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी खुशी, हाजिर हूं आप सभी का फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, नई सुबह का मतलब सिर्फ नया दिन नहीं होता है, बल्कि नए चेंजेस, नए ड्रीम्स और नया कॉन्फिडेंस के साथ एक फ्रेश स्टार्ट भी, जी हाँ, स्टार्ट भी होता है लाइफ में। ना प्रॉब्लम्स सबके पास होती हैं, बट जो इंसान हर प्रॉब्लम का सामना करता है, वही इंसान सक्सेस हो पाता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्रॉब्लम को टाटा बाय बाय कहिए एंड पॉजिटिविटी को अपनाइए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। देखिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव थॉट्स के साथ। मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी ना मुझे मैसेज पहुंचा सकते हैं। मैं अपने मोबाइल नंबर आपको बताती हूँ, 9837896896। सो टुडे नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करो, पॉजिटिव एनर्जी को डाउनलोड करो और अपनी लाइफ को फुल पावर मोड में स्टार्ट करो, ठीक है? तो ये चीजें आपको करनी है। गुरुवार का बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, 4 जून की तारीख है और समय 10:26 हो चुके हैं। कुछ खूबसूरत गीतों के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ एंड आज करते हैं एक खूबसूरत से म्यूजिक के साथ, जी हाँ, खूबसूरत ट्रैक के साथ शो की शुरुआत। और आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो फटाफट से हमें मैसेज पहुँचाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और दोस्तों, आज क्या स्पेशल है वो सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। अभी तो खुशी आई है, अभी तो शुरुआत हुई है ना। अभी देखिएगा, आगे आगे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो आप सभी तक मुझे साझा करनी है, मुझे आप सभी से शेयर करनी है। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए। और आज की सुबह एक बेहतरीन ट्रैक करण औजला की खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा सा गाना आप सभी के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों।

0: with a brand.
1: आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और साथियों, भी आपने बहुत ही खूबसूरत ट्रैक सुना वीरवार दिलजीत दोसांझ की खूबसूरत सी आवाज में। और साथियों, यहाँ पर अभी वक्त हुआ है 10:36 और आपके खूबसूरत मैसेज भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज 4 जून की तारीख है और आज की आज स्पेशल है, मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं अपना नाम तो बता दूं। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी जो एवरीडे आपके लिए लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ। और दोस्तों, आज का दिन है बेहद स्वादिष्ट, क्योंकि आज मनाया जाता है राष्ट्रीय पनीर दिवस। जी हाँ, इंटरनेशनल चीज डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। पनीर यानी स्वाद, सेहत और हर खाने की जान। भारतीय रसोई में पनीर सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि खुशियों का स्वाद भी है। कभी शाही पनीर बनकर दिल जीत लेता है तो कभी रसगुल्ले और रसमलाई बनकर मिठास घोल देता है। दोस्तों, नेशनल चीज डे को क्यों मनाया जाता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ दोस्तों, पूछ ही लेते हैं आज के सुबह आपसे क्वेश्चन। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि पनीर से कौन कौन सी चीजें आप बनाते हैं। जी हाँ, कौन कौन सी पनीर से आप वेराइटीज बनाते हैं, एंड मुझे बताइएगा। नंबर है 9837896896। मेरे को क्या पसंद है पनीर से बना हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि पनीर से बनी हुई कौन कौन सी चीजें आपको पसंद है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि पनीर से बनता है शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, है ना, पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का, पनीर पराठा, पनीर पकौड़ा, है ना, और पनीर ब्रेड पकौड़ा, चिली पनीर, पनीर रोल, पनीर सैंडविच एंड पनीर भुजिया, पालक पनीर, रसगुल्ला एंड एक देखिए, एक तो होता है ब्लैक वाला और एक होता है व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाला भी पनीर से बनता है। एंड पनीर की जलेबी आपने खाई है? मैंने खाई है, बहुत टेस्टी होती है यार। तो आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आज की सुबह कि आपको पनीर से कौन कौन सी चीजें बनानी आती हैं और कौन कौन सी चीजें आपको पसंद हैं। हाँ, देखिए ये भी तो जानना जरूरी होता है ना। अब मुझे पनीर से याद आया, आई रिमेम्बर हमारी एक बहुत ही स्वीट सी लिसनर है अलका वर्मा जी, एंड उन्होंने हमें खाने पर अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था। उनके हाथ का पनीर हमने खाया था, इतना टेस्टी थी ना, मैं उसका स्वाद अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। आज मुझे नेशनल पनीर डे पर ये याद आ गया है। और दोस्तों, कभी ना, मतलब हम अपनों को प्यार ना हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको पनीर से कौन कौन सी चीजें बनी हुई पसंद है एंड क्या क्या आपको बनाना आता है। फटाफट से अपने मैसेज पहुंचाइए, नंबर है 9837896896। और यहाँ पर कुछ और संदेश आए हैं, मैं भी उनको क्विकली शामिल करती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें पहुंचाते हैं नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी, और कहते हैं मैम को नमस्कार हमारा, आपको भी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है गौरव टेलर जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से, कहते हैं खुशी जी को हमारा नमस्कार, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश करती हैं आप और जानकारियां भी बहुत अच्छी अच्छी लेकर आती हैं, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।

और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखी है कि चाहे प्रतिमा में भगवान हो या ना हो, पर ये सत्य है कि प्रतिमा में भगवान जरूर होते हैं। हाँ जी, फर्स्ट गॉड तो हमारे पेरेंट्स ही है ना, मम्मी पापा ही भगवान होते हैं, उन जिन्होंने हमें जीवन दिया है। और चलिए दोस्तों, मैं सुनवाती हूँ आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत, उसके बाद लौट कर आती हूँ। तब तक आप बताइए कि आपको पनीर से कौन कौन बनी हुई चीजें कौन कौन सी पसंद है और क्या क्या आपको स्पेशल बनाना आता है। और ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिएगा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
5: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल चीज डे। जी हाँ, राष्ट्रीय पनीर दिवस आज मनाया जाता है दोस्तों। और मैंने आपसे पूछा था कि आपको पनीर से बनी हुई कौन कौन सी रेसिपीज, कौन कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो आपको पसंद हैं, या फिर कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो आपको बनानी आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश आ गए हैं हमारे श्रोताओं के, और मुझे नहीं पता था कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो इतने टैलेंटेड हैं। ओ माय गॉड, चलिए शामिल करते हैं उनके संदेशों को और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये मैसेज अपना पहुँचाती हैं एकता जी फ्रॉम मंडी चौक मुरादाबाद से, और कहती है मैम हमें पनीर से मटर पनीर बनाना आता है, पनीर का भरता बनाना आता है, पालक पनीर बनाना आता है, एंड ये सब हम बना सकते हैं। ओके एकता जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी डिशेज बताई हैं तो आज इनमें से ना एक बना ही लीजिएगा, ठीक है। और कहती हैं कि कैसी हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ एकता जी, उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छी होंगी। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, और आप तो अभी घर पर ही होंगी या कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, बताइए हमें। अच्छा मैम कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैम हम तो घर पर ही हैं, अभी कहीं नहीं गए हैं। ओके, तो मैम अगर कहीं जाने का अवसर मिले तो बिल्कुल घूमना चाहिए, क्योंकि जब हम नई नई जगह घूमने के लिए जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा अवसर मिलता है ना घूमने का, तो घूमना चाहिए। और इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, दावती इश्क होए, क्या बात है, इतना खूबसूरत सा गाना आज की मॉर्निंग चुना है यहाँ पर एकता जी ने। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, हेलो खुशी जी कैसी हैं आप, मैं भास्कर कुमार तेजस्वी आपके साथ कनेक्ट हुआ हूँ, और आपके आने से पहले और आपकी आवाज़ बेहद मीठी है, शुक्रिया आपका सर, इसीलिए आप भी पनीर की जैसी बातें करती हैं। अच्छा जी, हम पनीर की जैसी बातें करते हैं, ओह माय गॉड, हमें पता नहीं था। और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं मुंगेर जमालपुर बिहार से, एंड कहते हैं कि मैम हमारा संदेश आप पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, आपने इतने प्रेम से लिखकर भेजा है तो हम आपका संदेश कैसे ना शामिल करें। हाँ, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने सभी श्रोताओं के मैसेज को शामिल करें। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा आदाब, कबूल कीजिएगा। बिल्कुल सर, हमने एक्सेप्ट किया है आपका आदाब। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान जी, और ये पूरी फैमिली के साथ कनेक्ट हुए हैं इस वक्त। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो दोस्तों आप

मुझे बताइएगा कि आपको पनीर से बनी हुई कौन कौन सी चीजें पसंद हैं एंड कौन कौन सी आपको डिशेस बनानी आती हैं। मैं आपको बताऊं तो मुझे पालक पनीर बनाना आता है और खाने में मुझे पनीर से बनी हुई सारी चीजें पसंद हैं ऑलमोस्ट। और मैं आपको बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है वो मैं आकर बताऊंगी पनीर से बना हुआ, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस भी बनाकर रखना चाहिए ना। आप मुझे बताओ, अब मैं इतना पनीर पनीर कर रही हूँ ना तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि चलिए आज कुछ ना कुछ पनीर का हम भी बना ही लेते हैं। हाँ तो बनाइए, देर किस बात की है। और ये खूबसूरत सा गाना सुनते जाइए, मैं लौट कर आती हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ साझा करनी है।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बसंती इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
1: सही है सही।
0: मजा ही मजा ब्रो। चलो शुरू करते हैं।

दोस्तों, गर्मी इतनी ज्यादा है कि सभी की जुबान से बस यही निकल रहा है, हाय गर्मी। इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि मैं क्या ही बोलूं। एक्चुअली जब मैं सुबह ऑफिस आ रही थी 9 बजे के समथिंग, तो भी इतनी गर्मी थी ना कि घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन आप सबकी मोहब्बत हमको खींच कर ले आई स्टूडियो की नई खुशी। वहां पर हमारा सभी इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, दिल से दिल का रिश्ता है आपका और हमारा, तो हम कैसे नहीं आते। हाँ दोस्तों, देखिए अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, एंड आई होप आप सबने इंजॉय किया होगा बादशाह नेहा कक्कड़ की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ट्रैक। एंड कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और मैं आपसे एक सवाल भी पूछने वाली हूँ। मैं एक ट्रैक प्ले करने वाली हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये जो गाना है किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया ट्रैक है। जरा सुनिएगा और मुझे बताइएगा।

जी हाँ, आपको बताना है कि इस गाने में कौन सी अभिनेत्री हैं। जी हाँ, मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि ये गाना कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। उनका नाम आपको मुझे बताना है, फटाफट से मैसेज टाइप करो और मुझे पहुँचाओ। नंबर 9837896896, जो अभी ट्रैक मैंने प्ले किया है, आप मुझे बताइए कि ये ट्रैक कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। जी हाँ, कौन सी एक्ट्रेस पर ये ट्रैक फिल्माया गया है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ, 9883789686। और बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री थी एंड इनकी मूवी, इनके ट्रैक भी एक से बढ़कर एक हैं। थोड़ा सा हम आपको फिर से सुनवा देते हैं।

जल्दी से बताइएगा। एंड हम आपके बीच सब्री से संदेशों का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं, हम उनको भी जल्दी से शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास संदेश आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और रिहाना जी कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग रिहाना जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छी ही होंगी। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में इनके दोस्त भी हैं रईस दूर अंसारी जी, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू खुशी जी? आई एम गुड सर। कहते हैं कि आपका मॉर्निंग मसाला शो हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, लाजवाब पेशकश होती है आपकी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एंड सर ने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, तू निकला छुपा रिस्तम, ओए होए, सुबह सुबह ऐसे गाने सुनेंगे आप? हाँ जी, चलिए सुन लेते हैं। वैसे छुपा रिस्तम जो है ना, वो सूरज चाचू भी हैं, मतलब कभी तो बच्चों पर रहम खा लें, कभी तो मतलब बादल को ले आए, उनको बोलें बादल को कि तो प्लीज तुम आ जाओ, क्योंकि इतनी गर्मी है, बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन काम के लिए जाना पड़ता है दोस्तों। एंड अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉटन का कपड़ा, जो गमछा बोलते हैं, वो अपने साथ रखें, उसको सर पर ढक के रखें, और छाता भी साथ लेकर जाएं, पानी की बॉटल तो मिस ना करें आप, ठीक है, वो हमेशा अपने पास रखें। और हाँ दोस्तों, पानी भी पीते रहें, प्यास लगे तो भी, नहीं लगे तो भी पीते रहिए। एंड अगर आपको कहीं रास्ते में गन्ने के जूस का स्टॉल नजर आ जाए तो हो गला ना एकदम से, मतलब लगता है कि हाँ, दिल जो है ना वो हमारा मानता नहीं है, वहीं पर गाड़ी को हम स्टॉप करते हैं और दिल करता है कि चलिए एक गिलास तो ठंडा ठंडा गन्ने का जूस हो जाए, या फिर सिकंजी को हम देखते हैं ना, सिकंजी वाले का स्टॉल देखते हैं या फिर ठेला देखते हैं, तो हमारा दिल जो होता है ना वो वहीं पर रुक जाता है, कुछ देर के लिए ठहर जाता है इस गर्मी को देखकर। और दोस्तों चलिए, आप इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाइए, मैं आपको एक प्यारा सा गाना यहाँ पर सुनवाती हूँ, उसके बाद आपसे और भी करेंगी गुफ्तगू। आप कहीं मचाइए, रेडियो के सिंह को बिल्कुल मत घुमाइए, और दोस्तों दिल से मुस्कुराइए।

हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। और दोस्तों, आज मैंने आपसे मालूम किया था आज नेशनल चीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय पनीर दिवस। और उसी आज खास मौके पर मैंने आपसे मालूम किया था कि आप मुझे बताएं कि पनीर से बनी हुई कौन कौन सी डिशेज आपको पसंद हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पनीर से बनी हुई खाते हैं या फिर आपको बनानी भी आती हैं। इतना सोचिए मत, बताइएगा। नंबर 9 8 3 7 8 9 6 8 9 6।

और फ्रेंड्स, मैंने ना आपसे लाइक अभी एक ट्रैक मैंने प्ले किया था और मैंने आपसे मालूम किया था कि बताइएगा ये कौन सी अभिनेत्री हैं, इनका क्या नाम है, जो गाना मैंने प्ले किया था उन पर फिल्माया गया ट्रैक मैंने प्ले किया था, और मैंने आपसे जाना था कि आप मुझे बताइए कि इन अभिनेत्री का क्या नाम है। तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर मैसेज आ चुके हैं, और सबसे पहले हमें राइट आंसर पहुंचाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं खुशी जी आदाब, कैसी हैं आप, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आपका शो मॉर्निंग मसाला हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, एंड सभी लिसनर्स की पसंद से जो आप ट्रैक प्ले करते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच सर। और राइट आंसर है नीतू। हाँ जी बिल्कुल सर, राइट आंसर आपने नूतन जी पहुंचाया है। एग्जैक्टली दोस्तों, मशहूर हिंदी अभिनेत्री नूतन जी का आज 4 जून को जन्म हुआ था। जी हाँ, आज उनकी जयंती है। 4 जून 1936 को हुआ था। बॉलीवुड के सुनहरे दौर की दिग्गज अभिनेत्रियों में से गिने जाने वाली नूतन जी का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ फिल्म निर्देशक थे और उनकी माँ शोभना सामर्थ अपने जमाने की एक जानी मानी अभिनेत्री थी। नूतन जी के बारे में कुछ मुख्य बिंदु कार्यकाल, उन्होंने 4 दशकों से अधिक के करियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। प्रमुख फिल्में सुजाता, वंदनी, अनाड़ी और सीमा उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती हैं। उपलब्धियां, उन्हें साथियों उनके शानदार अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, आज उनकी जयंती है तो उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, और उन्हीं के कुछ खास गीत भी हमने यहाँ पर चुने हैं।

और हमारे पास एक और मैसेज आया है रिहाना जी का। रिहाना जी ने भी राइट आंसर दिया है। अभिनेत्री नूतन जी बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, आपने राइट आंसर पहुंचाए हैं, शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज पूजा जी का आया है विकास नगर से और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़ी हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना खूबसूरत गीत मैंने आज चुना है तो इसको सुनवा देते हैं आपको। लौट कर आती हूँ मैं इस प्यारे से गाने के उस पार। आप कहीं मचाइए, दिल से मुस्कुराइए और अपने संदेश भी हमें पहुँचाइएगा। मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
2: जी हाँ,
3: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस, नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
9: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
8: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
9: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
8: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये न्यू वर्जन सुना एंड बहुत ही प्यारा सा ट्रैक चुनरी चुनरी है, जवानी तो इश्क होना है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत संदेश भी आपके आ चुके हैं लगातार, तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। एंड हमारे पास ये मैसेज आया है, मैडम जी को नमस्कार, आपके लिए हमने फ्लावर्स भेजे हैं मैम, इनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और हम लोग आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। ये संदेश अपना पहुंचाते हैं उमा शंकर सिंह जी, साथ में अवंतिका सिंह है, अर्चित सिंह है, और ये अपना मैसेज पहुंचाते हैं रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। कहते हैं कि पनीर का दिया वाला मिठाई भी बनता है और पनीर की जलेबी भी मैम हम लोगों ने बहुत खाई है, रुद्रपुर के बहुत सी मिठाइयों की दुकान पर बनती है। ओके, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, वाह। उमा शंकर जी अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं, थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज हमें पहुंचाया सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, कहते हैं नंबर वन पावरफुल गोल्डन प्लेटफॉर्म प्ले अमेजिंग सिलेक्शन सॉन्ग्स एंड प्लेइंग विद लवली होस्ट आरजे खुशी। और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना जी हैं, लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, जिला मुरादाबाद ग्राम दुला उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, शीतल कश्यप जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी।

दोस्तों, समय हुआ है 11:35 और आज और कुछ क्या स्पेशल होता है आज के दिन, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आज का दिन बेहद ही खास और संवेदनशील है। 4 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाल पीड़िता दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर बच्चों को प्यार, सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बच्चे सिर्फ हमारे घर की मुस्कान नहीं, हमारे देश और समाज का भविष्य भी हैं। लेकिन कई बार मासूम बच्चे ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं जिनके बारे में वे खुलकर बोल भी नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि हमें उन्हें सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि सुरक्षित रहना भी सिखाना चाहिए। और साथियों, बच्चों को किसी भी गलत व्यवहार को तुरंत ना कहना सिखाइए। गुड टच और बैड टच की पहचान, किसी अजनबी के साथ अकेले ना जाना, डरने की बजाय अपने माता पिता या टीचर से खुलकर बात करना, इंटरनेट और मोबाइल की सुरक्षित इस्तेमाल करना, ये भी आपको ही सिखाना है। क्योंकि बच्चों को देखिए, सोशल मीडिया आजकल सभी चलाते हैं और छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होता है, तो छोटे बच्चे क्या इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो तो आपको नहीं पता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चों के ऊपर निगरानी रखिए, उन बच्चों को बताइए कि सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अनजान लिंक आ जाते हैं और उस पर बच्चे क्लिक कर देते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे लाइक आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी भी बच्चे को आप बोलिएगा, छोटे बच्चों को, कि पर्सनली ना शेयर करें, एंड किसी भी लिंक पर या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मतलब कनेक्ट ना हो, एंड किसी को भी अपना पर्सनली नंबर शेयर ना करें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और साथियों, मैं आपको और भी बातें यहाँ पर बताने वाली हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। उन्हें समझाइए कि अगर कोई उन्हें असहज महसूस कराए, डराए या गलत तरीके से छुए, तो तुरंत भरोसेमंद बड़े लोगों को बताना चाहिए। मेरे गले में भी पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बच्चों को चुप्पी नहीं रहने दें, एंड बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी जो अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, कि आप उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करें। दोस्त पेरेंट्स से ज़्यादा माता पिता तो आप हैं ही, लेकिन उनसे ज़्यादा आप उनके मित्र बनिए, उनके दोस्त बनिए, ताकि बच्चा अपनी हर एक बात आपसे शेयर करें, ना कि वो बाहर किसी अजनबी से अपनी दिल की बातें शेयर करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं और वो ज़रूरी भी है, लेकिन उनके दोस्त बनकर भी आप रहिए। जहाँ पर अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं तो वहाँ पर आप उन्हें समझाइए, एंड उन पर गुस्सा करने के बजाय आप उन्हें प्यार से समझाइए, बताइए चीजों के बारे में कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी दोस्तों, आपसे अभी और भी बात करेंगे, लेकिन कुछ गीतों का यहाँ पर टाइम हो गया है, तो कुछ म्यूजिकल ब्रेक भी लेते हैं, एंड मैं थोड़ा सा पानी भी पीकर आती हूँ और आप भी पानी पी लीजिए, मुस्कुराइए। और दोस्तों, आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाइए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को कौन कौन सी शिक्षा देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, जरा हमें बताइएगा। नंबर है 9837896896।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

हाँ जी दोस्तों, हम तो आ गए हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। और दोस्तों, आज के समय में बच्चों की सुरक्षा सिर्फ घर के बाहर ही नहीं बल्कि मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में भी बहुत ज़रूरी हो गई है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा लिंक सुरक्षित है और कौन सा खतरनाक। कई बार अनजान मैसेज, फेक लिंक्स और अनजान ग्रुप्स बच्चों को साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बच्चों को फ़ोन देना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें सेफ इंटरनेट यूज़ करना भी सिखाइए। बच्चों को बताइए कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपनी पर्सनल डिटेल जानकारी किसी से ना शेयर करें, और कुछ गलत लगे तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं। और सबसे ज़रूरी बात, पेरेंट्स सिर्फ बच्चों के गाइडेंस ही नहीं होते, उनके दोस्त भी, आप उनके दोस्त भी बन के रहिए, क्योंकि जब रिश्ते में दोस्ती होती है तो बच्चे अपनी हर छोटी बात खुलकर शेयर कर पाते हैं। और दोस्तों, याद रखिए, डांट से ज़्यादा ज़रूरी है भरोसा और डर से ज़्यादा ज़रूरी है संवाद, बातचीत। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों के साथ अब आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति, लेकिन कुछ और मैसेज यहाँ पर आए हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मौसीम अंसारी जी का, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। साथ में अंसारी इनके फ्रेंड्स भी हैं, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी और सद्दाम अंसारी जी का मैसेज हमारे पास आया है। एंड ये अपना संदेश पहुंचाते हैं काशी नगरी बनारस से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, रुकैया फातिमा जी का नहीं आया है ये मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, अफरोज फातिमा जी हमें पहुंचाती हैं एंड कहती हैं, मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छी होंगी। और इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं, मैंने कब कहा कि मुझे गुलाब दे या फिर मोहब्बत से नवाज दे, आज बहुत उदास है दिल मेरा, गैर बन के ही सही तू मुझे जवाब दे। ओ हो हो, क्या बात है भाई अफरोज, आज क्या हुआ है सुबह सुबह शायराना अंदाज। हाँ, एंड इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भी भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। एंड यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज हमारे पास दीपिका का आया है और ये, हाय गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप देती हैं, धन्यवाद आपका, मोस्ट वेलकम डियर। ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फ़र्ज है आप तक गानों के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ जानकारियाँ भी देना। और दोस्तों, अब जाते जाते बस मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, और हाँ, पानी भी पीते रहें, घर से बाहर बेवजह ना जाएं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एंड उसके अलावा बस हम कहते रहेंगे कि आप फ्रेश ताज़ा खाना खाएं, कम खाएं लेकिन ताज़ा खाना खाएं, और ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड ना लें, इस्तेमाल ना करें। आप हल्का लाइट खाना खाइए, जो आपको, जैसे आप छाछ भी ले सकते हैं, दोपहर में आप दाल चावल हरी सब्जी एंड रोटियां, और आप रायता भी, खीरे का रायता बहुत टेस्टी होता है, आप बनाइए, आपने अगर बनाया है तो वेरी गुड। एंड मुझे तो बहुत पसंद है और मैं गर्मियों में ज़्यादा वही खाती हूँ, खीरे का रायता। बाकी आप फ्रूट्स का रायता भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको पसंद है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं और अब मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ऐसे ही ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
9: अपोजिट
8: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
10: विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
11: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
10: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वागत है साथियों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, और ये कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा शो, अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपका दोस्त RJ आनंद। आज की बात बहुत जरूरी है क्योंकि आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है। श्रोताओं, ये एक ऐसा दिन है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तम्बाकू सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी और अपने परिवार की खुशियों को खो देता है। और इस साल का संदेश भी बहुत साफ है, अनमास्किंग द अपील, यानी कि इस दिखावे को हटाना है। तंबाकू और निकोटीन कोई स्टाइल या आधुनिकता की चीज है, असल में ये एक लत है, एक बीमारी है जो खासकर हमारे नौजवानों को अपनी तरफ खींच रही है। और इसी कड़ी में बात करने के लिए एक बार फिर से हमारा साथ दे रही है टीकन देवी, यानी कि हमारी प्यारी टीकन भाभी। तो टीकन भाभी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: और मेरे प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, आज तंबाकू का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ सिगरेट तक सीमित थे, लेकिन आज नए नए रूप आ गए हैं। ई सिगरेट, फ्लेवर्ड, निकोटीन पाउच, ये सब ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे ये सुरक्षित हो, आधुनिक हो, लेकिन सच्चाई ये है सब एक ही चीज है, लत लगने के तरीके। और सबसे दुखद बात तो ये है कि ये खासकर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रहे हैं,
0: जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किसकी तरफ जा रहा है।
1: बिल्कुल यही सच्चाई है, कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती है जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई कर लो, दोस्तों के साथ मजा आएगा, स्टाइलिश लगेगा, लेकिन असल में वही से लत लगनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शरीर निकोटीन की आदत हो जाती है और ये सिर्फ चॉइस नहीं रह जाती है, ये एक जरूरत बन जाती है। इंसान चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता और कोशिश और शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं।
0: टीकन भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है, क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुनते हैं?
1: हाँ भैया, भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है। करीब हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसे स्मोकर्स और सस्ते तंबाकू उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए ये संख्या कितनी बड़ी है, और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हैं जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वो भी शामिल हैं जो दूसरों के धुएं के संपर्क में आ जाते हैं।
0: मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बच नहीं पाते।
1: इसे हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तंबाकू लेता है, तो उसका असर काफी बाकी सभी लोगों पर भी पड़ता है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारी बढ़ जाती है, बार बार खांसी जुकाम होता है। महिलाओं में कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान गंभीर समस्याएं हो सकती है, यानी व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भी भारी पड़ सकती है।
0: भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक गलतफहमी है?
1: नहीं, ये पूरी तरह से एक भ्रम है और बहुत खतरनाक भ्रम है। तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट। हर रूप शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों की खराबी, ये सब सीधे सीधे तंबाकू से जुड़े हुए होते हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी कमजोर कर देता है।
0: मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी जड़ है जिसमें कई खतरनाक बीमारियां निकलती हैं और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करती हैं।
1: बिल्कुल भैया, और यही वजह है कि इसे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियों और सेहत को बचाने का फैसला होता है। इसीलिए आज नहीं तो कल, लेकिन ये कदम उठाना ही होगा।
0: चिकन भाभी, कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक किसी की मतलब असली कहानी से ना जुड़े। ऐसा होता है ना कि जब तक कोई कहानी उनके सामने ना आ जाए तब तक उन्हें वो चीज समझ नहीं आती। क्या आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें और हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे?
1: हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ हमारे ही इलाके के एक आदमी की। उनका नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर थे, सुबह से शाम तक काम करते थे, परिवार चलाते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले उन्होंने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। ऐसे धीरे धीरे एक दिन में 2 बीड़ी पीने से लेकर 10-12 बीड़ी पीने तक पहुँच गयी। उसकी पत्नी अक्सर उन्हें समझाती, ये मत पियो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन रमेश हंसकर टाल दिया करते थे, कुछ नहीं होता, मेरे बाप दादा भी पीते थे। समय बीतता गया और एक दिन रमेश को खांसी शुरू हो गई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और काम करने में मुश्किल होने लगी। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। जांच में पता चला कि उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे और शुरुआती टीवी भी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अभी भी नहीं रुके तो हालात और बढ़ जाएंगे। उस दिन पहली बार रमेश डर गया था। उसने अपने बच्चों को देखा, अपनी पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर बार बार निकोटीन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ दिनों बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूल में जाते हैं, युवाओं से बात करते हैं और कहते हैं, जो शुरुआत में मजाक लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाता है।
0: सच में भाभी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे उसे वापस भी ला सकता है।
1: बिल्कुल, और यही संदेश हमें सब तक पहुँचाना है।
0: तो भाभी, अगर कोई व्यक्ति सच में ये ठान ले कि उसे तंबाकू छोड़ना है लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करे, तो वो क्या करे? क्योंकि कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं।
1: देखिए, सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना, अपने मन में ये ठान लेना कि आज के बाद नहीं। जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर की कोई भी सलाह काम नहीं करेगी। उसके बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीज हटा दें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वो चीज सामने दिखती है उतना ही मन डगमगाएगा। इसके साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को भी बताइए कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ सकें, आपको रोक सकें। जब आपका मन डगमगाए, आगे आगे अगर जरूरत महसूस हो, डॉक्टर या काउंसलिंग की मदद लेना बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकार की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है, जहां मुफ्त में सलाह मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं। बीच बीच में मन करेगा, मन बेचैन होगा, लेकिन अगर हर दिन खुद को संभालते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आदत कमजोर पड़ जाएगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी।
0: भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है? क्योंकि कई बार परिवार या तो बहुत डांटता है या फिर ध्यान ही नहीं देता है।
1: परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है आरजे आनंद। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांटने या ताना देने से इंसान और कमजोर पड़ जाता है, इसके बजाय उसे समझाइए, उसका हौसला बढ़ाइए, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें। घर में एक ऐसा माहौल माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो सकता है।
0: सच में बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी। साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, तंबाकू कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। बस एक मजबूत इरादा और सही सहारे की जरूरत है, और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चे और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना बहुत जरूरी है।
1: याद रखिए, लत से आज़ादी ही असली आज़ादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी जिंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसलिए आज ही सोचिए और पहला कदम उठाइए, तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक कहानी साझा करना चाहूँगी जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके। देखिए, ये कहानी है हमारे ही पास के एक गांव के रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण सा आदमी था, छोटा सा खेत, पत्नी और दो बच्चे। मेहनती था, जिम्मेदार था। एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी, खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे ये आदत रोज की जरूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती थी, बच्चे भी कहते थे बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही था, कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हुई, फिर एक छोटा सा घाव बना जो भरता ही नहीं था। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ गए। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ, और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया मुंह का कैंसर। ये सुनकर जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज बदल गई और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। अपने बच्चे, अपने पिता को उस हालत में देखकर डर जाते थे। जो आदमी कभी उनके लिए ताकत का सहारा था, वही अब खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्च बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ उसकी सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। और आरजे आनंद, सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था, काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है, सेहत, पैसा, परिवार की खुशियाँ, सब कुछ। इसलिए जो आज फैसला ले सकते हैं वो कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उनका असर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है।
0: सच कहूँ टीकन भाभी, ऐसी कहानियाँ सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगियाँ हैं, असली परिवार है और एक ऐसा दर्द जिनकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बताकर नहीं आती।
1: बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है कि हम डरकर नहीं समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं, छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते तो कभी शुरुआत मत कीजिए। साथ ही अपने बच्चों और युवाओं को भी समझाइए कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं बल्कि उसे दूर रहने में है।
0: और साथियों, याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज का होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों की खुशियां और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश ना स्टाइल में ना ट्रेन में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में, तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले एक बार फिर हम मिलकर यही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें,
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कहीं। तो दोस्तों, मैं था आपका दोस्त आरजे आनंद, अभी लेता हूँ आपसे इजाजत इस प्रोग्राम से। बस जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, यानी कि सेहत सही लाभ कही में, एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है, और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
0: वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
1: यही तो पोषण की असली तस्वीर है, और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
0: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे। पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव, सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं, वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
0: तो सबसे आसान भाषा में बताइए, पोषण आखिर होता क्या है?
1: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन, जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
0: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
1: देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
0: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
0: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता, बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
0: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
1: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
0: और प्रोटीन?
1: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
0: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
1: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए, लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
0: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
1: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
0: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
1: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
0: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
1: जीवन के पहले 1000 दिन, गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
0: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
1: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
0: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
1: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
0: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही? सही है?
1: नहीं नहीं बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित

0: सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है। ऐसी मिथिक महिलाओं को पोषण से दूर कर दे।
1: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
0: जैसे कि आपने सुना होगा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
1: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
0: जी बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
1: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
0: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
1: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
0: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
1: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
1: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
0: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
1: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मन कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
1: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
0: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वे ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
1: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
0: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
1: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
0: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
1: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
0: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
1: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
0: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
1: क्या आरती ने सलाह मानी?
0: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
1: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा।
0: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
1: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
0: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीने बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
1: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
1: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
0: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
1: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
0: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
1: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
0: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
1: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
0: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
1: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
1: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
1: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
1: लाभ गई, धन्यवाद। सेहत सही तो लाभ गई, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त RJ रीना। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ है हमारे अपने गांव-गांव के स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी से करना चाहती हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ रीना, मैं भी उस बच्चे को जानता हूँ।
0: गर्मी का मौसम था, गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत थे। सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया, शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू जिंदा होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह लापरवाही है, जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी है।
1: बिल्कुल सही, इनका मकसद सिर्फ एक ही है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए काम करना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे मिलकर हराना होगा।
0: भैया, क्या यह सिर्फ जागरूकता के लिए है या इसके पीछे और भी उद्देश्य हैं?
1: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। यह दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक मंच पर लाता है, ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सके। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियां होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
0: इस साल की थीम क्या है और इसका क्या मतलब है?
1: इस साल की थीम है ड्राइविंग टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो तकनीक और वो संसाधन है जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
0: सेहतिया भैया, जरा आसान भाषा में बताइए, मलेरिया आखिर होता क्या है?
1: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज़ोडियम नाम के एक परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एन्फोलिज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
0: मतलब यह शरीर के अंदर फैलता रहता है?
1: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुँच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
0: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयाँ आई है, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहाँ तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही है उसमें नई तकनीक है, और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं, उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थी जो ज्यादा असरदार हैं।
0: तो क्या दुनिया में मलेरिया कम हुआ है?
1: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहाँ मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
0: लेकिन फिर भी मलेरिया अभी खत्म क्यों नहीं हुआ?
1: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
0: सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
1: चुनौतियाँ कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयाँ पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। और तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
0: क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होते हैं?
1: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होते हैं। जहाँ साफ पानी की है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, वहाँ ये बीमारी ज्यादा फैलती है। इसलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।

0: मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

0: अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं। और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है। और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
3: You are listening FM Muradabad 89.6 MHz.
4: Committed to community.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। शक्ति की आराधना का यह पावन पर्व हमें नारी के दिव्य स्वरूपों से परिचित कराता है। नवरात्रि के इस चतुर्थ दिवस पर हम पूजन करते हैं माँ कुष्मांडा की, जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि सृजन, सकारात्मकता और ऊर्जा से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है, और आज का उत्तर प्रदेश इसी सृजनशील शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की एक नई दिशा तय की है, जहां हर क्षेत्र में नवाचार, आत्मनिर्भरता और प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है। आज प्रदेश की महिलाएं सिर्फ भागीदारी ही नहीं बल्कि विकास की अंगदूत बन चुकी हैं। चाहे वह स्वरोजगार हो, स्टार्टअप हो या फिर रात, तो आइए माँ कुष्मांडा की सृजन शक्ति और ऊर्जा से प्रेरणा लेकर हम सभी मिलकर विकास और नारी सशक्तिकरण के इस सफर को और गति दें। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राज और आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। बने रहिए FM मुरादाबाद के साथ, जानने के लिए कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास मिशन यानी UPSRLM उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है।
1: कहते हैं कि जब कोई आपकी सहायता करते हैं तो उन्हें धन्यवाद करने में देरी नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो मदद किसी दोस्त ने की हो या फिर रिश्तेदार ने या फिर खुद सरकार ने।
0: साथियों, विनय कुमारी का गांव घाटमपुर कानपुर में स्थित है, जहां के लोग बहुत सीधे साधे और जमीन से जुड़े हुए हैं। यहां आज भी पेड़ पौधे और धरती माता पूजी जाती हैं, और यहां के निवासी प्रकृति को ही अपना सर्वत्र मानते हैं।
1: मैं 10वीं कक्षा में थी तब से मेरी रुचि खेती में बढ़ गई थी। स्कूल में मास्टर जी जब जीव ज्ञान पढ़ाते थे तो पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए मेरा हाथ सबसे पहले उठ जाता था।
0: 12वीं में अच्छे अंकों से पास होने के बाद विनय कुमारी ने BSc एग्रीकल्चर में दाखिला लिया और अपनी रुचि को पेशे में बदलने का निश्चय किया,
1: जहां मेरे साथ के सभी सहपाठी बड़े शहर में नौकरी करने को इच्छुक थे। मेरी मनसा अपने गांव के लिए कुछ करने की थी, पर अपनी कोशिश में मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ की थी मेरी सहेली किरण, जो क्लास में तो मुझसे जूनियर थी लेकिन जानकारी और समझदारी में आगे। उसने ही मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताया।
0: दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी UPSRLM ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से जोड़कर बैंकिंग सखी, सोलर शॉप और मधुमक्खी पालन जैसी योजनाओं द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। आज यह योजना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 826 ब्लॉकों में मौजूद है, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बना रही है।
1: जैसे ही किरण ने मुझे इस योजना के बारे में बताया, हम दोनों ने जन सेवा केंद्र गए और सरकारी दफ्तरों से भी विस्तार में जानकारी ली। इसके बाद से तो हम दोनों सखियों ने ठान लिया था कि अपने साथ साथ गांव की हर एक महिला को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
0: श्रोताओं, हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर अपने पैसे निकालने या बैंक खातों की जानकारी अपडेट करने के लिए पास के शहरों में स्थित बैंक शाखाओं पर जाते हैं, जिससे वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने की लागत बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण महिलाएं अक्सर बैंकिंग लेन देन के लिए रिश्तेदारों या दोस्तों पर निर्भर रहती हैं। इसके अलावा गरीब लोग अक्सर बिचौलियों की भीड़ में परेशान रहते हैं। कई बार ये बिचौलिए गरीबों के फायदे के लिए लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा करते हैं और बाद में धोखाधड़ी भी करते हैं। प्रौद्योगिकी की प्रगति और बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ने के बावजूद भारत में ग्रामीण निवासियों के लिए बैंकिंग सेवाओं में सुधार की गुंजाइश है, और ऐसी चुनौतियों को खत्म करने के लिए ही प्रदेश सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चला रही है।
1: इस योजना के अंतर्गत हमें ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमें जैविक कृषि के कई पहलुओं को समझा और रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव, बेस्ट डिकम्पोजिशन का महत्व, समय समय पर खेतों की मिट्टी की जांच एवं संतुलित उर्वरक प्रबंध मिशन, खेती और उन्नत बीजों के माध्यम से पैदावार में बढ़ोतरी करना, सरकारी सब्सिडी और कृषि यंत्रों में संबंधित तमाम तरीके की जानकारी प्राप्त की। मैंने अपने गांव में बजरंगबली सहायता समूह

0: और किरण के महालक्ष्मी सहायता समूह बनाया और हम दोनों ने अपने अपने गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़ा।
1: दोस्तों, इस योजना के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC सखियों की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने BC सखी कार्यक्रम या मिशन एक ग्राम पंचायत एक BC सखी को अपनाया है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHG की महिला सदस्यों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना है। SHG की यह अवधारणा महिलाओं पर केंद्रित सबसे बड़े ऋण और बचत कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को बेहतर बनाना है। इसके बाद BC सखियां उन क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकती हैं, जहां बैंक की शाखाएं मौजूद नहीं हैं।
0: जब हमने अपने स्तर पर थोड़ी और जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इस कार्यक्रम के तहत BC सखियों को बैंक सेवा व्यवसाय की स्थिरता करने में मदद करने के लिए 6 महीने तक प्रति माह 4,000 की राशि प्रदान की जाती है। व्यवसाय बढ़ाने पर BC सखियों को उनके द्वारा किए गए लेन देन की राशि के आधार पर कमीशन का भुगतान किया जाता है, जो आमतौर पर लेन देन की राशि का यानी कि 0.20% या 0.32% होता है। संभावित महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को जिला स्तर पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों RSETI या अन्य चयनित स्थानों पर BC मॉडल का प्रशिक्षण किया जाता है। RSETI में पहले से ही बैंकिंग संवाददाता प्रशिक्षण पर ही 6 दिवसीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD द्वारा अधिसूचित किया गया है। प्रशिक्षुओं के प्रत्येक बैच को 6 दिन का प्रशिक्षण किया जाता है।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश में COVID-19 महामारी के लॉकडाउन के बीच मई 2020 में 58,000 BC सखियों को तैयार करने के लक्ष्य के साथ यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्तमान में राज्य में 38,435 BC सखियां कार्यरत हैं, जिन्हें भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान IIBF द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह मॉडल समाज के उन वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का एक किफायती और टिकाऊ यंत्र साबित हुआ है, जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है।
0: आज प्रदेश सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से यह संभव हो पाया है कि हमारे गांव की महिलाएं अपने आप को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त महसूस करती। हमारे जीवन को यह नई दिशा देने के लिए योगी जी को अनेक धन्यवाद।
1: श्रोताओं, कानपुर के गांव घाटमपुर की इन दो कृषि सखियों का प्रयास उनके गांव की दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा रहा है। इन सखियों ने अपनी मेहनत और सरकारी सहयोग से यह साबित कर दिया है कि यदि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो महिलाएं कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकती हैं। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज के लिए बस इतना ही, फिर जुड़ेंगे आप से लेकर उत्तर प्रदेश की जनता की सफलता की दूसरी कहानियों के साथ। पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
6: हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में खास मेहमान विदिशा सिंह, जो एक काउंसलर, पीयर सपोर्टर एवं पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच हैं, जो बच्चों के साथ उनके माता पिता और महिलाओं के इमोशनल वेलबींग, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि सशक्त मन ही सशक्त जीवन की नींव होता है। माइंडफुलनेस और मोटिवेशन के माध्यम से वह बच्चों को आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका कार्य केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। मैं हूँ भावना और मेरे साथ है मेरे साथी आशीष। हमारे बीच में स्वागत करते हैं दोनों मिलके विदिशा सिंह जी का। हेलो मैम।
7: हेलो भावना जी।
8: और जैसा हम लोग हमेशा से किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज आपके साथ विशेष चर्चा हम बच्चों को लेकर करना चाहेंगे कि जब हम बच्चों के एग्जाम्स के रूटीन में जा रहे होते हैं तो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर काम कर रहा होता है, और भले ही पेरेंट्स उनको ये समझाएं कि बेटा तुम बहुत मेहनत से पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बहुत सारे डर घर कर गए होते हैं क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ऐसे में आप उन्हें क्या यहाँ से कोच करना चाहेंगी और कैसे उनके अंदर की ये एंग्जाइटी, ये डर हम दूर कर पाएंगे मैम?
7: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम बड़े ही उस डर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर कभी भी आपने देखा होगा जब बोर्ड एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम्स की शुरुआत होती है तो हम हमेशा बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स आ रहे हैं नहीं बोलते, एक तरह से एक एनवायरमेंट सेटअप कर देते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं एग्जाम फीवर, एग्जाम स्ट्रेस,
8: फोबिया।
7: Exactly. तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बच्चों को ये बता दिया कि ये जो एग्जाम है ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दें कि एग्जाम्स हैं, साल भर आपने जो पढ़ा है वो बस एक तरह से आपका एक टेस्ट लेने की उसमें कोशिश है कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में।
8: फटाफट उठो, पढ़ाई करो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों को याद ज्यादा रहता है, तो उसको हम कैसे क्या ऐसा बताएं कि वो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करें और वो अपने उस फ्लो चार्ट पर काम करें, उस पैटर्न पे काम करें जिससे उनके मार्क्स पर उसका असर दिखाई पड़े।
7: एग्जैक्टली। अब मैं आपको आप ही के इस लाइन से एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही एग्जाम्स के बारे में बात आती है तुरंत उसका जो रिलेशन होता है वो मार्क्स कितने स्कोर करोगे, कैसा परफॉर्म करोगे उसके ऊपर हो जाता है।
8: एग्जैक्टली।
7: सबसे पहले मैं हर माता पिता को ये बोलना चाहूंगी कि जब एग्जाम है तो उसको आप एक पर्टिकुलर चीज लेकर के चलिए। आज टाइम है कि बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरा फोकस दे देते हैं जैसा अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा।
8: एग्जैक्टली।
7: रिजल्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो एग्जाम्स देने के बाद आता है। आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अभी जो फोकस है वो सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उस वक्त हम क्या ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से शांत मन से रहें, एंग्जाइटी कम रहे उनके अंदर और एक जो डर है वो खत्म हो। और उसके लिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि माता पिता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी परेशान है, और खास करके ये बात मैं माओं के लिए कहना चाहूंगी कि जितना बच्चा परेशान नहीं होता शायद उससे 50-60% ज्यादा उनकी माताएं परेशान हो जाती हैं। आप एक ऐसा एनवायरमेंट ऑलरेडी अपने घर में सेटअप कर दे रहे हैं, टीवी नहीं चलेगा, खेलने नहीं जाना है, हम बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, किसी की वेडिंग अगर, क्योंकि देखिए मार्च ही सीजन होता है, फरवरी मार्च जिस टाइम पे शादियां भी हो रही होती हैं और इसी टाइम पे एग्जाम्स भी आ रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन घर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस बात पे भी हमें थोड़ा सा रुक कर सोचने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जितना उनको पढ़ना था उन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई अब पूरे साल भर कर ली है।
2: एग्जैक्टली
7: अब खाली जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस चीज को वो कितना याद कर पा रहे हैं, उस चीज को रिवाइज कितना कर पा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए।
8: लेकिन नहीं लगता भावना की एक साइकोलॉजी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की कंडीशनिंग के साथ में आती है, क्योंकि हम जब बच्चा छोटा है, जैसे अभी आपने कहा कि बड़े बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको भी पता है कि उन्हें क्या तैयार करना है, लेकिन कंडीशनिंग वैसी हुई है ना फ्रॉम द रूट्स, तो वो फ्रॉम द रूट वाली कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं एक ओवर शेडो बनता बनता उनके हायर क्लासेस में भी दिखाई पड़ता है और वो एक फोबिया उनके चारों तरफ क्रिएट करके हम रख देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो स्वतंत्र होकर दिमाग से काम करें जैसे आपने कहा।
6: और आशीष एक बात और मैं कहूँ कि बड़े बच्चे के साथ साथ अब हम लोग छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने लगे हैं कि आपका बच्चा नर्सरी या फर्स्ट में ही रहता है फिर भी आप उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं कि हमारा बच्चा जितने भी क्षेत्र है उसमें बिल्कुल अव्वल ही आए और वो बच्चा पीठ पर बोझ लादे किताबों का, वो कहाँ से बढ़ता साइकोलॉजी मतलब चेंजेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं।
7: बहुत समय लगेगा और कहीं ना कहीं मेरा जो काम है मेरी भी कोशिश इसी क्षेत्र में है कि सबसे पहले ये जो कंडीशनिंग हो गई है कि एग्जाम्स चाहे सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे का हो या क्लास 10th और 12th के बच्चे का हो।
2: Yes.

0: हो गई, लेकिन पूरे साल में क्या वो पूरे दिन भर में एक बार भी उन किताबों को, अगर उसको होमवर्क नहीं मिला है उसके अलावा भी क्या वो उन किताबों को खुद कभी उठा करके बैठता है या सिर्फ उन पन्नों को खुद पलट करके ऐसे देखने की कोशिश करता है कि आज मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो शुरुआत हमें वहां से करनी है
1: जी।
0: ये नहीं कि जब बच्चा क्लास 10th में आ गया तो उस चीज को आपने एक फोबिया बना दिया कि अब आपके बोझ आ गए हैं और आपको बिल्कुल करो या मरो की स्थिति को में पहुंच चुके हैं और इसको आपको पूरा करना ही करना है
1: जी।
0: कहीं ना कहीं एक और बात मैं बोलना चाहूंगी दोबारा से कि ये जो मार्क्स है ना ये इतना बच्चों के लिए ट्रॉफी सिंबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉफी सिंबल है कि मेरे बच्चे ने 99% स्कोर किया, 95% स्कोर किया। आप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, हर माँ बाप रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कब आपने उसका हाथ पकड़कर साथ उसके बैठ करके ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कितने भी नंबर आ जाएं,
2: बिल्कुल
0: तुम लाइफ में कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ, आगे बढ़ पाओ नहीं बढ़ पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सिर्फ ये एक लाइन एक बच्चे को जो आत्मविश्वास दे सकती है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, कोई काउंसलर नहीं दे सकता
1: जी।
0: क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करता है जहां बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे ये पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, लेकिन एक विश्वास जो मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर है, जो माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उसे मुझे आगे बढ़ाना,
1: उसे प्रूव करना है कहीं। लेकिन नहीं लगता आपको कि ये एक स्टिग्मा हो चुका है सोसाइटी लेवल पर, या जैसे आपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो एक मजबूरी भी है शायद पेरेंट्स की, क्योंकि जब बच्चों का परसेंटाइल देखे जाते हैं, परसेंटेज देखे जाते हैं, पता चला कि साहब किसी का 92% आ रहा है, किसी के 95, अब तो 99% नंबर भी मिलने लगे बच्चों को, हालांकि हमारे टाइम पे ऐसे हम लोगों को तो नहीं मिलते थे, लेकिन जहां 99 के स्कोर तक कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर कोई बच्चा 90% भी ला रहा है तो ये माहौल बन जाता है कि अरे इसके तो 90% आए, मतलब इतने कम ये क्या कर पाएगा। ये पेरेंट्स में जो बना हुआ एक डर है, आपको नहीं लगता कि पहले ये निकल जाए?
0: ये जो डर है ना ये कलेक्टिवली नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब कलेक्टिवली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो आप भी ये मानेंगे कि हर अभिभावक जो होता है ना वो हामी जरूर भरता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भीड़ से अपने घर के दरवाजे के अंदर पहुंचता है तो उसको अगर आंख बंद करके वो सोचे ना तो वो सच में ये बात बोलता होगा अपने आप से, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया।
1: वही चीज़। हाँ।
0: यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सोच बदलने की बात हो रही है ये हमें इंडिविजुअल स्तर पे करनी पड़ेगी। हर एक पेरेंट जब इस विश्वास के साथ अपने बच्चे से बात करेगा कि जो कंपटीशन का माहौल हो रहा है, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें एवरेज होकर के भी आप कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता,
1: राइट।
0: आजकल के टाइम में भी जिस तरह से कंपटीशन है या बहुत पहले से चला आ रहा है, जितनी सीट्स हैं, जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो लोग निकलते हैं, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि अगर आप 99% नहीं स्कोर कर पा रहे तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे।
1: एग्जैक्टली। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे आपके बीच में जहां पर बहुत कम स्कोर करने वाले भी इतिहास रच के चले गए। क्यों भावना?
2: बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैम आपने अभी कहा है कि ना कि 99% के बावजूद भी 90% लाने वाले भी लोग बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो है माता पिता के मन में ये कैसे बिठाए जाए, क्योंकि वो इतना प्रेशर कर देते हैं कि बच्चा इंटर किया नहीं। आप आज हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में आए ही आए, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? ये माता पिता के दिमाग में कैसे लाई जाए ये बात?
0: भावना जी ये जो मार्क्स है ना, कब तक? जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन कब तक?
2: जी
0: जब तक आप वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में, आज मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो उस आत्मविश्वास

0: के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या, मैं कुछ और जरूर तलाश लूंगा अपने लिए। फेल हो जाना या नंबर कम लाना, वो आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ साथ देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज है जहां मैं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अब समय मेरे लिए रुक गया। इनफैक्ट अब तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, असली समय तो अब शुरू हुआ है जब वो आपके घर के उन बाउंड्रीज, उन सेफ स्पेस से आगे निकलेगा।
1: बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं मैम, और ये बात सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं है, ये बात उन सारे बच्चों के लिए है कि सिर्फ जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छी बात आप बोल रही, क्योंकि ये बात सिर्फ माता पिता ही नहीं समझा सकते, ये बात आप जैसे काउंसलर भी समझा सकते हैं।
0: एक माता पिता अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है।
1: जी
0: विश्वास मानिए, आज भी हर बच्चा जो मेहनत करता है और जब उसके पिताजी घर में आ रहे होते हैं और एक नजर जब उस बच्चे की अपने पिताजी पे, अपने माताजी पे पड़ती है, तो उसे आज भी ये लगता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे इनको प्रूव करना है।
2: Correct.
0: और सिर्फ उस वक्त अगर आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये कह देंगे ना कि बेटा मुझे पता है तुमने मेहनत की है, चाहे जितनी भी की हो, जितना पढ़ लिया है उतना ही परफॉर्म कर लो। यकीन मानिए, अगर बच्चे ने अपना सिर्फ 60% कोर्स भी पूरा करा हुआ है ना, और उस 60% को वो अगर 100% लगन से रिवाइज कर लेगा, जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम्स 2-3 दिन ही बाद हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके परफॉर्मेंस में 70-80% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
2: करेक्ट। और वैसे भी देखिए, स्काई इज द लिमिट, आपके पास खुला आसमान है, आप अपने आप को जैसा भी मोल्ड करना चाहते हैं ढाल सकते हैं, बशर्ते आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। और शायद रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ अपने तमाम लिसनर्स को इसी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बीइंग अ पेरेंट आप हमारे शो को सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आप हमारे शो को सुनिए, और कुछ ऐसी बातें अपने अंदर बदलने की कोशिश कीजिए जो आपके फ्यूचर को और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान विदिशा सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो काउंसलर हैं और जो आपको ये बता सकती हैं कि एक साइकोलॉजी कौन सी काम कर रही होती है कि बच्चा उस फोबिया को अपने अंदर से निकाल सके। लेकिन विदिशा जी, आपने कामनेस की बात की कि पेरेंट्स जब आए तो एक बच्चों को कंसोल करते हुए कामनेस दें कि बेटा तुम चिंता मत करो। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो जब हमारे माता पिता हमारे सामने आते थे तो हमें डर ये लगता था कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि डांट पड़ जाए। लेकिन आज बच्चे मुझे लगता है कि उस गलती के बारे में नहीं सोचते कि डांट पड़ेगी अगर कुछ गलत करेंगे, लेकिन हाँ उनके दिमाग में ये जरूर है स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो जरूर हमारी खिंचाई होने वाली है, डांट पड़ने वाली है। साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि हम बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और अपने ऊपर भी क्रिएट करते हैं, और उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि हमने देखा बहुत सारे कोटा में बच्चों को देख लीजिए जो डेथ कर जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज के डेट में आप देखिए डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, जबकि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के बाद होता था। तो इसको कैसे कैसे दूर करें, इसके लिए क्या फ्लो चार्ट बना के चलें, क्या क्या हमको सेगमेंटाइज करना होगा अपनी चीजों को?
0: बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई खबरें मैं सुनती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से डील कर रही होती हूँ जिनको मैं समझाने में बहुत असमर्थ रहती हूँ कि इतनी प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो मेरी बात को सुनने को नहीं तैयार रहते। लेकिन इन सब में सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा कम समय हम देते हैं वो शायद हम देते हैं इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देकर। बच्चा आया और उसने बोला मम्मी मुझे डर लग रहा है, तुरंत क्या जवाब आता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है,
2: या फिर कंपेयर कर देते हैं हम किसी से, देखो वो तो नहीं डरता।
0: एग्जैक्टली। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, इसका शायद सही तरीका ये होता है कि उस वक्त आप बच्चे को बोलिए कि हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसे समय में ये होना बहुत आम बात है। जब बच्चा जो फील कर रहा है, जो भी उसके डर, भय या एक तरह से आत्मविश्वास नहीं आ पाना, जो भी उसके इमोशंस हैं, अगर आप उन इमोशंस पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है। और इनफैक्ट ये बात मैं बच्चों के लिए भी बोलूंगी कि जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे घबराहट हो, तो बिल्कुल ही जैसे जिसको हम अपने टर्म्स में एक फेक पॉजिटिविटी भी कहते हैं
2: जी,
0: जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ फील कर रहे हैं और आप अगर उसको दबाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशन शूट अप करेगा।
2: एग्जैक्टली।
0: तो जब आपको डर लगे, जब आपको एंग्जाइटी हो, हर बच्चे से भी मैं ये बोलूंगी, उनके माता पिता को भी ये बोलूंगी कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपके बच्चे को डर लग रहा है
2: जी।
0: बहुत नॉर्मल है, एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, घबराहट हो रही है। आप अपने बच्चे को बताइए कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए बच्चों को मैं एक बहुत क्विक टिप देना चाहूंगी
2: प्लीज,
0: कि सबसे पहले तो जब आप अपने रिविजन के टाइम पे या नॉर्मल भी अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हमने देखा होगा कि बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि वो 1.5 से 2 घंटे का पूरा शेड्यूल बना करके रखते हैं, और अगर 2 घंटे से पहले बच्चा कमरे से बाहर आ गया तो उसको घर के सारे लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे कि उसने कितनी बड़ी कोई गलती कर दी। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन सिर्फ 35 मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है। उसके बाद अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है तो यकीन मानिए वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें उसको भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है। बच्चों के लिए क्विक टिप ये है कि हर 30 मिनट पे एक अलार्म क्लॉक रखिए और उसमें अलार्म सेट करिए। जैसे ही 30 मिनट्स का टाइम पीरियड चला जाएगा, आपका अलार्म बजेगा, आप उसको बंद करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और क्विकली आप अपने आप को ये एक ऐसे फेज में ला करके रखिए कि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाएं, देख पाएं कि आप जब आपने अलार्म बंद किया तो आप पढ़ रहे थे या आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है।
2: ठीक है।
0: बच्चा जितनी ज्यादा 35 to 40 मिनट्स के बाद जब एक क्विक राउंड लेके आएगा, घर में एक अच्छा माहौल देखेगा, माता पिता भाई बहनों या आजू बाजू थोड़ा सा वो बाहर निकल के आएगा, तो वो दोबारा से रेडी होगा अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को शुरू करने के लिए।
2: बहुत ज्यादा बच्चों पर लोग बोलते हैं कड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जमाने में तो कहा था समझावन लाल होते थे, समझावन लाल छड़ी को बोलते थे हमारे मास्टर्स की, जब तक तुम्हारे ऊपर छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक तुमको आएगी नहीं, कहते मुक्का पड़े घमाघम विद्याए झमाझम, ऐसा बोलते थे। तो अब कहीं ना कहीं वो नैरेटिव्स बदल चुके हैं पढ़ाई के,
0: और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इसके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आप डरा करके बिठा तो सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते।
2: बहुत बढ़िया, करेक्ट।
0: और जैसे आपने मुझे बोला कि ऐसा क्यों माँ बाप को लगता है कि अगर वो डांटेंगे नहीं, अपनी आवाज को ऊंचा करके नहीं बोलेंगे तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। हमेशा हमें अपनी बात बोलने के टाइम पे अपने टोन पे ध्यान देना चाहिए
2: जी।
0: आवाज ऊंची करके, चिल्ला करके, यकीन मानिए आप उस टाइम बच्चे को जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करते हैं बच्चा का दिमाग ऑलरेडी बंद हो जाता है, उसे सुनाई देना, समझना सब कम हो जाता है। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एक फिक्स्ड टोन रखिए, सीरियसली, बेटा मैंने तुम्हें बता दिया है ये समय पढ़ने का है, जाओ कमरे में बैठो पढ़ो, बात खत्म हो जाती है।
2: ठीक है, मान लिया अगर वो फिर भी नहीं मान रहे, देन
0: ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आता है। आप ये एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम्स के पहले बिल्कुल आपने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया, यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो इस वक्त, ये टाइम है एज अ पेरेंट आपको ऑब्जर्व करने का।
2: ठीक है,
0: कि आपका बच्चा जो है वो बोलने पे भी पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपको रियलाइज कराएगा कि अब समय जो है अभी वाला रुक चुका है, फिर मैं बोलूंगी समय खत्म नहीं हुआ है।
2: एग्जैक्टली।
0: ये वाले साल का जो समय था वो पूरा हो चुका है, अगला साल फिर आएगा। शुरुआत से ही आप एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है अपने बच्चे का जो शेड्यूल है उसके ऊपर काम करिए। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि हम हमेशा बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं। जब समय आ गया तभी करना है,
2: लास्ट आर
1: मतलब जब से सेशन शुरू होता है तब से हम पढ़ाई बच्चों के लिए, आपने अप्रैल मई में सारी चीजें फिर से पढ़ाई एक बार शुरू हो जाती है और जुलाई से तो सभी फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं, अब तो जून में ही क्लासेस शुरू होने लगी हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए उनका शेड्यूल अभी से बनाना शुरू कर दे, चाहे वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। और कहीं ना कहीं मैम ये भी जरूरी है कि बच्चों के साथ माता पिता को खुद भी बैठ के पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का आज जो समय है
2: करेक्ट
1: वो कहीं ना कहीं और बच्चों और माता पिता को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। आशीष जी आपका क्या कहना है?
2: नहीं बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रैंडमली अगर बच्चा फोन उठा ले रहा है तो मुझे लगता है उसको एक, जैसे आपने बोला कि फिक्स टाइम होना चाहिए कि बेटा अब उठिए, अब आपका टाइम हो गया, जाइए पढ़िए। इसी तरीके से अगर उनको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते उन्हें कि ऐसा मत करो क्योंकि आप उन्हीं के सामने मोबाइल देख रहे हो। तो बच्चों के आजकल अक्सर सवाल भी होते हैं भावना, आप तो कर रहे हो मुझे रोक रहे हो, तो
0: कैटेगरी के लिए देखिए, क्योंकि इसका जवाब हर एज ग्रुप के लिए बहुत डिफरेंट, मतलब जैसे जब हम छोटे बच्चों को केटर करेंगे तो अलग होगा, बड़े बच्चों के लिए इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्कूल्स भी डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फोन्स पे ही, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, जो भी पढ़ना है ये सारी चीजें भी
2: कंटेंट आता है उसपे
0: एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी एक ही आदत बना ली है कि मैं मोबाइल पे पढ़ूंगा, मेरा ये पर्सनली मानना है। वैसे
2: कोविड ने तो ये सिखा दिया है कि पढ़ो
1: मोबाइल से पढ़ो,
0: लेकिन मेरा, फिर मैं बोलूंगी मेरा ये एक बहुत पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी पढ़ाई हो रही है, जितनी अच्छी पढ़ाई आप बुक से कर सकते हैं उतनी अच्छी पढ़ाई शॉर्ट नोट्स की तरह आप एक क्विक रिविजन तो यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको बैठ करके कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब हम किसी चीज को विजुअली देखते हैं तो देखिए ये तो बहुत डेफिनेट है कि विजुअल देखने में हमें वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन आपको एग्जाम्स ओरली नहीं देने होते राइट, आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स या मैं कहूंगी एमसीक्यूज भी आपको करने होते हैं। उसके लिए अगर आप प्रॉपर ब्रीफली पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पैराग्राफ वाइज रीडिंग्स अगर नहीं करेंगे तो आपको उन आंसर्स को लिखने में परेशानी डेफिनेटली आएगी।
2: करेक्ट,
0: आप अपना जो टाइम शेड्यूल है अगर आप 1 घंटे में 45 मिनट्स बुक्स को दे रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम आप मोबाइल फोन से, यूट्यूब से उसके रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए दे लीजिए। लेकिन आजकल शायद इससे ऑपोजिट चीजें चल रही हैं कि 45 मिनट्स स्क्रीन टाइम देखते हैं और 15 मिनट आप उसके बाद उन किताब के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पेजेस को आप आगे पीछे करके देख लेते हैं।
2: मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरीके की यूटिलिटी या फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन उसको मॉनिटर आप करते रहे, बीइंग अ पेरेंट बहुत जरूरी।
0: मैं फिर बोलूंगी कि अगर बच्चा इतना बड़ा है कि आपने मोबाइल फोन उसके हाथ में दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे ने
2: नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पर्सनल मोबाइल फोन्स नहीं है लेकिन अपने पेरेंट के मोबाइल फोन तो यूज कर रहे हैं।
0: परफेक्ट परफेक्ट।
2: और जैसे आपने यूट्यूब का जिक्र किया या वो यूट्यूब पे हो सकता है कुछ कार्टून्स देख रहे हो या कुछ पोएम सीख रहे हो या कुछ इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस लर्न कर रहे हो, तो ऐसे में हमें कम से कम ये मॉनिटर तो करना जरूरी है ना कि वो देख क्या रहे हैं।
0: एग्जैक्टली, इसके लिए तो मैं हमेशा बोलूंगी कि वो देख क्या रहे हैं, ये हमेशा पेरेंटल कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके माध्यम से इस बात को भी मैं अवगत सच में कराना चाहूंगी कि जो बच्चे YouTube किड्स करके आता है उस पर भी आप मेरी बात मानिए, ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो शायद बच्चों को नहीं देखने चाहिए, जो उनकी नजरों के, लेकिन वो एनिमेटेड होते हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता कई बार, मुझे लगता है कि
2: ये सही कह रही हैं।
0: देखिए मैं आपको बहुत छोटे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल्स भी विजिट करती हूँ, ऑनलाइन पेरेंटिंग सेशंस भी लेती हूँ, मदर्स से भी स्पेशली मेरी बहुत बात होती है, हमेशा एक सवाल आता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे को इसके बारे में पता कहाँ से चला।
2: अगर
0: मतलब यहाँ क्योंकि हम एक नॉर्मल पेरेंटिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो मेरा दोबारा से ये कहना है कि अगर आपको ये पता चल भी गया कि आपके बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के बारे में पता चला है जिसको आपको लगता है कि इस एज ग्रुप में उसे नहीं पता
2: जो
0: होना चाहिए
2: लगता है हमें,
0: बिठाइए, डांटने से पहले अपने बच्चे से उसके बारे में बात करिए
2: जी,
0: ये बिल्कुल मत पूछिए कहां से पता लगा, क्योंकि यकीन मानिए अगर वो किसी दोस्त ने बताया होगा तो आपका बच्चा आपको कभी नहीं बताने वाला कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया है।
1: जी
2: जी।
0: लेकिन जब आप बोलेंगे कोई बात नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने ये कहां से सीखा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है वो आधी अधूरी है। मैं कह रही हूँ शायद अगर वो अमूमन बोलचाल की भाषा में गाली के बारे में ही क्यों ना हो, जिस दिन आपने अपने बच्चे को ये परमिशन दे दी कि मैं ही तुम्हारा गूगल हूँ, मैं ही तुम्हारी टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए यहाँ अवेलेबल हूँ,
1: बिल्कुल
0: आओ उस सवाल को मुझसे पूछो, हम दोनों साथ मिलके देखेंगे कि तुम्हारी एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी चीज कितनी चाहिए।
2: जी सही बात है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस बात के लिए उनका नर्चर करना जरूरी है कि आप भी समझें क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक
0: exactly.
2: है। ठीक है, जहां तक बात हम लोग कर रहे हैं पेरेंटिंग को लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स के खासकर टाइम पर बच्चे बहुत सारी उलझनों में होते हैं अपने नोट्स को लेकर अपने कंटेंट को लेकर, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि थोड़ा आप सेगमेंट वॉइस उनको बता सकें कि आप अपने पढ़ाई के फ्लो चार्ट को कैसे बनाएं ताकि अपने फोबिया भी दूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक डर है तो उस डर को धीरे धीरे निकालें और अच्छा परफॉर्म करें।
0: सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जो है एक स्ट्रेस वाले माहौल से मत करिए। जैसे ही आप उठे बॉक्स ब्रीदिंग करके एक टेक्निक होती है जिसमें आपने ब्रीद लिया 1 2 3 4 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद को रोकिए और एक्सहेल करिए मुंह से जोर से। वो एक्सहेल भी 1 2 3 4 आपने रोका और दोबारा आपने इनहेल किया, तो एक तरह से साइकिल की तरह फॉर्म हो गया, एक बॉक्स फॉर्म हो गया। आपने इनहेल किया और आपने एक्सहेल किया और उस बीच में आपने 4 सेकेंड का
2: स्टे किया,
0: स्टे रखा। इससे आपकी जो स्ट्रेस है, आप जब सुबह उठे हैं तो आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको अपने कंट्रोल में फील होगा।
2: ओके।
0: दूसरा, अपने दिन की शुरुआत एफर्मेशन से कीजिए। दिन भर आप ये सुनते होंगे कि बेकार है कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा बदलते हैं। दुनिया नहीं बोल रही लेकिन मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जोर से अपने आप को गले लगाइए, हक करिए जैसे कहते हैं। जैसे जब मैं ये बात बोलती हूँ तो हर बच्चा बहुत सरप्राइज्ड होता है, हम अपने आप को कैसे हक कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। हक करिए और बोलिए आई एम एनफ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है।
2: करेक्ट,
0: मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल रहती हैं, लगती हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब आपको क्लास स्कूल में क्यों होता है कि एक टाइम टेबल सेट किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने एनर्जी फील्ड का एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं इन दो चीजों को करके।
2: जी।
0: तीसरा पॉइंट आता है, हाइड्रेटेड रहिए। पानी आपको स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील कराता है, बहुत लगातार नहीं लेकिन एक पानी की बोतल अपने पास हमेशा भर के रखिए और दिन भर पढ़ते वक्त भी आप उसको जरूर पीजिए।
2: ठीक है।
0: खाने की बात करें तो प्लीज जंक फूड से इस वक्त बिल्कुल दूर रहिए। मैं मानती हूँ बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को, इस वक्त मन भी बहुत करता है कुछ चटपटा बना दो मम्मा, एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रूट्स खाइए, अच्छी चीजें खाइए जो आपको एक्टिव रहने में बहुत मदद करेंगे।
2: एग्जैक्टली।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल मुझे लगता है 90% बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज प्लीज समय पे सोना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम मैं कह रही हूँ 11:00 11:30 इसको खींच लीजिए, लेकिन टाइम पे सोना शुरू करिए। जब आप अपना टाइम थोड़ा सा सेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो अगर आपने 11 बजे सोना शुरू कर दिया तो आप अगर 6 से 6:30 बजे उठना शुरू कर देंगे वो आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करेगा।
2: मतलब एक फिक्स स्लीप साइकिल आपका होना चाहिए,
0: आपको टाइम शेड्यूल जो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो है ये बात बोलते हैं कि अरे 24 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला।
2: जी।
0: क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत देर से की है।
1: बिल्कुल सही बात है। मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे जो ज्यादातर श्रोता हैं रेडियो खीरी के सुनने वाले श्रोता, वो ज्यादातर ग्रामीण समुदाय से हैं, और जब हमारी टीम विजिट करने जाती है तो आमतौर पे माता पिता का एक सवाल होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के करी है का है। हम क्यों पढ़ाएं उन्हें? आपको पता है बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पे एनरोल हैं सरकारी स्कूल में, वहाँ की पढ़ाई की वजह से कि क्या वजह है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, और जो भेजना भी चाहते हैं तो वो उनका यही प्रश्न रहता है कि आधे समय में बच्चा वापस आ जाता है। उनको पढ़ाई की, ऐसे माता पिता के लिए एक ऐसा संदेश कुछ दीजिए कि उनके अंदर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की एक ललक हो, पढ़ाई के प्रति भी। वहाँ के जो माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके घर का माहौल नहीं बन पाता है, आखिर क्या वजह है?
0: भावना जी, क्योंकि आपको पता है आज भी हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हम पढ़ाई को सीधे सीधे नौकरी से ही जोड़ते हैं।
1: जी
2: बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं हम,
2: और वो भी सरकारी नौकरी से,
0: कहीं ना कहीं हम बहुत असफल हैं ये बताने में कि अगर आपका बच्चा आज

0: पढ़ लेता है तो वो अपने लिए एक बदलाव ला सकता है। जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो आगे चल के अपने बच्चों के उस माहौल को बदल सकता है। जैसे हमेशा एक बात होती है कि ये महिलाओं के लिए भी कहा जाता है, इतना पढ़ लिख करके घर संभाल रही हो, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला जिस तरह से अपने घर को संभाल रही होगी
1: या संभाल सकती है,
0: या जैसे संभाल सकती है, और एक ऐसी महिला जिसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, अच्छा सेहतमंद खाने के लिए किस तरह से क्या बनाना चाहिए, घर का माहौल कैसे रखना चाहिए, उसमें और जो पढ़ी लिखी है जिसको जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो बस सबसे पहले तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो वो अपने लिए एक ऐसा जीवन खोज सकता है या ऐसे एक जीवन को तैयार कर सकता है जिसमें उन्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि वो खाएगा क्या।
2: बिल्कुल
1: ठीक है। बहुत सारी चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि लेकिन एक बहुत अगर रैपिड राउंड में मैं जाऊं तो मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को डांटना चाहिए?
0: डांटना चाहिए लेकिन अपने शब्दों पे काबू रखना चाहिए।
1: ठीक है, बच्चों को पढ़ाई में हम कैसे लगाएं और क्या ऐसा कह दें कि वो तुरंत जुट जाएं?
0: सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये एक जो फोकस है वो आपको बच्चों को हमेशा बता करके रखना चाहिए। एक एनवायरमेंट, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बच्चों को आपको सेट करके देना ही पड़ेगा।
1: बच्चों को मोबाइल से कितना जल्दी दूर करें?
0: बहुत जल्दी।
2: कितने घंटे देखें मोबाइल?
0: अमूमन पूरे दिन भर में शायद 1 से 2 घंटा सफिशिएंट है, छोटे बच्चों की बात में।
2: माँ बाप कितने घंटे देखें?
0: ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो मोबाइल फोन के अलावा अपने आप को और दूसरे किन चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये तो देखिए एक ब्लेम गेम हो गया फिर।
1: Correct.
0: आपने देखा, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, और इस लड़ाई में हम कहीं भी कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे।
1: करेक्ट। टीचर्स को क्या ऐसे में करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए?
0: टीचर्स को अवेलेबल रहना चाहिए, उन्हें बच्चों के ऊपर ये विश्वास जताना चाहिए कि जो भी आपने किया है सब कुछ बहुत अच्छा होगा और ये सिर्फ एक एग्जाम है। और पेरेंट्स के साथ साथ जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब बच्चा एग्जाम देके आ जाए तो प्लीज मत पूछिए एग्जाम कैसा गया, दे आया, अच्छा ही गया
1: होगा, वो देखा
0: जो होगा वो देखा जाएगा।
1: ठीक है।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ,
9: जावला टायर
7: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, जावला टायर्स, कांट रोड,
11: अपोजिट
10: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz, और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा, और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की, और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती, और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जाँच करवाएं तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
6: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए 2 योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धनधान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले, इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों, पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।
1: तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है? श्रोताओं, खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, ये हम सभी जानते हैं। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, लेकिन सही तैयारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदें। फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें, और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गांव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है, और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों, धरती माँ हर पसीने की कीमत जरूर चुकाती है। जब खेत हरे भरे होते हैं तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष, और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी। और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: एक नए इतिहास के।
3: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा
4: और क्या। हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी, अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
3: अच्छा
4: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
3: अरे वाह,
4: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
3: शुक्र है डबल इंजन सरकार है।
2: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
5: नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने

0: पक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
4: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
5: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
9: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
10: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
9: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
11: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: समाज और जिंदगी से जुड़े उन मुद्दों की जो घर से जुड़े होते हैं। आज का विषय हमारा है लड़कियों की जिंदगी बचपन से शादी तक।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई लड़की 25 साल की होती है, घर परिवार और समाज की बातें शुरू हो जाती हैं। अब तो शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई है।
0: हाँ यार, ऐसा मैंने भी सुना है अक्सर आसपास में। धीरे धीरे ये बातें तानों में बदल जाती, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और लड़की भी सोच में पड़ जाती, क्या सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ शादी ही है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम समझेंगे कि एक लड़की की जिंदगी में बचपन, पढ़ाई, सपने, शादी और

0: शादी के बाद की जिम्मेदारियां किस तरह से बदल जाती हैं।
1: बचपन और सपनों की दुनिया। हर लड़की का बचपन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी भी बच्चे का। वो भी सपने देखती है, डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का, कुछ बड़ा करने का।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन कई बार समाज की सोच उसके सपनों को छोटा कर देती है। लड़कियों को अक्सर कहा जाता है, ज्यादा मत पढ़ो, आखिर शादी ही तो करनी है, घर का काम सीखो, यही काम आएगा।
1: लेकिन सच में ये तो कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने का हक है। अगर उसे सही मौका मिले तो वह अपने परिवार और समाज दोनों का नाम रोशन कर सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब हम बात करेंगे 25 साल और शादी का दबाव। महिला मंच में ही हम बात करते रहेंगे, बस श्रोताओ आप हमारे साथ बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। तो जैसे ही लड़की की एज 24 से 25 साल के आसपास होती है, घर घर में एक ही बात शुरू हो जाती है, अब इसके शादी कर दो। रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, सबकी नजरें लड़की की ओर और उनके परिवार पर होती हैं।
1: हाँ रीना, ये बात तो सही कह रही हो आप। कई बार तो ताने भी सुनने को मिलते हैं, अभी तक तो शादी हुई नहीं, लड़की घर में बैठी है। इन बातों से सिर्फ लड़की ही नहीं, उसके माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं।
0: लेकिन हमें यह समझना होगा कि शादी कोई मजबूरी नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा फैसला है, और यह फैसला लड़की की खुशी और उसकी इच्छा से होनी चाहिए। क्यों, सही कहा ना खुशी मैंने?
1: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद लड़की की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक घर छोड़कर उसे दूसरे घर में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, नया माहौल। कई बार उसे हर छोटे बड़े काम के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पूछ कर करना पड़ता है।
0: ये तो तुमने 100% सही बात कही है। ऐसे में लड़की को कई बार लगता है कि उसकी आजादी कम हो गई है, लेकिन अगर परिवार समझदार हो और लड़की को सम्मान दे तो शादी के बाद की जिंदगी भी खुशहाल और सुंदर हो जाती है। तो श्रोताओ, आप आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ यूं ही आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं लड़की की पहचान और आत्मनिर्भरता के बारे में। आज के समय में सबसे जरूरी है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो वह हर परिस्थिति में सामना कर सकती है।
1: एग्जैक्टली राइट रीना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शादी हो या ना हो, लड़की की पहचान सिर्फ किसी की बेटी, बहू या पत्नी होना नहीं है, उसकी अपनी भी एक पहचान है, उसके अपने सपने हैं। और समाज को ये समझना होगा कि लड़कियां बोझ नहीं बल्कि ताकत होती हैं।

0: अब हम जानने वाले हैं समाज के लिए संदेश। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियों को ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का मौका देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को सम्मान और बराबरी देंगे तो समाज भी मजबूत बनेगा।
1: तो दोस्तों, आज हमने साझा की एक लड़की की जिंदगी, बचपन से लेकर शादी और उसके बाद तक की कितने बदलावों से गुजरती हैं। जरूरत है कि हम लड़कियों को समझने, उनका साथ दें और उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा
0: लेते हैं और कल मिलेंगे हम सेम टाइम एंड सेम जगह।
1: तब तक के लिए साथियों, सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
0: नमस्कार श्रोताओं।

0: आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हेलो जी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और आज का जो ये सेशन आप सुनने वाले हैं, एक खास बातचीत, बेहद ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है ना, जब भी हम स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, स्पेशली उनके करियर को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। 12 के बाद स्पेशली बच्चे बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार 12 तो कर लिया लेकिन अब आगे क्या करें। स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज्यादा कन्फ्यूज रहते हैं बिकॉज उनको भी नहीं समझ में आता कि बच्चों के लिए क्या बेस्ट होगा और क्या नहीं। इन सभी पर बात करने के लिए मैंने सोचा अपने वीडियो भी कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लेडी को इनवाइट किया है अपने शो में। आज हमारे साथ कौन कहां से जुड़ी है, जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो आपको भी ना थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ओ माय गॉड, सच में इतनी दूर से आप लेकर आए हैं हमारे करियर को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि हम क्या चुने क्या ना चुने। यस ऑफकोर्स, ये हमने सोचा, आप एफएम मुरादाबाद सुन रहे हो तो मुरादाबाद पे कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आज इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है, आइए जरा बात करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
2: थैंक यू सो मच आरजे आनंद, मुझे इनवाइट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। बहुत खुश हूँ आपके साथ ये मंच शेयर कर पा रही हूँ टू डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और के साथ।
1: मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और बहुत कम मौका मिलता है हमें कि जब हम मतलब ऐसे लोगों से भी कनेक्ट होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को छू मंतर करते हैं और उन्हीं एक आप हैं।
2: बहुत अच्छा लग रहा है कनेक्ट करके एंड आज जो टॉक शो होने वाला है इसको आगे जाने के।
1: मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए हमारे मुरादाबादीज आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है, सो प्लीज टेल अस अपने बारे में थोड़ा सा क्विकली बता दें आप।
2: ओके, आई एम कृति मोहित वोरा, मैं करियर काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैंने स्टडीज की भी है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी से फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्स किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, NEPSE की तरफ से फॉर करियर एंड एजुकेशन काउंसलर एंड करेंटली मैं एक एकेडमिक पोजीशन होल्ड कर रही हूँ एक कंपनी में एंड आई डू टेक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेज आउट।
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, ब्यूटीफुल। एंड बट राइट नाउ वेयर आर यू, ये तो हमारे लिसनर्स को पता चलना चाहिए, आप किधर हैं अभी?
2: मैं अमची मुंबई से हूँ।
1: ओह माय गॉड, मुंबई से। अच्छा, तो मतलब वो उसे मुंबई में उसे बोलते हैं तो मैं कशिक आई।
2: यस यस,
1: हाँ, मुंबई की थोड़ी थोड़ी भाषा हमने भी, तो सोचो गाइस मुरादाबाद में सीधा मुंबई वाली फील आपको दे रहे हैं कृतिका मैम। सो मैम थैंक यू सो मच, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने शेयर किया। और मैम आपको पता है ना, जैसे ही 12th हो जाता है बच्चों का, पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बड़े टेंशन में चले जाते हैं। उनको ये लगता है पता नहीं यार 12th तो जैसे तैसे कर लिया बच्चे ने, अब आगे क्या कराएं, ये बड़ी कंफ्यूजन है स्पेशली हम भारतीयों में।
2: यस एग्जैक्टली, समझ सकती हूँ एक्चुअली ये कंफ्यूजन होना भी जरूरी है क्योंकि आजकल ऑप्शंस भी इतने सारे हैं। पहले तो स्टैंडर्ड ऑप्शंस थे, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो वो साइंस में जाएगा, एवरेज हो तो कॉमर्स जाएगा,
1: एब्सोल्युटली
2: नहीं हो तो ह्यूमैनिटीज में। आजकल की एरा में बहुत सारे ऑप्शन है, इंजीनियरिंग, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस,
1: करेक्ट।
2: तो अगर वो बच्चा करियर काउंसलिंग लेता है तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मिलता है और एक गाइडेंस मिलती है कि आगे क्या कर सकता है, रादर देन सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने से कंफ्यूजन बढ़ता है।
1: एब्सोल्युटली कृति मैम, आपने बहुत अच्छे से इसको बताया एंड आई थिंक मुझे भी यही चीज लगती है। और आजकल इतने सारे ऑप्शन आने के बाद भी लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं। सो वेल, इस विषय में हम डेफिनेटली आपसे टॉक करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा, व्हाट एग्जैक्टली इज करियर काउंसलिंग, क्या है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को कि आखिर करियर काउंसलिंग है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस विषय में।
2: बेसिकली ये गाइडेड प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, बच्चे को समझते हैं, उसका इंटरेस्ट, एबिलिटीज, उसकी पर्सनालिटी, स्किल्स क्या क्या है और उस हिसाब से उसको एक राइट दिशा दिखाते हैं जहाँ पे वो अपना करियर चूज कर सकता है।
1: करेक्ट, ओके। वही ना, एक्चुअली जिस फॉर्मेट पे हम बात कर रहे हैं, जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, ये आज के समय में ना बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है। हालांकि डिजिटल टाइम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारी चीजें अवेलेबल है, बट अंदर की जो चीजें होती है ना, करेक्ट, वो चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही होती है कहीं पर।
2: वो बात है क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है बट वो उनके लिए कितना सूटेबल है, एक्यूरेट है, वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, वो कंफ्यूजन अभी भी होता है.
1: एग्जैक्टली मैम, एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में अक्सर आता रहता है कि व्हाई इज करियर काउंसलिंग बिकम सो इम्पोर्टेंट टुडे, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के समय में करियर काउंसलिंग इतनी जरूरी क्यों हो गई है, तो ये जानना तो डेफिनेटली बनता है, वो भी जब आप मेरे साथ हैं तो.
2: यस आरजे आनंद, मैं समझती हूँ. जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहले के जमाने में मैक्सिमम क्या ऑप्शंस आते थे, हाथ में गिनने लायक उतने ही ऑप्शंस.
1: करेक्ट.
2: इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टीचर या कोई सरकारी नौकरी कर लो.
1: राइट.
2: से ज्यादा तो कोई ऑप्शंस किसी के मन में आते ही नहीं थे.
1: बट
2: अभी के कॉम्बिनेशन एंड जो चूज कर सकते हो, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक एग्जाम्पल मैं बोलूँ, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस विद बायोलॉजी. तो अगर बच्चे को बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है बट टेक्नोलॉजी भी उसका समथिंग पैशनेट है वो, तो ये दो कंबाइन करके वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकता है.
1: बिल्कुल.
2: तो अभी ऐसे मेजर माइनर ऑप्शन बहुत सारे हैं जिसमें बच्चा समझ नहीं पाता है, ट्रेंड के हिसाब से कंफ्यूज हो जाता है.
1: करेक्ट.
2: एंड फिर लेटर रिग्रेट करता है.
1: तो वेयर
2: करियर गाइडेंस विल हेल्प हिम विद द प्रॉपर गाइडेंस देयर.
1: ऑल राइट, ओके. सो आई होप लिसनर्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनको इस सवाल का जवाब डेफिनेटली मिल गया, इस क्वेश्चन का आंसर. अच्छा मैम, जो स्टूडेंट है वो करियर चुनते समय सबसे बड़ी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको लगता है कि अफकोर्स करते ही करते हैं, और क्या गलतियां हैं जो हो ही जाती हैं अक्सर स्टूडेंट से?
2: पांच मेजर गलतियां मैं बताना चाहूंगी एक्चुअली, जो मेजरली बच्चे करते हैं. एक तो जो दोस्तों ने चूज किया है वो करियर ही हमारा करियर होता है, डिसाइड कर लेते हैं.
1: करेक्ट करेक्ट.
2: दूसरा होता है पापा ने बोला मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए, मम्मी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, सो लेट्स डू इट.
1: मैं
2: बनना चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ अपने आप को हम पूछते ही नहीं है.
1: करेक्ट. हमारी क्या खुद की इच्छाएं हैं?
2: यस. फिर दूसरा रहता है द ग्लैमर साइड या पैसा जिसमें ज्यादा है, मैं वो बनना चाहता हूँ. बट तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज है नहीं है, पॉसिबिलिटी है तुम्हारे जगह में जॉब मिल पाएगी, पॉसिबिलिटी है कि नहीं उसका करियर कितना अच्छा जाएगा वो डोमेन में, ये सब नहीं ध्यान रखते हैं. एंड फोर्थ, जैसे मैं बता रही थी, सबका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ हमेशा देखना चाहिए, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू वर्क रियली वेल. एंड देन चूजिंग द करियर बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च इज समथिंग दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियर होना चाहते हो एंड मुरादाबाद में ही रहना चाहते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो उधर तो कोई माइंड ही नहीं है पेट्रोलियम के लिए. जैसे नांतला आप मुरादाबाद छोड़ के जाना चाहते हो, कहीं अब्रॉड वर्क करना चाहते हो या कोई माइनिंग में वर्क करना चाहते हो, देन ओनली उसका कोई फायदा होगा आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ने का भी.
1: ओके.
2: तो दीज आर द मेजर फाइव थिंग्स मैं आपको बोल सकती हूँ. एक फ्रेंड्स की तरफ से स्ट्रीम चूज मत कीजिएगा पेरेंटल प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर से. दूसरा, ट्रेंड या पैसा देख के अपनी इंटरेस्ट अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर करके और प्रॉपर एडमिशन ना लेके रिसर्च करने के अलावा.
1: वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. एंड आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको भी अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही बारीकी से आप चीजों को एक्सप्लेन कर रही हैं. थैंक यू सो मच. एंड एक क्वेश्चन जो मेरे नहीं हर किसी के जहन में होता है कि जो करियर काउंसलिंग है वो किस उम्र में या किस स्टेज में एक्चुअली शुरू होनी चाहिए, आपको मैम क्या लगता है?
2: जो आइडियल एज बोलते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, वो ग्रेड 8 to 10 होता है.
1: ऑलराइट.
2: ऐसा नहीं है अगर अभी मेरा कोई लिसनर अभी कि 11th ग्रेड का है, इट्स नॉट द राइट टाइम, उसका टाइम चला गया है, नहीं. बट आइडियल जो बोलते हैं वो क्लास 8 to 10th ग्रेडर्स के लिए होता है. बट ये यू कैन इवन टेक करियर काउंसलिंग एट दी ग्रेड 11 और व्हेन यू आर वर्किंग, या आप कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन ले चुके हो बट फिर कंफ्यूज्ड हो, तो देयर इज नो इश्यूज, नहीं ले सकते. बट आइडियल इज ग्रेड 8 to 9.
1: 100%. बहुत ही बढ़िया कॉटन मैम. एक्चुअली मुझे भी लगता है मैम, जो आपने बहुत अच्छे से जो चीजें डिफाइन करी, जो आपने इन किया, ये बहुत अच्छा एक तरीका और लोगों को समझ में भी आ रहा है. आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. आज करियर काउंसलिंग पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैम के साथ, और बहुत जरूरी है. अभी जिन बच्चों ने 12th किया है, हमने सोचा उनके लिए जो कन्फ्यूजन वाला ये सेशन हो जाता है ना 12th के बाद, की कहाँ जाए, कौन सी स्ट्रीम ले, किस में जाए, किस में करियर बनाए, बहुत सारी यू नो स्पेशली करियर को लेकर ही मैम, स्टडी को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
2: आई अंडरस्टैंड, ये कंफ्यूजन जो वो एज में रहता है वो बहुत ज्यादा ही रहता है, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग मच क्लैरिटी, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या, आप नहीं समझ पाते हो, बहुत कंफ्यूजन रहता है।
1: करेक्ट। अच्छा कृतिका मैम, मैं एक क्वेश्चन जो मुझे आई एक्चुअली लग रहा है कि आपसे पूछना चाहिए, जो करियर काउंसलिंग है, क्या सच में वो जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा चीजों को लेके, जो सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हैं, क्या उन्हीं के लिए है या फिर सबके लिए है करियर काउंसलिंग, क्या लगता है आपको मैम?
2: बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कोई बच्चा जो वीक है या टॉपर है उनके लिए ही होता है। ये करियर काउंसलिंग हर एक बच्चे के लिए है जिसको यू नो राइट डायरेक्शन चाहिए, अपनी पर्पस एबिलिटी समझ के एक करियर चूज करना है, सो दैट यू नो हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट दोनों मिल पाए। करियर इज चॉइस ऑफ लाइफ बेसिकली, जिस हिसाब से मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज नॉट यू नो सिर्फ वीक बच्चा अपना चॉइस बनाता है कि यू नो टॉपर बनाता है, सबको अपनी लाइफ चॉइस करना होता है।
1: एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। कृतिका मैम, दिस इज माई पर्सनल क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क यू, दिस इज वेरी वेरी यू नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई डोंट नो, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि मैं पहली बार किसी करियर काउंसलर से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने स्टेशन के थ्रू, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई एम हियर विद यू, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने शेयर किया हमारे स्टेशन पे हमारे लिसनर्स के लिए, सो थैंक यू वेरी मच बाय द वे।
2: आई एम टोटली हैप्पी टू बी हियर एंड डिस्कस, बिकॉज ये मेरा बड़ा पैशन है।

0: guide young adults, you know.
1: So, you know, thank you very much, ma'am. My pleasure. Ma'am, this is my question. कि क्या career counseling session basically जो होती है वो किस चीज के लिए, हालांकि इसमें career option जब ये दे दिया गया है career counseling, so I know very well, but मुझे अंदर की चीजें जाननी है, इसमें किस चीज के बारे में बात होती है, कैसे जो counselors होते हैं, जो experts होते हैं, वो क्या चीज करते हैं. मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जानना है कि basically career counseling session में होता क्या है.
0: Okay. तो मैं आपको बता दूंगी, अगेन ये भी एक 5 पॉइंट डिस्कस कर लूंगी. पहले हम स्टूडेंट को समझते हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके गोल्स क्या है,
1: उसकी
0: हॉबीज क्या है. देन सेकेंडली उसका एकेडमिक बैकग्राउंड.
1: ओके,
0: पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, नहीं है, एवरेज है, ट्यूशन क्लासेस का जाना आना बंद है, नहीं, ऑल दिस एकेडमिकली वी अंडरस्टैंड द स्टूडेंट. नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं उसके साथ करियर ऑप्शंस.
1: ऑलराइट,
0: एंड देन वी आल्सो कंडक्ट अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें यू नो थ्रू दैट रिपोर्ट मैं समझ पाती हूँ उनका इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, वीकनेसेस सब जान पाते हैं. एंड देन लास्टली वी क्रिएट द करियर रोड मैप.
1: ऑल राइट, अभी मेरा क्वेश्चन भी यही होने वाला था कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोमेट्रिक्स, इसी पर हम लोग अभी बात करने वाले थे.
0: यस यस, तो साइकोमेट्रिक बेसिकली एक साइंटिफिक टूल है जिससे हम बच्चे को समझ पाते हैं.
1: ऑल राइट,
0: जैसे ईसीजी होता है जिससे हार्ट का पता पड़ता है, विद द सेम वे एक करियर काउंसलर एक टूल यूज करता है टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड स्किल्स. तो ये बहुत डेटा बेस्ड है एंड इट इज रिसर्च बैक, साइंटिफिकली बैक टूल है, विच इज नॉट रैंडम गेस्ट वर्क के हिसाब से. नहीं, मैं बताती हूँ कि ये चूज कर लो, ये कर सकते हो, नहीं, इट्स ऑल साइंटिफिकली बैक.
1: ऑल राइट मैम, जेन्युइनली आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट. अगला मेरा क्वेश्चन, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये पब्लिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डेली पूछते रहते हैं हमारे लिसनर्स, रेडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टिविटी बनती रहती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स सबसे ज्यादा. वैसे मैम, अगर मैं बात करूँ करियर चूज करने में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है, कितना इंपॉर्टेंट होता है उनका रोल, स्पेशली पेरेंट्स का?
0: पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के भविष्य प्लान करने के लिए. रादर दैन एक पेरेंट को हमेशा अपनी ड्रीम्स इम्पोज नहीं करनी चाहिए, लाइक मैं चाहती हूँ आप इंजीनियर बनो, कि मैं चाहती हूँ आप डॉक्टर बनो, ये नहीं होता है. इनफैक्ट बच्चे का इंटरेस्ट समझना, उसकी एबिलिटी समझ के उसको सपोर्ट करना, एनकरेज करना, ओपन कॉन्वर्सेशन करना बच्चे के साथ, ओपनली डिस्कस करना कि ये करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या सोचा गया था, कैसे आपने ये मन में आया, वेरी ओपन डिस्कशन विद द स्टूडेंट, सो दैट यू नो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा. इट इज फ्रॉम क्लैरिटी टू कंफ्यूजन टू क्लैरिटी बेसिकली.
1: या That's very nice, ma'am. That's very nice. Kritika ma'am, Kirti ma'am, मेरा जो question एक और है कि student भविष्य में जो उनके career को लेके वो खुद को मतलब कैसे prepare करें, कैसे खुद को तैयार करें ताकि जो भी challenges है, जो भी competition का time है उसमें वो खुद को आगे लेकर जा सकें, खुद को confident feel कराएं. होते हैं ना student करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कभी कभी वो unconfident हो जाते हैं, unconscious हो जाते हैं, जिसकी वजह से आधी चीजें उनकी automatically पीछे हो जाती हैं.
0: मैं कुछ 4 पॉइंटर्स बताऊंगी जो नॉर्मली एक बच्चा कर सकता है अपना एकेडमिक प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए बेसिकली. फर्स्ट है जो 21st सेंचुरी स्किल जो बिल्ड करने को बोलते हैं, तो सारी 4 C's इन एजुकेशन. 1 इज क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी.
1: ऑलराइट,
0: अगर ये 4 स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो अपने में बहुत अच्छा रहेगा. नेक्स्ट इज जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जाओ, समर कैंप, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जितना भी करेक्ट कर सकते हो विद इन योर लोकेलिटी या बाहर कॉलेजेस में, दैट इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रेकमेंड.
1: दैट्स वेरी नाइस.
0: थर्ड थिंग इज टू रीड बुक्स, टू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ योरसेल्फ, कनेक्ट विद द मेंटर.
1: एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
0: अगर आप कोई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर योर ग्रेजुएशन, तो उधर के पास स्टूडेंट, करेंट स्टूडेंट से समझो कैसा है एनवायरमेंट, ऐसा ही आप कॉलेज जा रहे हो, क्या मेंटर्स सिखाते हैं, तो कनेक्ट विद दोस लाइक माइंडेड पीपल. नेक्स्ट इज यू नो टू बी अपडेटेड विद द एंड टेक्नोलॉजी, एंड लास्टली विच इज क्वाइट एसेंशियल, करियर के लिए भी, पर्सनली भी, कॉन्फिडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट।
1: एब्सोल्युटली 100% सही बोला आपने मैम। आजकल ना मोबाइल का बहुत ज्यादा आपको भी पता है क्रेज बढ़ गया है। आजकल के यंगस्टर, जेंजी, सभी लोग मोबाइल में, पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, नो डाउट। तो ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया, इसमें लोग बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं, आजकल चैट जीपीटी, AI सब कुछ आ गया है। तो लोगों को लगता है यहाँ से भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, जबकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जब आप किसी करियर काउंसलर के पास जाते हो तो जो डायरेक्शन वहां से मिलती है वो आपको चैट जीपीटी या AI से नहीं मिल सकती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
0: उसमें इंफॉर्मेशन बहुत मिलता है, बट आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो नहीं समझ में आता है।
1: करेक्ट।
0: इट्स वेरी वास्ट, एक फूल की तरह मैं बोल सकती हूँ या नदी की तरह इंफॉर्मेशन रहता है, बट उसको फिल्टर करके समझना कि आपके लिए क्या अप्लाई कर सकती हो, क्या नहीं कर सकती। तो बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ लेटर ऑन।
1: एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू सो मच, इतना टाइम आपने शेयर किया हमारे लिसनर्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रिविलेज टाइम, एंड आई एम सो हैप्पी आपने इतना टाइम निकाला और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपको मैम आई होप अच्छा लगा हो हमारे साथ, हमारे मुरादाबादी से बातचीत करके।
0: यस यस, बहुत अच्छा लगा, एंड आई वुड एंड विद अ स्मॉल कोट बेसिकली।
1: प्लीज मैम,
0: चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ।
1: ऑलराइट मैम, एंड बाय द वे एक और एक लास्ट मैसेज, एक छोटा सा आपकी तरफ से कोई एक संदेश, व्हाट फाइनल वुड यू लाइक टू गिव स्टूडेंट एंड पेरेंट्स लिसनिंग टुडे?
0: पेरेंट्स के लिए सपोर्ट योर चिल्ड्रेन, समझो उनको जितना भी हो सके और भरोसा रखो उनकी जर्नी में भी, दैट इज क्वाइट एसेंशियल। एंड बच्चों के लिए बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन कैन बिकम योर स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट आई वांट टू ऐड ऑन टू।
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू, आई कांट बिलीव दिस, कितनी जल्दी से हमारा टाइम हो गया और हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी कितनी सी बात हुई, अभी तो और करनी थी हमें आपसे बातचीत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनबिलीवेबल 20 मिनट होने को आ गए, बट पता ही नहीं चला। मेरे इंटरव्यूज तो बहुत सारी किए लेकिन ये बड़ा डिफरेंट था।
0: थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट।
1: सीरियसली,
0: आई विश ऑल माय लिसनर्स अ वेरी ग्रेट डे अहेड,
1: एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अखिल जी जिन्होंने आपसे हमें कोऑर्डिनेट कराया। आई एम सुपर ग्लैड, बिकॉज बहुत कम चीजें ऐसी होती है जिनके साथ आप जब बात करते हो तो एक पॉजिटिविटी भी आती है और कुछ सीखने को भी मिलता है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स को भी, बहुत सारे पेरेंट्स को भी नॉलेज मिलेगा, इनफैक्ट मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला है। सो थैंक यू मैम वंस अगेन। सो मैम, जाते जाते हमारे मुरादाबादीज को आप कोई संदेश देना चाहें और साथ में कुछ कहना चाहें जो आपको लगता है कि छूट गया है, नहीं ये चीज भी मुझे बोलनी चाहिए। आनंद,
0: तो करियर एक ऐसा है इट इज ऑल योर लाइफ चॉइस, तो एक अच्छा डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, योर पैशन, एंड दैट विल वर्क यू एज अ स्ट्रेंथ। एंड पेरेंट्स के लिए जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, समझिए और उनकी जर्नी में साथ दीजिए। बहुत लंबा जाएंगे वो। एंड एट एनी टाइम किसी को भी करियर में कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, डिस्कस करना है, यू कैन रीच आउट टू मी, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मैं एक मैसेज या एक कॉल के थ्रू हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, कभी भी आपको क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन है करियर में चूज करने के लिए, यू कैन रीच आउट टू मी, कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हो। माई नंबर इज 9137406647।
1: थैंक यू सो मच मैम, बाय बाय मैम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू मैम।
0: ग्रेट, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: अपने दिल में बसा लो, अपनी बाहों में भर लो, आज जी भर के हमसे मोहब्बत कर लो।

0: नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना पलक मुच्छल की बड़ी खूबसूरत सी मधुर सी आवाज में। और दोस्तों, दोपहर का समय है, 3:11, खुशी आपके साथ है और 3:11 खुशी आपके साथ है। और इस बेहतरीन शो में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और कहते हैं ना साथियों कि जिंदगी में खुश रहने के लिए बड़ी वजह नहीं, बस छोटे छोटे पल और अपने लोगों का साथ काफी होता है। तो इस पल को और भी खूबसूरत बनाइए अपनों के साथ। अपना फेवरेट गाना सुनिएगा। अभी हम बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनके हाल चाल है, उन्हीं से जानेंगे। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: हनीफ बात कर रहे हैं मैम, अमरोहा से।
0: अमरोहा से बात कर रहे हैं, बताइए सर कैसे हैं आप?
1: मैम हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए कैसे हाल चाल है।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, बताइएगा आप अमरोहा में रहते हैं, क्या करते हैं सर?
1: मैम बाइक मिस्त्री हैं।
0: अच्छा, आप गाड़ियों को ठीक करते हैं, राइट?
1: जी मैम। हाँ
0: जी, बहुत अच्छा काम करते हैं सर।
1: जी मैम, आपसे मैम कई बार कोशिश की है आपसे बात करने की, आज मैम से तो बहुत बार हो गई बात।
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी मैम, आपसे आज बात पहली बार हो रही है।
0: तो देखिए, आपने कोशिश की और आपका कॉल भी शामिल हो गया है सर, बताइएगा आज क्या सुनना।

0: आते हैं आप।
1: और मैम हम तो बहुत दिनों से रेडियो सुनते थे और अब भी सुन रहे हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, ये रेडियो से मोहब्बत जो आपकी है ऐसे ही बरकरार रखिए, कंटिन्यू रखिएगा, बताइएगा आज आप।
1: बात क्या है मैम, आज हम जो मुरादाबाद एफएम जो सुन रहे हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: आज ये आनंद सर की वजह है जो आज हम एफएम सुन रहे हैं
0: अच्छा ऐसा क्यों?
1: मैम। उन्होंने बहुत कोशिश की है मुरादाबाद एफएम चालू करते जी।
0: अच्छा, तो बताएगा सर आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप, बताएगा हमें।
1: नई फिल्म आ रही है उसका गाना है वरुण धवन का, जो चुनरी चुनरी।
0: अच्छा, ओहो, वैसे तो घर से बाहर जब जाते हैं तो चुनरी तो ओढ़ के जाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है।
1: जी मैम आज तो बहुत गर्मी है, हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं
0: अच्छा, बादल भी हो रहे हैं।
1: जी, गर्मी
0: ओके,
1: उमस है, उमस ज्यादा
0: हाँ
1: है
0: उमस ज्यादा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।
1: जी। मैम आपकी तबीयत ठीक है, जुकाम उकाम?
0: हाँ जी हाँ जी, अभी पहले से तो बेटर है सर।
1: क्योंकि मैम 8 या 10 दिन हो गए आपको।
0: हाँ जी, आप रेगुलर हमें सुनते हैं इसका मतलब तो यही है।
1: हम भी
0: शुक्रिया।
1: दुआ करते हैं कि हमारे जो आरजे तबीयत खराब है उनकी ठीक हो जाए।
0: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे हालचाल मालूम किए। और
1: और वैसे भी आपको इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं रील आपकी।
0: अच्छा, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं हमें?
1: जी मैम
0: ओके, मुझे मालूम नहीं था।
1: आप इंस्टाग्राम पर कोई भी रियल स्टेटस डालती है तो मैम देखते हैं हम।
0: अच्छा, शुक्रिया सर। तो चलिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत आपकी पसंद का, और थोड़ा सा आप भी डांस कर लीजिएगा
1: जी
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का, एंड बहुत ही प्यारा सा, अभी न्यू लेटेस्ट ट्रैक है, एंड बहुत ही प्यारा सा गाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं, एंड लौट कर आते हैं फिर उसके बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक आप भी कॉल लगाओ, नंबर है 9837896896।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी जवानी है तो इश्क होना है। एंड इस खूबसूरत से गीत को गाया था, बहुत सारे सिंगर्स ने इसको गाया है। एंड एपी सिंह एंड जोनिता गांधी, आशीष कौर, सुधीर यदुवंशी, साथ में अनुराधा श्रीराम की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक आपने एंजॉय किया। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनकी फरमाइश है, उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार दीदी
0: जी, आपको भी नमस्कार सर। अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नहर मंटोला, जिला मधुबनी, बिहार से।
0: जी सर बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, आप लोग का दुआ है, ठीक है, आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, हम भी अच्छे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आप बताइएगा कहाँ पर हैं अभी आप?
1: अभी तो हम गांव में आए हुए हैं।
0: अच्छा, अभी गांव में आए हुए हैं, तो कैसा मौसम है आपके गांव का?
1: बहुत गर्म, बहुत
0: गर्मी, बहुत ज्यादा है।
1: जी
0: जी जी, तो बताइएगा सर, आज आपने हमें कॉल किया है, क्या आपकी फरमाइश है?
1: आज सरस्वती चंद्र का गाना सुना दीजिए, फूल तुझे भेजा है खत में।
0: फूल नहीं मेरा दिल है, ये वाला ट्रैक ना, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। सर सुनवाते हैं आपके पसंद का प्यारा सा गीत, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गीत सर की पसंद का एंड लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज में। और लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी प्रयास कीजिए कि आपका कॉल भी क्विकली लग जाए। उसके लिए आपको कॉल लगाने के लिए नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। अपनी दोपहर को खूबसूरत बनाइए हमारे साथ।

0: सोना जी तो
1: क्या
0: जी हाँ
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका जल्दी कीजिए
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद कॉल 9412211111
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून TNC अप्लाई
5: जब सांसें अटकने लगे जब खांसी थमे ही ना तब याद रखिए एक ही नाम एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी अस्थमा निमोनिया खांसी में खून सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार तो सुकून राहत और भरोसा सब एक ही जगह एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सांसें सही जिंदगी सही।
6: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है नहीं
6: यार कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद
5: कॉल 7500153841।
8: बसंती इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो चल रहा है हेलो फरमाइश। दोस्तों, अगर आप इस वक्त सफर में हैं, काम कर रहे हैं या बस अपने फेवरेट सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आज का ये पल सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, अगर आप कोई खास गाना सुनना चाहते हैं, किसी स्पेशल पर्सन को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई स्पेशल ट्रैक, तो बिना किसी देरी के फोन उठाइए और हमें कॉल लगाइए। नंबर है 9837896896। अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना लता मंगेशकर जी, साथ में मुकेश जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन कनेक्ट हुई है हमारे साथ। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम बाजू है, मैं मुरादाबाद गोविंद नगर से बोल रही हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, लेटी है, आप बताइए।
0: अरे वाह, अच्छी बात है, आराम कर रहे हैं, आराम का वक्त भी है। मैं तो आपसे बात ही कर रही हूँ, आप बताइएगा। हेलो फरमाइश में कॉल लगा है आपका, कैसा लग रहा है, नींद उड़ गई है या नहीं?
1: बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, इतने टाइम बाद मेरी कॉल लगी है।
0: हाँ,
1: मैंने कॉल लगाई थी, दो बार तो नहीं लगी, तीसरी बार में मेरी कॉल लगी। और सबसे ज्यादा जरूरी थी, मैं यही चाहती थी कि मेरी आपसे बात हो।
0: ओह माय गॉड, रियली? देखिए, जब हम कोई चीज पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, तो ऊपर वाले मिला ही देते हैं। और आपकी आपकी मेहनत भी कामयाब हो गई है, तो बताइएगा आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, ये बताइए।
1: मेरी फैमिली में मेरी पापा तो नहीं है, मम्मी है तो बीमार रहती है।
0: अच्छा, तो अभी ठीक है?
1: नहीं, हाँ, बस सब ठीक है।
0: ओके, तो आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी मतलब पढ़ रही हूँ।
0: अच्छा, स्टडी कर रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हैं आप?
1: मतलब अभी मेरा टाइम जो है ना, फर्स्ट ईयर।
0: अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, चलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी आपके ड्रीम्स हैं सब आपके पूरे हो जाएंगे, बस ऐसे ही मेहनत करती रहिए आप।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम। बताइएगा क्या सुनना चाहते हो आज आप? ओके, नेहा जी की आवाज में सैड सॉन्ग, ठीक है, हम प्ले करेंगे। एंड थैंक यू सो मच डियर कॉल करने के लिए, ख्याल रखिए अपना और अपनी मम्मा का भी, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक एंड बहुत प्यारा सा है। तो मैंने सोचा कि आज मैंने भी लॉन्ग टाइम हो गया, काफ़ी समय हो गया नहीं सुना है, तो मैंने कहा चलो सुन लेते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनवा देते हैं। जुबिन नौटियाल साथ में नेहा कक्कड़ की बड़ी प्यारी सी आवाज़ में, प्यारा सा ट्रैक। मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप मुझे कॉल लगाओ, नंबर है 9837896896।
2: Fortune.

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना नेहा कक्कड़ साथ में जुबिन नौटियाल जी की बहुत खूबसूरत सी आवाज़। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी क्या है फरमाइश। हेलो फरमाइश
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: जी मैम, मेरा नाम पिंटू है, मैं नैनीताल से बात करता हूँ, आपका रेगुलर श्रोता।
0: जी जी बताइए पिंटू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं तो ठीक हूँ मैम, प्रभु की दया। आप बताएं, आप कैसे हैं, आपके स्टाफ में, घर परिवार में?
0: हाँ जी, ऑल गुड, सब बढ़िया है। आप बताइएगा क्या कर रहे हैं इस वक्त आप?
1: मैम अभी चाय पी रहा हूँ और आपका फोन सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, आपका चाय पीने का यही टाइम होता है क्या, सेम टाइम? एक्चुअली जब भी आप कॉल करते हैं तो मैं आपसे मालूम करती हूँ, यही कहते हैं कि चाय पी रहे मैम।
1: हाँ, किसी टाइम होता है चाय पीने मैम, किसी किसी की आदत होती है ना।
0: हाँ अच्छा, आप पूरे दिन में कितनी बार चाय पीते हैं?
1: मैम दो बार बस।
0: अच्छा दो बार, एक बार सुबह, एक बार अभी?
1: एक बार अभी।
0: अच्छा ओके, तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप
1: मैम? वो गाना इस तरीके से है,

0: मैम।
1: ओके, चलिए ये गाना सुनवाते हैं आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए,
0: थैंक यू वेरी मच मैम।
1: मोस्ट वेलकम। आप ये ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप प्रयास कीजिएगा कि आपका कॉल भी क्विकली लग जाए। उसके लिए आपको नंबर मैं आप बताती हूँ, 98-378-96-896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए।

हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और साथियों, वक्त की अगर बात करें तो उस समय हुआ है 3:40 और हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, हेलो फरमाइश। लगता है कि ईश्वर की साइड नेटवर्क इशू है। वो कह भी रहे थे कि हमारी साइड बारिश का वेदर है। और ये कॉल हमें आया था, आई रिमेम्बर, रुद्रपुर से। और वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ का मैम जो मौसम है बहुत सुहाना है, बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने ही वाली है। तो मुझे लगता है कि नेटवर्क इशू होगा, इसीलिए सर की आवाज़ हम तक नहीं मिल पाई है। बट वो हमें सुन पा रहे हैं, तो हम आपका गाना प्ले करते हैं। यहाँ पर सर ने बहुत प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, तो चलिए सुनते हैं श्रोताओं इस प्यारे से गीत को। मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए। नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने इस प्यारे से पल को और खूबसूरत बनाते रहिए।

0: के पर। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और साथियों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी एक फूल दो माली से, जो 1969 में आई थी। एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था आशा भोसले, साथ में मोहम्मद रफी साहब जी ने। और अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि उनको और इंतजार कराएं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा। जी क्या नाम बताया आपने सर?
1: मेरा नाम सुमन मोहरी।
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं सर आप?
1: मैं रबर का खेती करता हूँ, जो टायर वगैरह बनते हैं वो रबर हम लोग इधर खेती करते हैं और बस ऐसे दिन गुजारा करते हैं, रेडियो सुनते हैं।
0: जी जी जी जी, कहाँ पर रहते हैं आप सर, कहाँ से बात कर रहे हैं अभी?
1: हाँ त्रिपुरा, मतलब
0: त्रिपुरा में।
1: ओके
0: ओके जी जी जी, बताएगा सर, इतनी दूर से आपने कॉल किया है, कैसा मौसम है वहाँ का? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत अच्छा किया सर। जी, जब हम पूरी मन से एंड हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि आज तो हमें कॉल लगाना ही है, तो कॉल हमारा शामिल भी हो जाता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी आप बताइएगा सर, आज आपने इतनी दूर से कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैं सुनना चाहता हूँ कलाकार फिल्म का गाना है, गाने के बोले नीले नीले अंबर पर, किशोर जी का गया हुआ, और मैं कुछ दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
0: हाँ जी,
1: मैं सुनना चाहता हूँ। सिंगर से राकेश जी है और मोटे से भगवान सिंह।
0: हाँ जी,
1: सारे लिसनर भी डेडिकेट रहेगा और साथ में आप भी सुनेंगे हमारे साथ।
0: जी सर बिल्कुल सुनेंगे, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। जी तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, बहुत ही प्यारा गाना है। और आप सब इस गाने को एंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिए कि आपका कॉल भी लग जाए। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837 8968 9689।

0: एवरीवन, आप तो खो गए थे ना इस गाने में, क्योंकि गाना बहुत ही खूबसूरत था। और कुछ ऐसे होते हैं ना जो दिल के बेहद करीब होते हैं, लाइक सुनते हैं तो बड़ा सुकून मिल जाता है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो जी सर, क्या नाम है आपको बताइएगा। जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप।
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं। और बातचीत जो हो रही है आपकी हमारी,
0: हाँ जी,
1: तो देखिए काशीपुर से आ गए और रामनगर से पीछे शादी में जा रहे थे, तो फोन लगा रहे थे, फोन भी लग गया, आपसे बात हो गई तो अच्छा लग गया।
0: अरे वाह, क्या बात है, शादियों में जा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, शादियों में लुफ्त उठाइए। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं सर आप।
1: सलमा पे दिल आ गया गाने के बोल रहेंगे, फूल में ये जो पर तेरा पता मालूम नहीं, ये गाने के बोल रहे।
0: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत आपको, शुक्रिया कॉल करने के लिए सर।
1: धन्यवाद मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, आप भी अपना ख्याल रखिए और अच्छे से सफर कीजिए, सफर आपका शुभ हो, हम तो यही कामना करते हैं, अच्छे से जाइएगा। दोस्तों इस गर्मी में ना शादियों में एंजॉय तो करो, लेकिन हाँ अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, ठीक है। और ये खूबसूरत से गाना सुनते जाओ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: स्किन एलर्जी, मस से, नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।
6: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संदीप सागर नाम है मैम।
0: संदीप सागर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: ग्राम सेल जिला मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: मैम फरमाइश है हमारे बच्चे की गाने की।
0: हाँ बताइएगा।
1: छोटा सा है परिवार वाला गाना जो आता है आज के।
0: क्या कह रहे हैं आप सर, दोबारा बताइए। हेलो, ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवा दीजिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये सुनते हैं प्यारा सा गाना सर की पसंद का और लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, रेडियो किसी को बिल्कुल भी मत घुमाइए और हमें फ़ोन लगाइए, नंबर है 9837898986। रेडियो बजाते रहिए, ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए।

0: हाई एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट शो एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और शो का नाम है हेलो फरमाइश। मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट आरजे खुशी। दोस्तों, अभी आपने दोस्ती मूवी का बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना, दोस्त मूवी का, जो 1989 में आई थी। अमित कुमार, आशा भोसले और साथ में जय श्री राम, शिवराम जी की खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक आपने इंजॉय किया। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: बहुत बढ़िया हाल है साहब, बस तबीयत खराब चल रही है।
0: हाँ जी, क्या हुआ आपको बताइएगा।
1: मुझे मेरे गले में तकलीफ, जुकाम और बुखार, ये तीन चीजें एक साथ चल रही
0: है। ओके, सेम टू यू सर, मेरे साथ भी यही हो रहा है।
1: जी जी, और आपको भी चल रही है? आपको?
0: हाँ जी, मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रही है।
1: आप एक सिरप पी लीजिए, शरबत से खांसी।
0: अच्छा, ओके। तो ये
1: इस्तेमाल करें
0: जी,
1: मैं कर रहा हूँ, फायदा है इससे कुछ।
0: तो अभी आपको राहत है?
1: जी जी, मुझे कुछ फायदा है, वरना आवाज भी नहीं निकल रही थी मेरी तो।
0: अच्छा ठीक है सर, हम भी लेते हैं।
1: बहुत ही अच्छा है ये।
0: ठीक है सर, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है बताइएगा सर।
1: इसको सोते वक्त गुनगुने पानी में और दिन में दो बार खाना खाने के बाद।
0: ओके सर,
1: दोपहर में खाने के बाद।
0: जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम जरूर खरीदेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। आप बताइएगा, आपकी फैमिली में सब ठीक है?
1: बहुत बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है, सब बढ़िया है। और ये असल में हमारे गुजरी नाम है सबसे पहले।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: कबाब चल रहे थे तो उसमें कोल्ड ड्रिंक नींबू वगैरह निचोड़ के खाए हमने, उससे बहुत तबीयत खराब हो गई।
0: हाँ, उसी की वजह से आपका गला भी खराब हो गया है, राइट?
1: मेरा गला खराब हो गया
0: जी। कोई बात नहीं सर, आपने मेडिसिन ली है ना, और वो सिरप भी लिया है, तो आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: गाने के बोल हैं, दिल तेरी दीवानगी में खो गया है।
0: ठीक है सर।
1: हाँ, दोस्तों का नाम है?
0: हाँ जी हाँ जी, बताइएगा।
1: हमारे दोस्त है इकबाल परेशान, विराज परेशान और आसिफ खुशहाल
0: जी। ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गीत। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, दिल तेरी दीवानगी में खो गया है। आपका दिल भी फोन लगाने में खो गया है, हम जानते हैं, बट ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, मुझे यकीन है। और आप भी खुद पर ट्रस्ट कीजिए कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा, क्योंकि विश्वास होना बहुत जरूरी है।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
2: अपोजिट
0: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
2: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई। अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: हेलो हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और आप सुन रहे हैं अपने पसंद के गाने यहाँ पर। जी हाँ, जब आप कॉल लगाते हैं हेलो फरमाइश में, अपनी पसंद के गाने सुनते हैं, तो उसका मतलब ना कह सकते हैं कि अलग ही सुकून मिलता है अपने फेवरेट गाने सुनने के बाद। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है श्रोताओं कि हमारी पसंद के गाने एक्चुअली दूसरे लिसनर सुन लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ओ हो, ये गाना तो मैं सुनने का मेरा बहुत मन था और फाइनली वो आपको मिल जाता है रेडियो पर सुनने को। और रेडियो की यही खास बात है कि कब कौन सा ट्रैक आ जाए किसी को नहीं पता होता है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: जी मैम,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद आसिफ है
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मुरादाबाद सागवाड़ा से। मैं
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं और क्या करते हैं आप, बताइएगा अपने बारे में जरा।
1: तो बढ़िया है मैम।
0: आप क्या करते हो सर?
1: ये गेस्ट के छोरे वगैरह करे करे काम करते।
0: अच्छा, बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी।
1: फरमाइश मैडम ये है कि वो मोहब्बत अब तजारत है बन गई है।
0: अच्छा, ये गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: जी,
0: ठीक है, सुनवाते हैं, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ, नंबर 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए। और इस प्यारी सी दोपहर में, दोपहर तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ, बाहर का वेदर इतना गर्मी इतनी ज्यादा है बाहर, तो लग रहा है कि हाँ दोपहर जैसा लग रहा है ना अभी। वैसे वक्त हुआ है 4:29 और ये खूबसूरत गीत सुनिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे सी गाने के इस पार।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट शो हेलो फरमाइश में। खुशी आपके साथ है। और साथियों, हेलो फरमाइश में आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं। जी हाँ, आप एवरी डे इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं 3 से 5, और यहाँ पर आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीक में आप एक ही बार कॉल लगा सकते हैं, ताकि और हमारे जो लिसनर्स हैं न्यू, उनको भी आसानी से वो भी कॉल लगा पाएँ एंड वो भी इस शो में कनेक्ट हो पाएँ। तो सभी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ना साथियों। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो हेलो।
1: मैं गाना सुनना चाह रहा था मैम।
0: हाँ जी हाँ जी, नाम बताइएगा अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं सेहल से बात कर रहा हूँ, ग्राम सेहल
0: जी। ये कहाँ पर पड़ता है सर?
1: मुरादाबाद जिले के गांव पास में पड़ता है।
0: अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लगता है।
1: जी,
0: बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा, आप आशियाने तैयार करते हैं?
1: हाँ जी, घर बनाते हैं।
0: बहुत अच्छा कार्य करते हैं सर। बताइएगा, आज आपने पहली बार कॉल लगाया या पहले भी बातचीत हो चुकी है?
1: जी, पहली पहली बार कॉल लगाया, बड़ी खुशी हो रही है।
0: अच्छा, फर्स्ट टाइम लगाया। बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: ये मेरी फरमाइश है, एक गाना सुनना था, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दौड़ो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं।
1: हाँ, दोस्तों के नाम देना चाहता
0: था। हाँ हाँ बिल्कुल, दोस्तों के नाम बताएगा आप अपने।
1: ये दोस्त मेरे संदीप भाई हैं, और मेरे बेटे हैं ये रमनदीप और दीपक और
0: हाँ जी
1: सिद्धांत, और मेरी बीवी, ये सभी के साथ में मैं सुनना चाहता था।
0: ठीक है, आपकी फैमिली और आपकी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत सर की पसंद का, फ्रॉम द मूवी हर घर तिरंगा एंड मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है फ्रॉम द मूवी देश प्रेमी से, एंड ये फिल्म आई थी 1982 में, और बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तो श्रोताओं, हम सब मिलकर इस गीत का आनंद लेते हैं, लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा।
2: आलक

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और आप सब तो मुझे जानते ही हैं। अच्छा, नहीं जानते हैं कुछ नहीं हूँ लिसनर्स, मैं बताती हूँ, मैं हूँ आपकी अपनी खुशी। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: फराज
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मुरादाबाद
0: जी बताइए सर, क्या करते हैं आप?
1: जी। आप पियाने बना रहे हैं?
0: अच्छा, आप भी घर बनाते हैं
1: जी जी
0: जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: तेरे नाम मूवी का गाना है, और नहीं और के नाचूं।
0: अच्छा, और ये गीत आप किन के साथ सुनना चाहते हैं?
1: जी दोस्त हैं साथ में,
0: बताइएगा।
1: मुस्लिम भाई हैं, शमसुल भाई हैं, फारूक भाई हैं,
0: ओके
1: आसिफ भाई हैं।
0: जी, तो चलिए आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। कॉल किया आपने, उसके लिए शुक्रिया। और ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम से।

0: हेलो एवरीवन,
1: पानी वाला चाय गाइस आपने पिया है?
0: पानी वाली चाय तो मैंने पी है, आपने नहीं पी? रीना, रीना जी चाय बना कर लेकर आई है और कह रही है कि पानी वाली चाय पीनी है आपको। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, पानी वाली चाय पीनी है। और ये पानी वाली चाय पता है आपको एवरीवन किन को बोल रही है, किसको बोल रहे हैं? ग्रीन टी को बोल रही है ये।
1: नहीं, वो पानी वाला
0: यस वाटर से ही बनती है वो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं अपनी कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और जानेंगे उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश, आपको भी आदाब सर, अपना नाम बताइएगा। जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
2: सब बढ़िया है, अल्लाह का कराम है। और हमारे यहाँ 2-4 दिन से बच्चे की तबीयत ठीक ना, हालत में खराब, बुखार आ रहा है।
0: जी दवाई वगैरह ले ली आपने, बच्चों की दवाई दिलाई? जी तो अभी कैसे हैं बच्चे आपके?
2: ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी पी रहा है।
0: अच्छा सही बात है सर, उबला हुआ पानी ही डॉक्टर बताते हैं वो ज्यादा बेस्ट होता है, अच्छा होता है। जी
2: बताइएगा।
0: हाँ गुनगुने पानी को ठंडा करने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। जी आप बताइएगा क्या सुनेंगे आज?
2: आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी, इस तरह से बोले गाने के।
0: जी
2: और ये हमारी बेटी माइन हो रहे, आपसे कुछ बात करना चाहती है, इससे बात करूं?
0: जी जी बिल्कुल कराइएगा। हेलो
3: हेलो,
0: हाय कैसे हो डियर?
3: मैडम की बात कैसे?
0: मैं ठीक हूँ, बताइएगा आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम माहिनूर है।
0: माहिनूर, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका, क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? अच्छा थर्ड क्लास में। और रेडियो सुनते हो आप भी?
3: Yes,
0: कैसा लगता है आपको? जी शुक्रिया आपका महानूर, आपका नाम भी बहुत प्यारा है। मोस्ट वेलकम, अच्छे से स्टडी करो और ये खूबसूरत सा गीत एंजॉय करो। ओके
2: अच्छा मैम, ये मेरे साथ में कुछ हो गए हैं, मैं लेना चाहता हूं।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बताइएगा सर।
2: हमारे घर में बेटी माइन हो रहे हैं,
0: जी
2: भाई है और ये बड़ी से मुलाकात,
0: ठीक है सभी के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। शुक्रिया आपने कॉल किया हमें। ठीक है तो चलिए दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और अब हम आपसे लेते हैं जाने की अनुमति। आपसे मिलेंगे हम कल सुबह, ठीक? तब तक के लिए रखिएगा अपना, कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और प्यारी सी स्माइल बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे फील्ड कमांडरों की परिचालन दक्षता और मजबूत होगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों लगाई जा चुकी हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 855 मेगावाट है। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज नेहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन देर से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साईरा मुज्तबा।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप अर्जरीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। समय की बात करूँ तो 5:10 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 4 जून, 4 जून अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज थोड़ा सा वेदर करवट लेने वाली है, यानी कि मौसम है जो यानी कि वो आज पलटने वाली है। क्या पलटने वाली है वो भी बताएंगे हम आपको, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद की बात करूँ तो भैया इस टाइम गाजियाबाद में बहुत ही तेज़ आंधी तूफान है। दिल्ली में हल्की हल्की बरसात यानी कि शुरू हो गई है और मौसम यानी कि जो गर्मी से जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना उससे हल्का सा राहत मिला है। और साथ ही साथ मुरादाबाद में भी कहा जा रहा है कि बारिश आने की संभावनाएं हैं। सो टाइमिंग क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो भी हम आपको सब बताएंगे। साथ ही साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ढेर सारी बातें करेंगे। और आप जानना चाहते हैं तो क्या करना है जी, अरे मेरे जान, बस आरजेरीना के साथ आप कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए जी। फिर आप पता क्या बोलेंगे, लगा लगा लगा रे प्रेम रोग, क्योंकि बारिश मौसम ऑसम होने वाला है। अभी तो बात की जाए तो हॉट है, वेरी हॉट, लेकिन कुछ समय बाद ये चेंज हो जाएगा।

आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरिना के साथ इवनिंग में अपने शो में। और समय की बात करूँ तो 5:18 हो चुके हैं श्रोताओं। और ट्रैफिक के साथ साथ आज का जो मौसम है वो भी करवाहट लेने वाली है। और करवाहट की समय है 8:30 बजे से लेकर 8:30 बजे।

यानी कि शाम 8:30 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक ये बताया जा रहा है कि आंधी तूफान बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। सो आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के जाइए 8 बजे के बाद, क्योंकि आंधी तूफान बहुत तेज आने वाली है, यानी कि 60-70 की रफ्तार में बता रखी है। तो आपसे यही कहेंगे कि खुले एरिया में जाने से बचे, जितना हो सके आप जो भी बाहर का काम है थोड़ा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जो ये बिन मौसम बारिश आंधी तूफान आ रही है ना, और इतनी गर्मी, यही हमें नुकसान पहुंचा कर जाती है। इसीलिए 8:30 बजे से लेकर शाम को सुबह 8:30 बजे तक संभल के रहिए और धैर्य बनाए रखें। अगर आप ऑफिस से निकल चुके हैं तो आपसे यही कहेंगे, हॉर्न पर फोकस कम, सामने ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने दाएं बाएं भी ज़रूर देखिए। और कार वाले भैया से यही कहना चाहेंगे, बाइक वाले भैया से भी यही कहना चाहेंगे कि बरसात के समय ना आपने क्या करना है, जब सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उस टाइम अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको स्लो करना है आपने, क्योंकि आप तो गाड़ी में सेफ है, आपके ऊपर पानी के छींटे भी नहीं आएंगे, लेकिन जो बाहर खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं, ई रिक्शा में है, स्कूटी पर है, तो ऑटो में है, उनके ऊपर जो आप गाड़ी तेज रफ्तार में चलाते हैं ना, तो पानी के जो छींटे हैं ना, वो ई रिक्शा के ऊपर से होकर, यानी कि इंसान गीला हो जाता है। जिसने व्हाइट कपड़े पहन रखे हो ना, समझिए व्हाइट तो भाई कहने के लिए पहना है, लेकिन जो छिट्टे उस पर लग जाते हैं ना, दाग लग जाते हैं ना, छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बारिश के समय, आंधी के समय कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखिए। और देखिए, आप सभी को पता है कि जैसे मौसम खराब होएगा फोन पे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो अलर्ट, अब बस ऑरेंज अलर्ट बताया गया है बारिश आंधी तूफान की। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और बुजुर्गों का खासकर ध्यान रखिए, उनकी जो दवाइयाँ है वो अपने साथ रखें, लाइट चली जाती है टॉर्च अपने साथ रखें। जिनके घर में इन्वर्टर है उनके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है वो अपने साथ टॉर्च रखें, अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें अपने साथ रखें, क्योंकि ये चीज़ें अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे और बुज़ुर्गों का ध्यान रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की शाम सुहानी होने वाली है और आज की रात मजा हुस्न का। आय हाय, क्या बात है जी, बहुत ही प्यारे गाने, सो इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं जी।

क्या बात है जी, फुलकारी गाना आपने एंजॉय किया। और समय की बात करूँ तो 5:29 हो चुके हैं और आज की तारीख 4 जून अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल चीज़ डे और नेशनल हग योर कैट डे। यदि अगर आपके पास चीज़ है तो उसका स्वाद लीजिए, और अगर बिल्ली है तो उसे प्यार से गले लगाइए, लेकिन ध्यान रहे बिल्ली की मर्जी ज़रूर पूछ लीजिए, वरना प्यार के बदले पंजों का उपहार आपको, पंजों का गिफ्ट आपको अवश्य मिल जाएगा। चीज़ खाने वालों के लिए है कि ज़िंदगी में थोड़ा चीज़ होना ज़रूरी है, और कैट लवर्स कहते हैं कि घर में एक बिल्ली हो तो हर दिन खास हो जाता है। तो बताइए आपकी पसंद क्या है, चीज़ से भरा पिज्जा या फिर बर्गर या फिर समोसा या गोद में आराम से बैठी प्यारी सी बिल्ली। तो श्रोताओं, आपने हमें मैसेज करके बताना है कि आपको चीज़ वाले बर्गर, पिज्जा, समोसा क्या आपको पसंद है, आपको मैसेज करके बताना है। साथ ही साथ अगर आपको बिल्ली पालना बहुत पसंद है तो वो भी मैसेज करके बता सकते हैं कि किनके किनके पास, किनके घरों में बिल्ली आप पाल के रखा है आपने। सो हमारा प्यारा सा नंबर है 9837896896। फिलहाल तो आजकल आपको भी पता है कि जंक फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो खाने की बातें तो होनी चाहिए, यानी कि आपको चीज़ वाला पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा क्या पसंद है आप मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो चीज़ वाला बर्गर बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मिनी समोसा आता है वो भी चीज़ वाला, वो भी बहुत लाजवाब होता है, मुझे तो ये दोनों बहुत पसंद है। आप बताइए मैसेज करके कि आपको क्या पसंद है चीज़ वाले में। चलिए फिलहाल एक और गाना आप सभी के लिए बहुत प्यारा, सो इस गाने को इंजॉय करते हैं। और शाम को बस हर कोई यही बोलता है, जब शाम सुनहरी होती है ना तो सब क्या बोलते हैं, सुनिए जरा, खिंच मेरी फोटो, खिंच मेरी फोटो। और यूं ही सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ तो 5:39 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी को पता है कि कल है 5 जून, तो कल आपकी प्लानिंग

हैं मूवी देखने की तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप आरजेरीना के साथ कनेक्ट है और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और यानी कि एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम जानेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर यही नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चों के लिए आधार कार्ड, बैंक डिटेल, क्या चीज क्या ज़रूरत है इसकी। सो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि बॉलीवुड यानी कि मूवी आप देखने के शौकीन हैं और क्योंकि कल मूवी आ रही है वरुण धवन की। जितने भी वरुण धवन के दीवाने होंगे ना भैया कि भाई ये एक्टर मेरा फेवरेट वाला एक्टर है, तो सच बताओ उनकी कोई भी मूवी आए ना वो छोड़ते नहीं है, जिस दिन उनकी पहली मूवी रिलीज़ होती है वो देखने ज़रूर जाते हैं। तो आप भी हैं वरुण धवन के दीवाने कि ये मेरा फेवरेट एक्टर है, तो आप कल मूवी देखने जा सकते हैं क्योंकि कल मूवी रिलीज़ हो रही है जवानी है तो इश्क होना है। सही बात है, जवानी है तो इश्क तो होना ही है, ये मूवी आपको देखकर पता चलेगा। बहुत ही प्यारी कॉमेडियन मूवी रहने वाली है, सो अगर आप ये मूवी कल देखने वाले हैं तो मैसेज करके बता सकते हैं श्रोताओं, नंबर है 9837896896 कि आपके फेवरेट एक्टर यानी कि वरुण धवन है या नहीं है, और जिनके हैं वो कभी भी उनका जब भी पहली मूवी रिलीज होती है वो देखने ज़रूर जाते हैं। चलिए एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होंगे और आपको हम बताएंगे कि आखिरकार जो छोटे बच्चे होते हैं जन्म से लेकर उनको किस चीज़ की नीड होती है और कौन कौन से कागज़ है, दस्तावेज है जो आपने रेडी रखना चाहिए। चलिए फिलहाल एक और प्यारा सा गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं जी।

0: असंतीन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरिना के साथ। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है। समय की बात करूँ तो 5:49 हो चुके हैं और बहुत से पेरेंट्स हैं जो कि डिले करते हैं, यानी कि बच्चों के लिए जब जन्म के बाद बच्चों की जो कुछ ज़रूरतमंद दस्तावेज़ होते हैं उसको बनवाने में हम डिले करते हैं, लेकिन ये बनवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं बच्चे के लिए वो आप उसका लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि नवजात शिशुओं के लिए कौन कौन से हमारे पास यानी कि दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, ये बच्चे का सबसे पहला और मुख्य दस्तावेज है। और इसे कैसे बनवाएं? बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर पंजीकरण करवाना ज़रूरी है। और आप सोच रहे होंगे कि भैया कैसे बनाएंगे हम इसको, कहाँ बनवाएंगे इसको, तो कुछ नहीं करना है आपने। यदि बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है तो अस्पताल से मिलने वाली बर्थ स्लिप या डिस्चार्ज प्रमाण पत्र के आधार पर नगर निगम या पंचायत कार्यालय से बनवा सकते हैं। दूसरी बात आती है बच्चे का आधार कार्ड। अब हम यही सोचते हैं कि बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा है तो अभी छोटा ही है तो इसके आधार कार्ड की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आधार कार्ड के बिना आपको पता है ना कि हमारी खुद की भी पहचान कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए आधार कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। सरकारी योजनाओं और भविष्य के हर काम के लिए बच्चे का आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। अब इसे बनवाना कैसे है? बच्चे के आधार कार्ड के लिए माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी कि 5 वर्ष से छोटे बच्चों के आधार कार्ड के लिए कोई बायोमेट्रिक या फिर फिंगरप्रिंट या फिर आंख की पुतली नहीं ली जाती हैं। यह माता पिता के यानी कि UID से लिंक किया जाता है, बस इतने सी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम खुद आवेदन करें तो आपने इसके लिए क्या करना है, आप अपने नज़दीकी UIDAI ऑफिस वेबसाइट पर जाकर आधार नामांकन कराना है आपने, साथ ही साथ आपने यानी कि आप वहां पर जाके आसानी से बनवा सकते हैं। और दूसरी बात, बच्चों का पासपोर्ट है ना। अब दिमाग में ये ख्याल आता है कि पासपोर्ट क्यों बनवाना है। अब बहुत से पेरेंट्स हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हम विदेश जाए, यहाँ पर यानी कि वहाँ पर घूमने के लिए या फिर वहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो बच्चों का है जो बच्चे का पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बच्चे को विदेश ले जाने की योजना बना रहे हैं तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे खास बात, टीकाकरण और हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड, ये इसका रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि दस्तावेज बच्चे के समय पर टीके लगवाने और उसका मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए ज़रूरी होता है। और कैसे इसको प्राप्त करें, दिमाग में तो ये भी ख्याल आता है ना, बच्चे के जन्म के समय अस्पताल से ही टीकाकरण चार्ट और हेल्थ कार्ड मिलता है, जिसमें जन्म के समय बच्चे का वजन और अन्य ज़रूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दर्ज होती है। इसे संभाल कर रखना चाहिए ताकि भविष्य में डॉक्टर को दिखाने में आसानी रहती है। और ज़रूरी सुविधाएं, माता पिता को नवजात शिशु के जन्म के बाद ही ये दस्तावेज समय पर पूरे कर लेने चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी सुविधा, स्कूल में एडमिशन या बीमा योजना का लाभ उठाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चे का आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, टीकाकरण होना और उसका कार्ड होना, रिकॉर्ड आपके पास हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल, वरना फिर आप क्या पता क्या होएगा आपके साथ, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। हाँ जी, यानी कि ये गाना हम एंजॉय करेंगे। ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है अगर आप इन कागज़ों को नहीं बनवाते हैं, तो बनवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी योजना है आप उसका लाभ आसानी से उठा पाएंगे। चलिए जी, फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है, सो इस गाने को एंजॉय करिए आप और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: लटपटा लव इश्क बबुआ।
1: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया आर्जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 5:59 हो चुके हैं श्रोताओं, यानी कि 6 बजे हम न्यूज़ सुनने वाले हैं। लेकिन न्यूज़ से पहले जो प्यारे प्यारे मैसेज आ गए ना, उनको शामिल कर लेते हैं जरा। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं। और रीना जी, मौसम की जानकारी अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट

0: होती हैं विकी सागर जी मुरादाबाद से। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, कैसी हो आप? बहुत अच्छे जी, गाने बिंदास सुना रही हो। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं। मैम मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, चाय पी लीजिए मैम। थैंक यू सो मच जी, आज तो हमने पहली चाय पी लिया है। मैं आपका शो रोज ध्यान से सुनती हूँ। ओके थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात है कि आप रोज ध्यान से सुनती हैं। और मेरा फ़ोन का जो रिचार्ज है वो ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैसेज नहीं कर पा रही थी। ये भी बहुत बड़ी समस्या है भैया कि रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते, ऊपर से रिचार्ज इतने महंगे हो चुके हैं ना कि पूछिए मत क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब देखिए, इस ज़िंदगी में ना रिचार्ज चाहे कितना भी महंगा हो जाए लेकिन इसके बिना तो रहना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सर अब सबको पता है कि भैया फ़ोन तो चलाएगा ही चलाएगा, इसे रिचार्ज महंगा करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है, महंगे तो करेंगे हम करेंगे, तुम चलाओ जितना चलाना चाहते हो। इसीलिए रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं भैया। पहले 300 रुपये का एक महीने का हो जाता था आराम से, लेकिन अब 400 कुछ का करना पड़ता है, वो भी एक महीने का, वो भी अगर GB के हिसाब से देखना पड़ता है भैया कि आपको अनलिमिटेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी देखना पड़ता है। ऊपर से आईफोन वालों के लिए और भी बड़े, यानी कि 5 GB है तो और भी ज़्यादा महंगा रिचार्ज होएगा, है ना। मतलब पता नहीं कहाँ क्या ही हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया कम से कम पता है कि फ़ोन आई नो कि हर कोई यूज़ करता है, तो थोड़ा सा रिचार्ज के ऊपर बजट कम कर देनी चाहिए ना, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या, आप भी बता सकते हैं अपना राय। देखिए अपनी राय जरूर साझा करनी चाहिए। साथ ही साथ इनका कहना है कि आज रात नींद अच्छी आएगी, ऊपर से क्योंकि मौसम बारिश आने वाली है ये बताया जा रहा है, यानी कि 8:30 बजे के बाद मौसम अच्छा तो हो ही रहा है लेकिन बारिश भी आने की संभावना है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी मैम, ओए होए क्या बात है। लेकिन कल वाली जो रात है बड़ा ही मुश्किल था, बिजली बार बार जा रही थी। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप, रिचार्ज महंगा हो गया है जी बिल्कुल। और भी मैसेज पढ़ेंगे श्रोताओं, लेकिन सबसे पहले यानी कि न्यूज़ का टाइम हो गया है, इससे पहले मैं न्यूज़ चलाऊँ, अदरवाइज मेरे बॉस आएंगे और बोलेंगे बेटा सामने का गेट आपके लिए बहुत ही इंतज़ार कर रहा है।
1: और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास UP कॉरपोरेशन की मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है श्रोताओं, 6:11 हो चुके हैं और आज की तारीख हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। हम सभी के लिए हर रोज़ खास होता है। सो आज की तारीख यानी कि 4 जून, और देखिए भैया जून का महीना है, कभी गर्मी कभी बारिश का मज़ा तो आपको लेने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हैं मैच देखने के दीवाने तो आपके लिए खुशखबरी। हाँ जी, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। सो मैच के बात कर लेते हैं, यानी कि IPL 2026 के ख़त्म होने के बाद टीम इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने जा रही है, यानी कि परसों है 6 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच के साथ साथ नए सीजन का आगाज होगा। इसके बाद टीम इंडिया अफगानिस्तान, आयरलैंड, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी। और फिर सितंबर और अक्टूबर के बाद फिर से मैच की अपडेट आपको देखने को सुनेंगे। तो श्रोताओं, अगर आप भी मैच के दीवाने हैं तो 6 जून से टेस्ट जो मैच है वो शुरू होने वाले हैं। साथ ही साथ जो मैसेज रह गए थे वो भी शामिल करेंगे और आप सभी के लिए लेकर आएंगे हम कड़क सवाल। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो ईदगाह मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं सफ़ी अहमद अंसारी जी। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताइए कि आप कैसे हैं? रीना मैम, मैं आपका शो सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच जी कि आप मेरा शो सुन रहे हैं, इन बेस्टिंग शो। थैंक यू सो मच जी, और सॉन्ग इज़ वेरी वेरी गुड। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करें तो ये राजेश जी कनेक्ट होते हैं, यानी कि मुरादाबाद से हैं, और इनका कहना है कि मैं अभी PSC रोड पर हूँ मैडम। सो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, और सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो थोड़ा संभल के आइए, वरना आपको टाइम तो लग सकता है। वही देखिए, इस टाइम तो वैसे ट्रैफिक तो लगता ही लगता है, चाहे आप दिल्ली रोड की तरफ जाए, बुद्ध बाज़ार की तरफ जाए, मार्केट की तरफ, तो भैया इस टाइम सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। सो आप जब भी निकल रहे हैं तो लोकेशन ज़रूर चेक करिए, क्योंकि आप जब लोकेशन डालते हैं तो वह ग्रीन कलर का दिखाता है, कुछ उसी ग्रीन कलर के अंदर आपको रेड ऑरेंज कलर का दिखेगा, ऑरेंज कलर का, तो समझ लीजिए कि इस रास्ते पर ट्रैफिक जाम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। सो आप भी कहीं हैं तो आप मैसेज करके बता सकते हैं कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो भैया वहाँ पर आप कभी चले जाओ, हमेशा आपको मेन गेट की तरफ से भीड़ तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए जी, अब लेकर आने वाले आप सभी के लिए कड़क सवाल, जो कि होने वाला है बड़ा ही मस्त। और आज वैसे नेशनल चीज़ डे है, यानी कि आप बर्गर, कौन कौन से चीज़ वाले जो डिश है वो खाना पसंद करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मिनी समोसा, जो चीज़ वाले आता है वो। एक दिन पता क्या हुआ, मैंने अपनी मम्मी को ना पिज़्ज़ा मतलब ऑर्डर किया था, तो मम्मी को मैंने बोला कि पिज़्ज़ा खा लो, तो मेरी मम्मी का रिएक्शन बड़ा ही लाजवाब था। कहती हैं कि ये पिज़्ज़ा वीज़ा क्या होता है, ये तो इससे बढ़िया तो आलू के पराठे खा लो, ये क्या मैदा खाते रहते हो तुम सब। उस दिन के बाद मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना बंद कर दिया गाइस, फिर मैंने सिर्फ बर्गर ही खा लो अगर खाना है तो, लेकिन डेली नहीं, महीने में एक दो बार खाओ बस, इससे ज़्यादा नहीं, डेली जंक फूड नहीं खाना चाहिए। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ और करते हैं ढेर सॉरी बहुत ही। फिलहाल आपने किथे नहीं जाना जी, एक और गाना बहुत ही प्यारा, सो इस गाने को एंजॉय करिए और आते हैं लौट कर आप सभी के बीच, करेंगे ढेर सारी बातें और कड़क सवाल के साथ। सो आपने किथे नहीं जाना जी, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: चलो पीछे।

क्या बात है जी, बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। यानी कि भैया 90s के जो गाने होते हैं ना, बड़े ही लाजवाब होते हैं। और साथ ही साथ समय की बात करूँ तो 6:26 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी के बीच में लेकर आ गई हूँ कड़क सवाल। अब देखिए, रीना का शो हो और उसमें कड़क सवाल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना श्रोताओं। चलिए जी, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो आज का जो कड़क सवाल है वो बड़ा ही सिंपल है, बस आपने सोचना है, जिससे हमें सुकून भी मिलता है देखिए, और गर्मी में उसके बिना तो रहा भी नहीं जाता है। यानी कि क्वेश्चन है, बिना पंख के उड़ती जाए, बिना पैर के दौड़ती जाए, क्या है वो, जल्दी बताइए। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है। वंस अगेन एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, बिना पंख के उड़ती जाए, बिना पैर के दौड़ती जाए। कौन है वो बिना पंख के उड़ती हैं और दौड़ती जाती है बिना पैर के भी, सोचिए और फटाफट मैसेज करिए जी। फिलहाल के लिए खुद गुनो आप सभी के बीच। देखिए, मैंने फॉर एग्जांपल भी आपको दे दिया है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। गर्मी में दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप समझ गए होंगे श्रोताओं।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 6:31 हो चुके हैं। और कभी कभी ना श्रोताओं, हम गलत चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ने लगती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप सुबह खाने चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रात के समय नहीं खाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो आपको किस टाइम खाना चाहिए। यानी कि पपीते की अगर मैं बात करूँ तो रात में ना खाए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सैलेड, फ्रूट्स वगैरह तो मैं कहती हूँ रात को तो खाना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ चावल रात में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और दूध रात में पीना बेहतर माना जाता है। और साथ ही साथ अब अगर आप उसमें चुटकी भर यानी कि हल्दी डाल लेते हैं तो आपके जो बोन्स में पेन होते हैं, हड्डियों में पेन होता है, उससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ केला खाली पेट कभी ना खाएं। और सेब यानी कि सुबह खाना सबसे फायदेमंद माना जाता है। और जब आप डेली एक सेब खाते हैं ना, एप्पल खाते हैं ना, तो कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती है। खीरा सोने से पहले अवॉइड करें, यानी कि वही बात है, रात के समय आप बिल्कुल ना खाएं। आलू रात के खाने में ना खाएं। अब देखिए, आलू पूरे सब्जियों का राजा है। अब रात को आलू ना खाएं, कुछ सब्जियां नहीं दिखती है तो आलू दिखता है ना। और टमाटर रात में अवॉइड करें, जितनी भी सैलेड है वो रात में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ हम चॉकलेट के बहुत दीवाने होते हैं, रात में, दोपहर में, जब मर्जी जब खा लेते हैं, लेकिन दोपहर में खाना बेहद माना जाता है। और कॉफ़ी, बहुत से ये कहते हैं कि भाई हम जिम जाते हैं तो सुबह सुबह कॉफ़ी पीकर चले जाते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट कॉफ़ी पीना आपकी बॉडी के लिए नुकसान, आपको बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रीन टी यानी कि ग्रीन टी, ग्रीन चाय जिसको बोलते हैं, वो खाली पेट कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपको ये दिक्कत कर सकती है। और अगर आप पी भी रहे हैं तो मैं शुगर वाला जो ग्रीन टी होता है वो अवॉइड करनी है आपने। साथ ही साथ श्रोताओं, आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं ना, ओह माय गॉड, लेकिन अभी तक राइट आंसर बस सोचने में लगे हुए हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और आपको मैं बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल, कि वो नेचुरल है, उसके लिए कभी स्विच ऑन नहीं करना पड़ता है। सो क्वेश्चन ये है कि बिना पंख के उड़ जाए, बिना पैर के

0: क्या बात है जी, बहुत किया है। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ते शो में। समय की बात करूं तो 6:42 हो चुके हैं श्रोताओं। और अब बात कर लेते हैं यानी कि आमिर खान की मूवी लगान के बारे में। हाँ जी, यानी कि 25 साल पूरे करने के अवसर पर यानी कि ये जो मूवी है ये रिलीज़ होने वाली है, वो भी यानी कि चॉइस वाले थिएटर में ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। तो अगर आप लगान मूवी जो देखने वाले हैं, बहुत प्यारी ये मूवी थी, अगर आपने नहीं देखी तो इस बार ज़रूर देखिएगा। और कुछ चुनिंदा थिएटर में ही ये रिलीज़ होंगी। और यानी कि डे है 12, 13 और 14 जून को ये देश भर के कुछ ही थिएटरों में रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि ये मूवी 25 साल अपने पूरे कर चुकी है। तो अब देखते हैं भैया ये मूवी कौन से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। बहुत ही जल्द मैं आप सभी को बता दूंगी। बस आपने यूं ही आरजे रीना का शो सुनते रहना है, इवनिंग मस्ती शो। और आज का जो कड़क सवाल बहुत ही प्यारा है, क्योंकि अब एक दो गानों के बाद आप सभी के मैसेज शामिल करने का वक्त समय आ गया है श्रोताओं। सो आज का कड़क सवाल बहुत ही सिंपल फैंटास्टिक वाला है, जो कि बिना पंखे के उड़ती उड़ती जाए, बिना पैर के दौड़ती जाए। नेचुरल प्राकृतिक डैश मिलती है हमें, मेरे मुंह से ना आंसर भी स्लिप हो ही जाते हैं गाइस। सो मैंने अपनी ज़ुबान पे ना बहुत कंट्रोल कर लिया है अभी जस्ट और उसके लिए स्विच ऑन करना नहीं पड़ता है। सोचिए ना क्या हो सकता है, सोचिए, थोड़ा सोचिए। जिसको हम दिल से कहते वाओ, क्या मज़ा आ रहा है। और श्रोताओं देखते ये हैं कि 8:30 से लेकर मौसम यानी कि बारिश आंधी तूफान बताया जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही है। तो देखते हैं 8:30 होता क्या है। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उससे पहले एक गाना और फिर आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे और आप सभी के मैसेज शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
5: किदा
6: तू इत्थे की करदा?
5: तैनूं व्याहुणा आ?
6: तेरा दिमाग खराब, तैनूं पता जदों सारे घर दे इत्थे बैठे आ क्यों पंगे लैंदा फिरदा? तैनूं पता जे मेरा बापू इत्थे आ?
5: तेरा बापू ही आ, लदेन तां नहीं? चल देख फिर।

0: ਸਾਸੀ
1: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪ ਸਭੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਂਗੇ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ 6:49 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਹੋ, ਔਰ ਆਪ ਸਭੀ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਤਰਫ ਬੜੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ ਕਾ ਕੜਕ ਸਵਾਲ, ਓਈ ਹੋਈ ਮਈਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਆਜ ਕਾ ਕੜਕ ਸਵਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੰਖ ਕੇ ਉੜਤੀ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਕੇ ਦੌੜਤੀ ਜਾਏ। ਚਲੀਏ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਸਾਹਸ ਹੈ ਭਈਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੰਖ ਕੇ ਉੜਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਕੇ ਦੌੜਤੀ ਹੈ, ਸੋਚੀਏ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਤਰਫ ਬੜ੍ਹਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਈਆ ਕਿ ਫੈਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕਨੈਕਟ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਕੈਸੀ ਹੋ ਆਪ? ਨੇਹਾ ਐਂਡ ਸਵਾਤੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ, ਹੈਲੋ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਆਜ ਕਾ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਈ ਹਵਾ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕਨੈਕਟ ਹੋਤੀ ਹੈ।
2: ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪੜਾ ਘਰ ਸੇ।
1: कृपया आप अपना नाम बताने का कष्ट जरूर करें। नंबर है 4045।
3: जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़े आए आ जिंदगी में आ।
1: हाँ जी, जल्दी बताइए, आंसर पकड़ा है हमने, ये ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है, और इनका कहना है कि हवा, हवा ही हवा आंसर है इसका। ओके, तो अगले मैसेज की बात करूं तो ईदगाह मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, और राइट आंसर कहना है कि इनका पतंग या फिर नदी हो सकता है। ओफो सर, कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक ही चूज करने का, अपने एक ही सोचिए और फिर मैसेज करिए। सो अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली और इनके जो दोस्त है परम मित्र सैयद शारिक अली जी। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? अजी हम बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए जी। आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी बहुत मस्त प्ले करती हो आप, थैंक यू सो मच जी। और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी मिलती रहती है, और राइट आंसर होता है हवा, हवा ही हवा, हवा बोलते हैं। सो अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, रूपाली जी कनेक्ट होती हैं, ये कनेक्ट होती हैं यानी कि रामलीला ग्राउंड के पास से, और इनका कहना है कि हवा है मैडम जो कि नेचुरल होता है, और आपने पहले ही बोल दिया कि स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऊपर से आपने बोल दिया कि नेचुरल है जिसका हम इंतज़ार करते रहते हैं, तो वो है ठंडी ठंडी हवाएं, और आज का मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है। ओके,
3: जिंदगी में आना, ओ, ओ, जाने जाना।
1: हाँ जी, अगले मैसेज की बात करें तो ये हमारे साथ पूजा जी कनेक्ट होती है, देखिए शाम हो चुका है, पूजा का भी समय हो चुका है, यानी कि घर में आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि समय हो चुका है जी। और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है हवा, जो कि मैं अभी पार्क में घूम रही हूँ, और ये कहना है कि बुद्धि बिहार से हैं हम। ओके जी, चलिए एक गाना सुनिए और उसके बाद बताते हैं आप सभी को कि राइट आंसर सबसे पहले हमारा, यानी कि किनका आया था राइट आंसर, और आप चाहते हैं कि फूड वाउचर जीते तो उसके लिए भैया ऑफिस तो आना पड़ेगा। जिन्होंने भी मैसेज किया है यानी कि राइट आंसर के साथ, उनको वाउचर मिल सकता है, लेकिन उसके लेने के लिए पैरों को कष्ट तो देना पड़ेगा। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, यू आर माई सोनिया।
4: देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा,
1: हाय हाय।

सना ही, क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और आज का राइट आंसर के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत कि किन्होंने सबसे पहले हमें राइट आंसर पहुँचाया है। सो रोहित कुमार जी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, यानी कि हौसपुर पोस्ट हमीरपुर जनपद रामपुर यूपी से। रीना जी नमस्कार, आज मैं अपने मित्र राजकुमार भाई के साथ आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। क्या बात है जी, एक खूबसूरत ही शायरी पेश है जी। बिल्कुल, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, ख्वाहिश इतनी सी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वक्त चाहे जैसा भी हो बस तू मेरे साथ हो। क्या बात है जी, बहुत ही प्यारी लाइनें लिखी आपने और FM रेडियो मुरादाबाद को मेरा ढेर सारा प्यार। रीना जी आपको और FM मुरादाबाद की पूरी टीम को शुभ संध्या, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। हाँ जी सर, हम सभी कुशल मंगल है। और ये हमारे साथ रोहित कुमार हनुमान मूर्ति मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। चलिए श्रोताओं अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और ये सफ़ी अहमद अंसारी जी का कहना है कि राइट आंसर होता है हवा। ओके, सो अगले मैसेज की बात करूँ तो हेलो रीना, हेलो गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से सैयद शारिक अली जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है हवा। हवा ये यानी कि हवा है। चलिए जी रिवील कर देते हैं कि सबसे पहले हमारे पास किनका राइट आंसर आया है और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है, लेकिन ये आयुष, ओके इन्होंने नाम बता दिया है, आयुष है। सो आप मेरे शो के आज विनर बनते हैं तो आप यानी कि अपना वाउचर लेने के लिए, फूड वाउचर लेने के लिए हमारा स्टूडियो आपको आना पड़ेगा जो कि रामलीला ग्राउंड के पास है। चलिए थोड़ा सा पैरों को कष्ट देना पड़ेगा, साथ ही साथ ललिता कश्यप जी आज फूड वाउचर जीत चुकी हैं, साथ ही साथ

0: देखो, जिन्होंने भी हवा आंसर दिया है ना, आप सभी का मोस्ट वेलकम है रेडियो स्टेशन में फूड वाउचर के लिए। आइए और अपना फूड वाउचर लेके जाइए। ठीक है जी, अभी के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर। और सबसे पहले यानी कि ललिता कश्यप जी और आयुष जी विनर बनते हैं आज की शाम। लेकिन आप सभी ने भी हवा आंसर दिया है राइट, तो आप फूड वाउचर आके हमारे स्टूडियो लेकर जा सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह।
1: के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है, साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
8: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
9: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का से दर्द तो है मगर कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा खाऊंगा मेरे को आराम मिल जाएगा। बट वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है आसान है तो बहुत इजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इन्वाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिसे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
10: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
4: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
10: बहुत अमेजिंग,
4: मतलब आपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
10: डिफरेंट एरा।
4: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, कुछ नया सा है।
10: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, अ न्यू थिंग, समथिंग न्यू थिंग इज।
4: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सो सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
10: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी। एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्ते या चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है।
4: हाँ जी मैम,
10: वो अक्यूट में आता है।
4: ओके,
10: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है जो कि 12 हफ्ते तीन महीना तीन महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का दर्द, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉनिक पेन जो तीन महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है।
4: ओके,
10: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं वो हम करते हैं।
4: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं, दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है, अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है, तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
10: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेज एंड ऑल। तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, B12 डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द।
4: ओके,
10: ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, फिर आता है हमारी बोन। बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा। जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है। तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की, वो कम हो जाती है। थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
4: ओके मैम, ये तो हमने बात कर ली सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
10: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है, और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन्न हो गया है। तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा, हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव, दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं। वो देने के बाद में हम आते हैं, जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है, कैनाल डायमीटर। उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया। आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोग के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी। आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं, जिसकी वजह से दर्द नहीं होता। वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना, वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
4: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
10: बिल्कुल भी नहीं है।
4: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है।
10: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं। आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा। तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है। हम सियाम और सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं। जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं। तो ये इसका इलाज है।
4: मैम आपने बहुत ही

0: से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
1: बिल्कुल,
0: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार, मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का, तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या?
1: बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
0: जी,
1: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई, वो सर मेरे दिमाग पे आओ, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको, क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है, पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना, आपको अच्छा लगता है तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक।
0: ओके,
1: ऐसे।
0: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बारी कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
1: डेफिनेटली।
0: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
1: बिल्कुल। क्या होता है कि हम, हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेंजी हैं, जेन अल्फा है,
0: बीटा है,
1: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है, तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को, अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
0: Exactly.
1: तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल मैम।
1: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर, ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
0: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
1: बीच में भी हम देखते हैं,
0: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट, तो कहना कि आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है।
1: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
0: करेक्ट। तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम?
1: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है, अगर, और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन। सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीक से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर। और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेलजिया, पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में, या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर निदा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निदा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं तो क्या ये करना चाहिए या फिर
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई अपना दर्द चला गया,
0: काम पे
1: फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है।
0: करेक्ट।
1: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाई खा रहे हो, ठीक हो जा रहे, दैट इज प्योरली ओके। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है।
0: ठीक है।
1: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं।
2: मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ, राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ, बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन, मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय, और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
3: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं, जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
2: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
6: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
7: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जन प्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
8: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
2: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
9: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
10: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
11: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
12: कॉल 8826213131।
13: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
0: एक बार फिर से आप सभी का स्टूडेंट निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद हैं श्री साईं हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा, थोड़ा सा इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेन्युइनली?
1: देखिए डिपेंड करता है ड्यूरेशन कितना है।
0: ऑलराइट,
1: ठीक है।
0: अच्छा,
1: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
0: ओके,
1: जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
0: ओके,
1: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
0: ओके,
1: हॉट फर्मेंटेशन,
0: मतलब वो और फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं है,
0: करेक्ट, वही तो। दोस्तों अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिले, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
1: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं,
0: बीमारी को ढूंढते हैं, एग्जैक्टली।
1: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
0: ओके मैम, कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है,
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है, मतलब पूरे सर में दर्द ना हो के आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है?
1: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। okay. कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है,
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द

0: क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
1: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
0: बिल्कुल है,
1: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
0: बिल्कुल है, मानसिक तनाव देखिए, स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
1: ठीक है,
0: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
1: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन की आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई, लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली, क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
0: देखिए, आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
1: ठीक है
0: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि तीन महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
1: ठीक है,
0: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है।
1: ठीक है, ओके मैम, मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
0: देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें
1: जी।
0: अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा,
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ,
1: बिल्कुल
0: ऐसा ही है
1: मैम, एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी
0: दर्द, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
1: बिल्कुल मैम, सही बोला। इनफैक्ट मैम, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
0: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जिनका बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं, या फिर फोन में लो बच्चे बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
1: फोन,
0: हाँ, इंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता, या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है वो शॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है,
1: ओके,
0: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं।
1: ओके, सो दोस्तों आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए, बिल्कुल स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं,
0: बिल्कुल दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
1: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
0: AI
1: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
0: नहीं, सर दर्द देखिए, गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ।
1: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और हम आशा करते हैं कि थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा, और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत, मैम थैंक यू।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ और तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की और IIT दिल्ली JEE एडवांस 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए कल से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया समय से शुरू की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू करने की दिशा में सभी तैयारियां पूरी कर ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी समितियों को आवश्यक दस्तावेजों और वार्षिक ऑडिट संबंधी औपचारिकताओं की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। साथ ही श्रद्धालुओं को 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं पर बल देने, बैंक खातों में ट्रांसफर करने तथा सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज साकेत के मैक्स हॉस्पिटल का दौरा किया और मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना में कल घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों से बातचीत की और इलाज कर रहे डॉक्टरों से इलाज की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को सभी जरूरी मदद देने का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह एक दुखद घटना है और इसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई है।
3: बहुत ही दुखद घटना है और इतने सारे इनोसेंट लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री महोदया ने इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की है। निश्चित तौर पर वहां पर एक इलीगल होटल चल रहा था, रेस्टोरेंट भी इलीगली ही चल रहा था, कोई उसके लाइसेंस के डिटेल है नहीं। और एक 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना जो कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे लाई गई थी, उसका भी एक यूनिट वहां पे चल रहा था जिसको 2024 में लाइसेंस मिला था।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के मालवीय नगर अग्निकांड जैसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और अनधिकृत निर्माणों तथा अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता वो करेंगी। दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि मालवीय नगर अग्निकांड के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी भवन मालिक, अधिकारी और अन्य दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और जवाबदेह तंत्र सहित सभी पहलुओं पर समग्र रूप से काम करना आवश्यक है, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। दिल्ली सचिवालय में कल आयोजित होने वाली इस बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, DDA, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने बताया कि मालवीय नगर के एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग की घटना के पीछे रही कमियों की गंभीरता से जांच की जाएगी और जिसकी भी जवाबदेही बनती है उसे तय किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अवैध संपत्तियों, बिना अनुमति संचालित हो रहे होटलों और गेस्ट हाउसों तथा उन सभी संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन उपविधियों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले एक महीने के दौरान राजधानी में सघन निगरानी, निरीक्षण और परिवर्तन गतिविधियां चलाई हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा की नियमित निगरानी प्रक्रिया के तहत विभाग ने विभिन्न खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों से एक महीने कुल 217 खाद्य नमूने एकत्र किए हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस अवधि के दौरान विभाग को 145 खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 133 नमूने निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए, 12 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिनके संबंध में संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा एक कार्रवाई में विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से खारी बावली बाजार में चल रही एक कम गुणवत्ता वाली मसाले बनाने की इकाई का भंडाफोड़ किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नियमों का पालन आसान बनाने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन संबंधी बड़ी संख्या में आवेदनों का निस्तारण किया है। श्री सिंह ने बताया कि मई माह के दौरान कुल 503 लाइसेंस जारी किए गए, जबकि लाइसेंस नवीनीकरण के 753 आवेदनों पर भी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से नियामक निगरानी और ज्यादा मजबूत हुई है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
6: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि यह विस्तार आने वाले दिनों में प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इवेंट प्रबंधकों के लिए विविध अवसर पैदा करेगा। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का ऐतिहासिक पहला संस्करण आज अहमदाबाद के एका एरेना में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। एक रिपोर्ट।
7: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने सब जूनियर से लेकर सीनियर मास्टर्स तक 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। इस खेल को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहली बार एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे हर एक आसन, संतुलन और गति का एक सटीक मूल्यांकन किया जा सके। यह आयोजन योगासन को आध्यात्मिक कल्याण के साथ साथ ओलंपिक में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ और तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के अंतर्गत यातायात की आवाजाही को आसान बनाने, सड़क किनारे होने वाली भीड़ को कम करने और पार्किंग के मामले में अनुशासन को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
8: दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम इस सप्ताह से राजधानी में तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के आसपास एक तालमेल वाली कार्यवाही और जागरूकता मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का उद्देश्य वाहन चालकों को सड़कों, सिविस लेन, फुटपाथ, कैरिज वे, नो पार्किंग वाली जगहों और ऐसी पार्किंग सुविधाओं के आसपास की दूसरी सार्वजनिक जगहों पर गलत तरीके से गाड़ियां खड़े करने के बजाय तय पार्किंग जगहों का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के लिए पहले से मौजूद पार्किंग सुविधाओं का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा व्यस्त बाजारों, रिहायशी व्यापारी इलाकों और सार्वजनिक जगहों के आसपास यातायात की आवाजाही आसान और बिना रुकावट की दिशा में बल देना है। इस तालमेल वाली मुहिम में 6 मल्टी लेवल पार्किंग जगहों को चुना गया है। इनमें कमला नगर के स्पार्क मॉल, ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट, हौज खास, कुतुब रोड, निजामुद्दीन बस्ती और परेड ग्राउंड शामिल है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे तय पार्किंग सुविधाओं का इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी करने से बचें। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इन पार्किंग सुविधाओं के आसपास गलत तरीके से खड़ी पाई गई गाड़ियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
2: दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज नरेला की इंडस्ट्री एसोसिएशन और मायापुरी के कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सोसाइटीज के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सचिवालय में बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने नरेला में जलभराव की समस्याओं पर चर्चा भी की, साथ ही जल निकासी प्रणाली को बेहतर करने और पूरे इलाके के विकास संबंधी कार्यों को लेकर अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आईआईटी दिल्ली जेई एडवांस 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए कल से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। इस 3 दिवसीय सत्र का आयोजन दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में किया जाएगा। इस ओपन हाउस में छात्रों को आईआईटी दिल्ली के छात्रों, फैकल्टी और पूर्व छात्रों से बातचीत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही आईआईटी दिल्ली द्वारा छात्रों के पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा पढ़ाई, रिसर्च, कैंपस लाइफ और आजीविकाओं के मौकों के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। इससे छात्रों को अपने शैक्षणिक सफर के बारे में सोच समझकर फैसला लेने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग क्षेत्र से अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह विदेशी नागरिक बिना किसी वैध यात्रा और पहचान दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पुलिस ने जांच के दौरान विदेशी नागरिक से एक फोन बरामद किया है जिसमें बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज पाए गए हैं और फोन में प्रतिबंधित IMO एप्लीकेशन भी इंस्टॉल है। पुलिस ने बताया कि अवैध अप्रवासी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसे वापस भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की मादक पदार्थ निरोधी दस्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 22 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ बरामद किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। राजधानी में आज करीबन सभी जगह तेज बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज बारिश के कारण लोगों को जल जमाव का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाये रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा केंद्र तक रियायती दरों पर बस यात्रा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ और तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की और आईआईटी दिल्ली जेई एडवांस 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए कल से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अदृश्य तरंगे दृश्य प्रभाव आपदा में आकाश

0: आकाशवाणी का महत्व, जो केंद्रित है आपदाओं के समय आकाशवाणी द्वारा दी गई जानकारी, चेतावनी और मार्गदर्शन पर। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश, फाउंडर चेयरपर्सन कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सोसाइटी, आर के टिक्कू, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं नीलम मलकानिया।
1: आप सभी को नीलम मलकानिया का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इन दिनों आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ विशेष कार्यक्रम। ऐसा ही एक विशेष कार्यक्रम ये, जिसका शीर्षक अदृश्य तरंगे दृश्य प्रभाव, आपदा में आकाशवाणी का महत्व। तो आज,
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: FM मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं। मेरा नाम RJ आनंद है और आप सभी को पता है, जब भी हम लोग रेडियो स्टेशन पे आते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ काम की चीजें लेकर आते हैं, और इस कंपनी को फुलफिल करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, RJ राज भी मेरे साथ हैं। भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
7: थैंक यू सो मच यार अपने काम की चीज में मुझे भी जोड़ने के लिए। फिलहाल हम जुड़े हुए होते हैं, बहुत कम होता है कि जब हम जुड़े हुए नहीं होते किसी काम की चीज़ में।
6: लेकिन मजा तब आता है जब एक साथ दो लोग होते हैं।
7: हाँ, ये बात तो बिल्कुल। वो कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजते, तो दो हाथ का होना बहुत जरूरी है। तो बस आज के शो में ऐसे ही कुछ होने वाला है, दोनों हाथों को मिलाकर ताली बजने वाली है, और ताली का रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो आपको हौले हौले बता लेगा आनंद बताएगा।
6: तो देखिए क्या है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, रेडियो सिर्फ गाने नहीं सुनाता है, एंटरटेनमेंट नहीं करता है, वो आपकी फिटनेस का भी ध्यान रखता है। और नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, इसी खास मौके पे हमने भी एक खास एनर्जेटिक और पॉजिटिविटी जिनसे मुझे मिल रही है, तो मैं चाहूंगा RJ राज जरा उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कुछ।
7: देखो ऐसा है ना कि तारीफ करने को तो मैं बहुत कर सकता हूँ, ठीक है ना
6: भाई? तू तारीफ मत करना, तेरी तारीफें थोड़ी सी अलग वे में जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी सिर्फ काम की बातें हो जाए।
7: मेनली मैं बस इतना बोलने वाला हूँ, और इंट्रोड्यूस करने के लिए शायद इतना ही काफी है कि मुरादाबाद की क्वीन फिटनेस के मामले में, हाँ जी बिल्कुल, मतलब फिटनेस की क्वीन उन्हें बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुराद का हर लड़का या फिर हर लड़की उन्हें जानती है, अगर वो फिटनेस से कनेक्टेड है। और फिटनेस से कनेक्टेड नहीं है तो आज हम कनेक्ट कराने वाले हैं, और आखिर कौन है वो फिटनेस की क्वीन, तो चलो उन्हें इंट्रोड्यूस करा।
6: तो चलिए RJ राज प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए भाई।
7: बिल्कुल,
6: और आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है जिनके बारे में हमने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा पढ़ा है, उनका स्वागत कर लेते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद। कौन है ये? फिटनेस की खिलाड़ी अपूर्वा शर्मा जी, वेलकम टू FM मुरादाबाद। फिटनेस कोच अपूर्वा जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए पहले तो आपको कैसा लगा स्टूडियो में आके?
8: मुझे कैसा लगा, इट इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। मैं बहुत टाइम से ये सोचती थी कि कैसा स्टूडियो होता होगा जहाँ आप लोग बोलते हैं और सिर्फ हम आपकी आवाज सुन पाते हैं विदाउट योर एक्सप्रेशंस, और आपकी आवाज से ही हमको आपके एक्सप्रेशन जज करने होते हैं कि जब आप प्रैंक्स करते हैं तो आप खुद भी हंस रहे होंगे या नहीं, या सीरियस होंगे, या फिर जब वो आपका लाइव होता है उसके बाद आप कितना हंसते होंगे कि आज हमने ये किया। तो वो आज मुझे लाइव देखने का मौका मिल रहा है, आई एम प्रिविलेज्ड। थैंक यू सो मच।
6: एंड टू बी ऑनेस्ट टुडे आई फील कि मैं कांटा लगा गल के साथ बैठा हूं, बिकॉज आप देख नहीं पा रहे होंगे अभी आप, मतलब वो मैं आपको लाइव बता रहा हूं कि जो चोटी है ना आगे की वो बड़ी स्टाइलिश दिख रही है मुझे, वो रील्स भी जाएगा इंस्टाग्राम पे, डोंट वरी। सो भाई राज तुझे कैसे लग रहा है आज इतना सुंदर चांद स्टूडियो में आए, लाइटें फेल हो गई है?
7: देखो ऐसा है ना,
6: ऐसी बात है, मैं राज के साथ क्यों, मजा आएगा।
7: देखो मेन चीज ये है कि इन सफेद दीवारों में बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे,
6: और आज ये भी सफेद ड्रेस पहन के
7: आए, रंगीन करने के लिए कोई आ गया है
6: क्या? लवली यार, ब्यूटीफुल। अच्छा तो
8: ये बहुत अच्छा तरीका था फ्लर्ट करने का, आई लाइक इट।
6: बहुत कम ऐसा मौका मिल पाता है।

0: एनीवेज चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैम देखिए नवरात्रि का जो है बहुत ही पावन पर्व चल रहा है, सो मुझे लगता है राज भाई कि इस खास मौके पे एक बहुत ही खूबसूरत देवी शक्ति हमारे स्टूडियो में आई है, तो हम फ्लड कम करेंगे अब।
1: बिल्कुल,
0: अब काम की बात ज्यादा करेंगे हम।
2: सॉरी गाइस,
0: तो फिलहाल एवरीबॉडी
2: हम करेंगे कंट्रोल करने।
0: बिल्कुल, तो एवरीबॉडी अब काम की बात करते हैं। तो अपूर्वा जी सबसे पहले ये बताइए आपकी खूबसूरती का राज क्या है?
2: ओह माय गॉड,
1: मेरी खूबसूरती का राज है
0: मेकअप या फिर फिटनेस?
1: ऐसा कुछ नहीं है, मेरी खूबसूरती का जो राज है वो राज नहीं है।
0: राज तो यही बैठा है,
1: राज नहीं है। वो है मेरी, मेरा जिम, मेरा स्केड्यूल, मेरा डिसिप्लिन, मेरा डाइट एंड माई फिटनेस।
0: ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने और बहुत मजा आने वाला है एवरीबॉडी आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में। तो अपूर्वा जी सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे एफएम मुरादाबाद परिवार की ओर से। प्रोग्राम का नाम है खास बातचीत, मतलब विशेष बात, और उस विशेष बात में आप विशेष गेस्ट हैं हमारी आज की। आरजे राज भी हमारे साथ कंपनी दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपको फिटनेस का क्रेज कहाँ से आया? मतलब
1: एक्चुअली मेरे को जो इंस्पिरेशन मिली है वो मेरी मदर से मिली है।
0: ओके
2: ओके।
1: और मतलब जब हम छोटे छोटे से थे तब से शी इज वर्किंग। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, एक दिन मैंने अपनी मम्मा से क्वेश्चन किया, माय मदर हीरा शर्मा जी, तो मैंने उनसे एक दिन क्वेश्चन किया कि मम्मा आप जॉब भी करते हो, आप हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करके जाते हो, हमारा लंच भी बना के जाते हो, फिर उसके बाद वापस आके इवनिंग स्नैक्स भी बनाते हो, फिर शाम को फिर म्यूजिक क्लासेस भी लेते हो, और फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे उठ के आप पूजा भी कर लेते हो, कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने मेरे को एक छोटी सी बात बोली कि बेटा अगर आप अपने आप को और अपनी डाइट को और अपनी फिटनेस पे ध्यान दोगे ना, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जीत नहीं सकते।
0: True.
1: तो ये एनर्जी मेरी इसलिए आती है क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं थकूंगी, ये मेरी सारी ड्यूटी है जो मुझे परफॉर्म करना है, और मैं इसके लिए अपने डाइट का और अपनी फिटनेस का ध्यान रखती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों की भी डाइट का ध्यान रखती हूँ, तो आगे चल के आप इसी को फॉलो अप करो। तो ये मेरी सारी इंस्पिरेशन मेरी मदर से।
0: क्या बात है,
2: क्या
0: आपकी
2: बात
0: मदर
2: है?
0: के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अपूर्वा जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको जो मोटिवेशन आया वो अपनी मम्मी से आया, और मोस्टली मुझे लगता है कि जब पेरेंट्स का सपोर्ट हो जाता है एक लड़की को तो आगे और ज्यादा बढ़ चढ़ के चीजों को अच्छे से करती है, मतलब उनकी कोशिश होती है कि अपना 100% दें। ये चीज आप भी कर रही है मुरादाबाद शहर में, नो डाउट सारे लोग आपको जानते हैं, आई एम श्योर जो नहीं जानते आज वो भी जानेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये विमेंस के लिए स्पेशल काम कर रही है यार, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि, मुझे बाद में पता चला मैम कि आप स्पेशली विमेंस के लिए करती हैं, तो थोड़ा सा बताइए ये वाला कैसे आपने सोचा?
1: एक्चुअली मैंने इसलिए सोचा ये कि देखिए जिम तो मुरादाबाद में बहुत सारे हैं, यूनिसेक्स है, और ऐसा नहीं है, मैं कभी ये नहीं कहती कि यूनिसेक्स जिम में सेपरेट फीमेल्स बैचेस नहीं है, बट उसमें उन बैचेस में भी अभी कोई मेल का कोई टाइमिंग इन आउट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको आने से रोक सकते हो, किसी कोई इवनिंग नहीं आ पाया तो हो सकता है फीमेल टाइमिंग में आके अपने कार्डियो कर रहा है एंड ऑल, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिम एक ऐसा प्लेस है जहां पर एक फीमेल जो है बहुत कम्फर्ट माहौल चाहती है, और जो एक्सरसाइज के हमारे पॉस्चर्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि आप किसी मेल के सामने कंफर्टेबल नहीं हो सकते, फिर क्या करना पड़ता है, हमको वो एक्सरसाइजेस स्किप करनी पड़ती हैं। okay. या फिर इफ यू आर फीलिंग लाइक कि मैं थोड़ा सा फ्री होके थोड़े कह सकते हो आप शॉर्ट्स में मैं इजीली वर्कआउट करूं, तो कई बार ऐसा होता है यार, बॉयज भी जैसे वर्कआउट करते हैं तो वो अपना गंजी वंजी पहन के और शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के, रीजन है उसका, आप जब तक मसल जिस पे आप वर्क कर रहे हो आपको दिखेगी नहीं मेरा, तो आपको एक मोटिवेशन नहीं आएगा काम करने का, ऐसे गर्ल्स फील करती है। बट अगर यूनिसेक्स जिम है और मेल्स हैं वहाँ, तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो ये फील करते हैं कि यार हम ये एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं, या फिर हम ये नहीं करते, या फिर शाय फील करती हैं, हेजिटेट फील करती हैं, तो ये सारी चीजें मैं फील कर रही थी जब मैं खुद यूनिसेक्स जिम में जा रही थी। तो फिर मैंने इस चीज का एक बैरियर को तोड़ने का सोचा कि यार क्यों ना सिर्फ लड़कियों के लिए ही खोला जाए, जिसमें लड़कियां जो मर्जी पहने जैसे मर्जी रहे, एक सेफ माहौल हो, एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो, और जब उन्हें एक फीमेल को एक फीमेल ट्रेनर मिलेगी तो शायद वो और भी अच्छे से ब्यूटीफुली अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये एक रीजन था कि सिर्फ फीमेल को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे दो जहां पर वो बिना, और सबसे बड़ी चीज एक और चीज है अबव ऑल कि कितने मुरादाबाद में कितने ऐसी फैमिलीज हैं जो एक लड़की को या अपनी वाइफ को या अपनी डॉटर को वहां उस जगह पे भेजना ही नहीं चाहते जहां पर मेल्स, तो उनके लिए भी एक बड़ा ड्रॉबैक था, वो चाह रही है जिमिंग करना, फिटनेस करना, वर्कआउट करना, बट उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, उनके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, तो उस सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए मैंने एक ऐसी जगह बनाई जहां पर विदाउट एनी कोई रोक टोक आप आओ, अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपना मेंटली हीलिंग करो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, और इसके अलावा भी अगर कोई दिल में कुछ राज वाज परेशान कर रहे हैं, राज का नाम फिर आ गया यार, क्या
0: आता ही रहेगा,
1: कोई सीक्रेट ऐसे जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, आप उससे परेशान हो रहे हैं, वो भी आप आके डिस्कस कर सकते हो, तो मेंटल फिजिकल एंड वोकल तीनों चीजें एक ही जगह पे लाके रखती है।
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस।
2: मतलब कहते हैं क्रिकेट की फील्ड में शर्मा जी का लड़का कमाल कर रहा है, वैसे फिटनेस की जिम में जो है शर्मा जी की लड़की कमाल कर रही है आनंद
0: भैया।
2: जैसे कि हमने ये तो सुन लिया आनंद भैया कि फीमेल्स के लिए स्पेशली मैम ने जो है जिम प्रिपेयर कर रखा है। सबसे पहली मेन थिंग ये है कि उस जिम का नाम क्या है, उस जिम का नाम रखने के पीछे रीजन क्या है, ये भी मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा। तो आनंद भाई जाना जाए?
0: बिल्कुल यार, बिल्कुल।
2: हाँ, तो इस बारे में थोड़ा बताइए हमें, एक्सप्लेन करके।
1: देखिए, द अल्टीमेट फिटनेस जिम जो नाम मैंने रखा था,
2: हाँ जी,
1: वो ये सोच के रखा था कि यार जिम तो सब है, अल्टीमेट क्या होने वाला है,
2: अल्टीमेट क्या होने वाला,
1: तो हम यहाँ पर अल्टीमेट चीजें दे रहे हैं। हम यहाँ फिजिकल फिटनेस भी दे रहे हैं, हम यहाँ मेंटल हीलिंग भी दे रहे हैं, यहाँ हम एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं। समय समय पर हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, कभी माहौल हुआ डांसिंग का तो डांसिंग ही हो रही है, कभी माहौल हुआ चिट चैट का तो सिर्फ वोकल चिट चैट हो रही है, जिससे मानसिक रूप से भी जब कोई आपको फ्रेंडली माहौल मिलता है फीमेल्स के साथ तो स्पेशली है कि अगर वो घर से डिप्रेस्ड होके आई है और अगर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं और काइंड ऑफ काउंसलिंग कह लो या कुछ, तो वो जब घर जाती हैं तो रिफ्रेश होके जाती हैं, तो नेक्स्ट डे वहां से एक हमें बड़ा अच्छा कमेंट मिलता है, यार बीवी गई तो नाराज थी, आ तो बड़ी खुश होके आई है।
2: तो
1: इट्स लाइक दैट, हम वी आर गिविंग अल्टीमेट थिंग्स और अब बहुत कुछ और भी इनोवेटिव करने वाले हैं, इसीलिए हमने इस जिम का नाम द अल्टीमेट फिटनेस जिम रखा।
2: क्या बात है, मतलब कि नाम के पीछे भी राज थे और राज खुल के आ गए सामने।
0: लेडीज आपको सुन रही हैं इस वक्त, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारी लेडी हैं जो जिम जाना तो चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर के इतने सारे काम होते हैं, कुछ घर के रूल्स होते हैं कि वो नहीं आ पाती है, ठीक है, हर किसी के घर में परमिशन भी नहीं है, क्योंकि आज भी मैं मानता हूँ कितना हमारा समाज एजुकेट हो जाए और हो रहा है, बट कुछ चीजें हैं जो भी है समाज में, तो क्या वो घर पे रहकर भी अपने आप को फिट रख सकती हैं? आपके पास कोई ऐसे टिप्स जो आप उन्हें देना चाहें?
1: अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं यहाँ इसलिए भी आना चाह रही थी आपको बताऊं आनंद कि ये इन्फॉर्मेशन ना मैं अपने सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम डालती हूँ, लेकिन जो 89.6 के व्यूअर्स हैं वो मेरे सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग होंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचेगी। ये मेरा बेस्ट रीजन था, ये क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल पूछा है आपने कि जो फीमेल्स अफोर्ड नहीं कर सकती या फिर वो आ नहीं सकती अपने टाइम स्केड्यूल की वजह से या फिर घर में परमिशन ना होने की वजह से, वो फिटनेस को कैसे लेती हैं और उन्हें कैसे लेना चाहिए।
0: Correct.
1: तो उन सबके लिए मेरे लिए मेरा ये एक मैसेज है कि गाइस देखिए, जिंदगी में शरीर से बड़ी पूजा, शरीर से बड़ा मंदिर कोई नहीं है। आप लोग कुछ भी आज कर पा रहे हैं बचपन से लेकर, आप वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ दे, ठीक है, और ये वो जगह है, आप अपना घर क्लीन करते हो, आप अपना मंदिर क्लीन करते हो, आप अपने बच्चों का रूम्स क्लीन करते हो, आप अपना आस पड़ोस क्लीन करते हो, इवन कि हफ्ते में एक बार आप अपना टेरेस भी क्लीन करते हो। व्हाट अबाउट योर बॉडी, जिसकी वजह से आपका वजूद है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है, तो इसको सिर्फ ये सोच के इग्नोर ना करें, ठीक है, एज के साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सबके साथ होती हैं, मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं, घुटनों में दर्द, एज के साथ कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं अनफिट, इस तरीके से आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। अगर आप जिम नहीं आ पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, अपना एक स्केड्यूल बनाइए पूरे दिन में, एक घंटा किसी भी वक्त, इसका कोई टाइम नहीं होता, आप जब भी फ्री हो एक घंटा अपने वर्कआउट के लिए निकालिए, चाहे आप योगा करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप रिस्क वॉक करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे कुछ भी ना हो तो आपके घर में अगर स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, तो 10-15 बार उसको ऊपर चढ़ें उतरें, इस तरीके का कोई भी फिजिकल वर्कआउट एक घंटा कंटिन्यूअसली सबको अलग हटा के, पूरी दुनिया को अलग हटा के अपने लिए करें, पहली चीज। दूसरी चीज, डाइट का ध्यान रखें। मैं नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी खा सकते हो ऐसे एटमॉस्फेयर में जब आपको सबको सब कुछ बनाना होता है, बट इतना जरूर हो सकता है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, अगर अनहेल्दी बनाए तो उसको कम खाएं, कुछ हेल्दी बनाए तो उसको ज्यादा, सिर्फ इतने ही चेंजेस से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग जिमिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए रात का खाना प्लीज बंद करें, रोटी चावल ये जितनी भी हैवी चीजें हैं, ऑयली नॉन वेज हो गया या आपका पनीर हो गया, ये सब अपनी जितनी फेवरेट चीजें हैं सब लंच में ऐड करें, और रात में आप या तो खाना बिल्कुल ना खाएं, और खाएं तो बहुत लाइट खाएं और सेमी लिक्विड खाएं। सिर्फ ये दो तीन चीजें करने के बाद ही आपकी लाइफ में इतने ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे ना, मैजिकली चेंज हो जाएंगे कि आपको खुद बॉडी से अपनी अपनी एनर्जी से प्यार होने लगेगा और आपको खुद ब खुद जिम खींच के अपनी तरफ बुला लेगा।
0: ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पूर्वा जी आपने। एक क्वेश्चन और है राज, फिर तू पूछ लियो। मैंने ना बहुत सारे लोगों के साथ मैंने जब बातचीत की है जो मेरे खुद के रिलेटिव जिम जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे भी रेकमेंड करते हैं कि आनंद तुम जिम जाओ, तो मैंने उनसे पूछा जिम में सबसे सॉर्टेड चीज क्या है, तो उसने मेरे को ना एक चीज बोली है पूर्वा जी, कि लोग कहते हैं नहीं 50% जिम होता है, 30% 40% आपका डाइट होता है, तो ये कंफ्यूजन बहुत है लोगों में। आप एक सही सजेशन क्या देना चाहेंगे कि डाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वर्कआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
1: फाइन, मैं उसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। सपोज कोई इंसान है जो कोई काम
0: कर,
1: ठीक है, उसके पास सारी फैसिलिटीज है घर पे, वो बहुत अच्छी डाइट ले रहा है, उसको शेफ भी है उसके यहाँ, एवरीथिंग इज मतलब लाइक जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है ना मेंटली ना फिजिकली, वो घर में अपने लाइक अ किंग या लाइक अ क्वीन, और उसको बहुत हेल्दी डाइट ले और बहुत अच्छा अच्छा खा रहा है, कोई ऑयली नहीं खा रहा, कोई जंक नहीं खा रहा, कोई पैकेजिंग फूड नहीं खा रहा, अगर आप उसका डेटा चेक करोगे या किसी डॉक्टर के पास जाके उसे एग्जामिन करोगे तो वो अनहेल्दी निकले। इसी तरीके से कि एक इंसान है जो बिल्कुल भी डाइट फॉलो नहीं कर रहा है और वो घंटों जिम में रहता है और वर्कआउट करता रहता है और बहुत अच्छी बॉडी मेंटेन करी, आप उसको भी एग्जामिन करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी अनफिट। तो इट्स अ रोल ऑफ 50-50। डाइट जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। अगर खाली डाइट से आप पतले होगे तो बॉडी लूज हो जाएगी, बॉडी पतली जरूर होगी, आप वेट लॉस जरूर करोगे लेकिन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपका जो फैट है एक्स्ट्रा फैट वो वैनिश नहीं होगा, वो लटक जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप वर्कआउट करोगे और डाइट नहीं करोगे तो कैलोरी डेफिशिएट में नहीं जाएगी, ना वेट बढ़ेगा ना कम होगा और वो पैरेलल रहेगा। दोनों का रोल बिल्कुल माँ और पिता जैसा है, जैसे माता और पिता का एक बच्चे।
0: जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अपूर्वा जी जैसे मतलब अगर आप जिम जाओगे तो मोटे हो जाओगे, जिम मोटे होने के लिए जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जिम में सिर्फ आप फिट होने के लिए जाते हो, आपकी बॉडी जो है कट शेप में आती है, वो थोड़ी सी स्टाइलिश आप दिखते हो, तो क्या ये भी एक मिथ है या फिर सच में वेट ग्रो होता है हमारा अगर हम जिम जाते हैं?
1: मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअली मैं भी ऑनलाइन लाइव करती रहती हूँ इंस्टा पे या फेसबुक पे, तो मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं, जैसे अगर हम जिम ज्वाइन करेंगे और जिम छोड़ देंगे उसके बाद हम वापस वही वेट गेन कर
0: लेंगे। ये तो है
1: ना, ऐसे ही आपने जो क्वेश्चन किया कि जिम क्या सिर्फ मोटे और पतले होने के लिए, ऐसा तो ये सारे मिथ्स, ये उन लोगों के मिथ्स बनाए हुए हैं जो जिम को कभी प्रेफर ही नहीं करेंगे, ना अपने आप के लिए और ना दूसरों। अभी लास्ट मैंने वीडियो भी बनाई थी एक बॉडी शेमिंग के ऊपर, अभी इंस्टा पे मैंने बनाई है, शायद आपने, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो बॉडी शेमिंग को लेके एक हथियार बना लेते हैं कि यार हम जैसे मर्जी सही, आप कोई नहीं होते हम पर फिंगर आउट करने वाले, हम अपने घर में अच्छा खा पी रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट अंदर इंटरनली आप जाके देखेंगे तो वो इतने ज्यादा अनफिट हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें हैं। तो ये सारे मिथ्स हैं उन लोगों के बनाए हुए जो जिनको फिट रहना पसंद नहीं, ठीक है, या जो फिटनेस को बिल्कुल वेस्ट चीज। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप जिम आ रहे हो, एग्जाम्पल देती हूँ, एक बाथरूम में तीन टैप्स लगी हुई है,
0: ठीक है,
1: दो टैप्स हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, उनका फ्लो बिल्कुल रेगुलर है और बकेट में पानी आ रहा है या शावर है उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, वो पानी फ्लो में, एक टैप जो हमारी कभी यूज नहीं हो रही थी उसको जब हम अचानक खोलेंगे तो पानी का फ्लो गड़बड़ाए, पहले दिन भी गड़बड़ाएगा, दूसरे दिन भी गड़बड़ाएगा, कहीं जाके थर्ड फोर्थ डे वो फ्लो में पानी आना स्टार्ट होगा। सिमिलरली जब आपने अपनी बॉडी को फिटनेस दिया ही नहीं तो फिटनेस का ज्ञान आपको कैसे मिल सकता है? स्टार्टिंग में आप जिम आओगे आप डिमोटिवेट भी होगे, आपको बॉडी पेन भी होगा, आपको मसल पेन भी होगा, लेकिन एक दिन आफ्टर अ वीक और आफ्टर 15 डेज आप इतना स्मूथ आपकी बॉडी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अब तक तो मैं कर क्या रहा था यार अपने साथ, मैं कितना गलत कर रहा था अपने साथ, ये तो राइट वे है जिसको मुझे करना चाहिए था, जो लाइफ मेरे को लीड करनी चाहिए। तो जिम एक ऐसा प्लेस है, इट्स लाइक अ मंदिर फॉर अ बॉडी, तो जिम से कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता अंटिल अनलेस आपका ट्रेनर अच्छा हो, उसको नॉलेज हो, कोई झोला जाप लेके नहीं बैठा हो, कोई यूट्यूब देखने वाला गूगल सर्च करके वो ना बैठा हो, अगर आपका ट्रेनर अच्छा है और उसको नॉलेज है तो वो आपके लिए बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा जैसे एक मंदिर एक परेशान व्यक्ति के लिए काम करता है।
0: वेरी नाइस nice. बहुत ही
2: तो चलो एक काम करते हैं, मैं पूछ लेता हूँ आनंद भैया बीच में,
1: आपके क्वेश्चन से तो मुझे डर लग
2: नहीं नहीं मेरे क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरो, काम का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बिना काम का नहीं पूछने वाला हूँ मैं। एक्चुअली मेरा जो अगला क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन रहेगा पूर्वा जी, जिम तो हम चले जाएंगे ठीक है ना, जिम जाने के बाद
1: आप दिख नहीं रहे हैं थोड़ा सा,
2: मैं दिख नहीं रहा हूँ, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिलहाल मैं पूछ रहा था, हम जिम तो चले जाएंगे पर जिम जाने के बाद मैटर करता है कि ट्रेनर वहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है, ठीक है, तो एक जिम के अंदर ट्रेनर क्या रोल अदा करता है इस बारे में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेनर के बिना जिम अधूरी है और अगर आपको फिट रहना है तो ट्रेनर का होना भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जिम तो चले जाते हैं पर ट्रेनर नजर आता नहीं, बस वेट उठाते रह जाते हैं, उसके बदलता है कि नहीं यार कमर में दर्द बढ़ गया है, वेट हमारा कम लॉस हुआ है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो इस बारे में थोड़ा बताइए।
1: ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत सारे लोगों, इसलिए मैंने ट्रेनर का जिक्र किया अभी कि जिम होना जैसे स्कूल में, स्कूल होना तो कितना भी लेवल स्कूल हो, कितनी अच्छी फैसिलिटीज हो, टीचर्स के बिना और एक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना स्कूल बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसी तरीके से एक जिम में और ट्रेनर का वही रोल है, क्योंकि कितनी सारी एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिनके पोस्चर्स आपको पता ही नहीं, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना वेट उठाना है, किस तरीके का पोस्चर्स रखना है, वो बड़ी मीम्स बन रही है ना, वो जिम ट्रेनर आता है वो पोस्चर हमेशा वो बम आउट वाला करा देता है, कितने सारे वो मतलब मीम्स है, तो वो गलत नहीं है। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है वो यूट्यूब से गूगल से इधर उधर से इंस्टा से देख के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वो गलत पोस्चर्स होते हैं, तो जिम में एक ट्रेनर का तो रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं सबको यही इन्फॉर्मेशन दूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस जिम में ये देखें कि ट्रेनर्स अवेलेबल हैं या नहीं है और वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं या नहीं देते हैं, अदरवाइज आपका जिम करना खराब है, आप अपना हार्म कर लेंगे अच्छा करने के बजाय।
2: बट एक चीज ये भी है ना कि हम कैसे समझेंगे कि जो सामने ट्रेनर बैठा है वो हमारे लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि जिम तो बहुत है ट्रेनर भी बहुत है पर वो ट्रेनर एजुकेटेड है या फिर नहीं है उस चीज को लेकर, वो कैसे हम समझेंगे, ये चीज भी तो मैटर करता है।
1: देखिए ये ऐसे मैटर करता है कि जब आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराने जाते हैं तो आप उसके के ये पूरा होमवर्क करते हैं, वो कैसे टीचर्स हैं, कैसा स्कूल है, कितने साल पुराना है, कहाँ से एफिलेशन है, कहाँ ट्रेन टीचर्स हैं या अनट्रेन टीचर्स हैं। सिमिलरली मैं वही बोलूंगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है कि ये ट्रेनर क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका जिम कब से ओपन हुआ है, कितने टाइम से काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात उसके रिव्यूज क्या है। आजकल तो सोशल मीडिया पे आपको रिव्यूज मिलते हैं कि फीडबैक्स क्या है, उसने कितने लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन

0: आई थी उसने इतना हार्ड वर्कआउट कराया और ट्रायल लिया और वापस लिया, बट टच वुड मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरी चेयर पे ऑफिस टेबल पे कोई क्लाइंट आ गया और मैंने खुद से उसको डील कर लिया तो अभी तक मेरे पूरे करियर में ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे पास वापस ना।
1: मतलब इन्फ्लुएंस पावर मैम की अच्छी है,
0: व्हाटएवर आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, हम अग्री विद इट। बट कोई भी स्टूडेंट जो मेरे पास बैठ के डिटेल्स लेके गया हो वो क्योंकि मैं कनेक्ट इतने अच्छे से कर पाती हूँ, मैं समझ पाती हूँ चीजों को, जो चीज चाहिए अगर आप उसको, आप ऐसे भी कह सकते हो, जो चीज अगर सामने वाले को चाहिए और आप उसको दे रहे हो है ना, और उसके इकोनॉमिकल रेट्स में दे रहे हो या फिर जिस तरीके से वो कम्फर्टेबल है उस टाइमिंग पे दे रहे हो, तो आपका क्लाइंट क्यों जाएगा,
1: क्लाइंट क्यों जाएगा, ये बात
2: तो। राजीव कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: यार देखो मैं बात जरूर करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में है और वो क्वेश्चन मैं पूछे बिना शायद आज जाने नहीं दूंगा, ठीक है। फीमेल्स जिम की, मतलब फीमेल्स की बात हो रही है और फीमेल्स की फिटनेस की बात हो रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछना चाहिए पीरियड्स के टाइम पर,
0: हाँ जी,
1: क्या फीमेल्स को जिम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए?
0: okay.
1: क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम जिम जाते हैं और जब हम जिम के प्रति प्यार नहीं करते हैं तो आलस ना
0: हाँ।
1: और छुट्टी लेने का हमारा मन करता है कि आज छुट्टी हो जाए, बहुत
0: ठीक है,
1: तो पीरियड्स के टाइम पे क्या फीमेल्स ये बहाना बनाती है या फिर पीरियड्स के टाइम पे जिम जाना सही है या फिर नहीं है, इस बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे तो शायद हमारे फीमेल्स के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा।
0: नहीं बिल्कुल बताऊंगी, एक्चुअली क्या है, देखिए कुछ लोग वाकई में एक्सक्यूजेस बनाती हैं कुछ फीमेल्स कि उनको कोई क्रैम्प्स नहीं होते या इतना फ्लो नहीं होता, लेकिन वो कहती हैं कि भाई ठीक है इस बहाने दो दिन की छुट्टी मिल जाएगी, ट्रेनर भी नहीं डांटेगा और घर पे भी कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको सच में मेडिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उनके लिए तो ओके है कि आप स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड डे जब आपको पेन बहुत है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है, तो आप दो दिन का रेस्ट ले लें। लेकिन बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है इस लेवल की कि आप चल नहीं पा रहे हैं या कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बल्कि पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करना और भी अच्छा होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसका पहला रीजन तो ये है कि जिन लोगों को फ्लो कम होता है उनका फ्लो अच्छा होता है। दूसरी चीज, जिनको पीसीओस और पीसीओडी की प्रॉब्लम है के साथ अगर वो पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट करते हैं तो वो बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव होता है, और आगे चल के अगर वो लगातार ऐसा करते हैं तो उनके पीसीओस और पीसीओडी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और थर्ड वन इज कि आपकी जो बॉडी है वो पीरियड्स के टाइम पे नीडेड होती है कि अगर आप उसको वर्कआउट दोगे जो वर्कआउट चाहिए, वही बात आ गई कि अगर ट्रेनर आपका अच्छा हो तो वो आपको बता सकता है कि जब आपको पीरियड्स हो रहे हैं आपको क्या वर्कआउट करना है क्या नहीं करना, बट मिस करने वाला यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पीरियड्स की वजह से वर्कआउट मिस करने वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता।
1: ओके
0: और मैं उसको मतलब मैं उसको प्रमोट भी नहीं करती,
1: प्रमोट भी नहीं करती। तो मतलब मेन थिंग ये है कि पीरियड्स के टाइम पे आप जिम जा
0: बिल्कुल करना चाहिए,
1: आपके लिए हार्मफुल नहीं रहेगा,
0: बिल्कुल हार्मफुल।
1: दिमाग में ये मिथ था कि आप नहीं जा सकते, पर आप जाना शुरू कीजिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जैसे कि मैम ने बताया। तो ओवर टू यू आनंद भाई।
2: चलो भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा चलो एक तो ऐसा सवाल निकल के आया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे लगता है बात विमेंस की हो रही है, नारी शक्ति की हो रही है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा लगा। और आजकल तो समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है।
0: मैं आप कर रही हूँ, चलते चलते आपके व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहूंगी।
2: अच्छा भाई हमने तो बोला भी नहीं, देखिए मैम के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी, अभी ये बोलेंगी चलते चलते मैं आरजे भी बोलना चाहूंगी, तो गाइस आप सुनने के लिए रेडी रहिए।
1: ऐसा लगता है आनंद भैया आपने मैम का इंट्रो नहीं सुना था, मैम ने इंट्रो में बताया कि इनके जो मदर हैं, लेकिन वो सिंगर हैं ऑलरेडी,
0: सिंगर हैं इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चाहे वो सिंथेसाइजर हो, चाहे वो तबला हो, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे वो वट एवर इट मे बी, चाहे वो गिटार हो, माई मदर
2: ऑलराउंडर लगी
0: वो सब कुछ आता है, उन्होंने कभी सीखा नहीं है।
2: अरे
0: मतलब सीखा इन द सेंस, अब बाद में तो उन्होंने म्यूजिक में ही सब कुछ किया, लेकिन उनको ये बाय बर्थ उनको गॉड गिफ्ट था, तो उनको सब कुछ आता है, तो वो प्रेरणा थोड़ी सी हमें मिली है
2: अपनी मधुर आवाज में। जरा हमारे
0: मधुर तो नहीं है, जिम वालों की आवाज
2: तो मधुरी आ रही थी मुझे,
0: जिम वालों की
2: गाने की बात कितनी मधुर होगी,
0: मधुर नहीं हो सकती, बट ये सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट है, आई ऑलवेज यूज टू सिंग दिस जब भी मैं कहीं जाती हूँ और बहुत अच्छे से
2: ये गाएंगे और हम बजाएंगे बाद में।
0: हाँ ठीक है, हाँ जब मैं किसी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती हूँ तो मैं ये लाइनें जरूर बोलती हूँ, तो ये 89.6 के व्यूअर्स के लिए और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए,
2: हम भी करते हैं हमारे लिए।
0: थैंक यू, थैंक यू। चल

0: आवाज है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आज आप आई, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने दिया, और गाइज आपने हमारे वीडियोस डेफिनेटली देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी भी देख सकते हो। मैम इंस्टाग्राम आप बता दीजिए अपना, जो हमारे लिसनर्स हैं जो ब्यूटीफुल आवाज सुन रहे हैं वो देखना भी चाहते हैं ब्यूटीफुल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम पे अपूर्वा 65 से जा सकते हैं, अपूर्वा शर्मा भी डालेंगे तब भी आ जाएगा अपूर्वा 65 से। इसके अलावा अगर आपको जिम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फ्री फिटनेस टिप्स चाहिए तो हमारा पेज है फेसबुक पे द अल्टीमेट फिटनेस जिम के नाम से, TUFG के नाम से।
0: और बाकी अगर इनका पेज ना दिखे तो आप हमारे ऑफिशियल पेज पे आई FM मुरादाबाद 89.6, वहाँ पर एक वीडियो देखिए जो मैम के साथ कोलैब है, वहाँ से भी आप मैम के अकाउंट में जा सकते हैं।
1: राइट,
0: जाने से पहले कोई एक मैसेज आज मुझे लगता है भाई होना चाहिए, है ना?
2: जाने से पहले
0: हम दोनों लड़कों के लिए एक मैसेज, आई डोंट नो इसको पतला होना है बट मुझे नहीं पता, बट मुझे थोड़ा सा हेल्दी होना है।
2: पर मैं उससे पहले कहना चाहूंगा, जैसे मैम ने बोल दिया कभी अलविदा ना कहना, तो फिर हम भी कहना चाहेंगे अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी बनाने।
0: भाई इसका चालू रहेगा, एक काम करते हैं हम शुरू करते हैं तो प्लीज मैम।
1: अच्छा ऐसा कैसे है कि मतलब आप तो बड़े सोफिस्टिकेटेड से फन लविंग एंड ऑल, ये इतने फ्लर्टिंग में
0: यार देखो अपना एक जोनर होता है पूरा जी, मैं आपको बताऊं तो इसका नाइट का शो है, तो ये रात में जो लोग खाना खा रहे थे वो भी रोमांस में नृत्य करते हैं इसकी बातें सुनकर। तो ये एक्चुअली बना है इसलिए, और होते हैं हर इंसान में कोई स्पेशलिटी होती है, हर इंसान हर
2: चीज जान की चांदनी तुम्हें पसंद करने लगे तो इंसान को ऐसा बनना पड़ता है, तो चांद की चांदनी मुझे पसंद करती है इसलिए मैं थोड़ा फ्लर्टिंग।
0: अभी शरद पूर्णिमा आ रही, तू जाके चांद देख लो, तो
2: हम चांदनी देखूंगा भाई,
0: चांदनी जो भी है व्हाटएवर। तो अभी हम ये कह रहे थे मैम, तो
2: एक प्यारा सा मैसेज
1: आप दोनों के लिए, ये मैसेज है कि आप दोनों बिल्कुल मुझे मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट लग रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम है, आप इक्विपमेंट्स अपने घर पे आके रख ले, मेरे से पूछ लें किस तरीके से यूज होना है, आपके पैसे वहाँ बच सकते हैं, लेकिन आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ फिटनेस,
0: नो एक्सक्यूजेस। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं यार कल पक्का करूंगा, मैं कहीं मेरी मैं भी ऐसा करता हूँ लेकिन वो कल आता ही नहीं है,
2: अगले हफ्ते जरूर ज्वाइन करूंगा।
1: इसके लिए तो इसके लिए इसी के
0: ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं, उनको कुछ कहना चाहूंगा
1: इसी के लिए शायद हम आज यहाँ बैठे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जो लोग ये कहते हैं ना कल आएगा कल आएगा कल आएगा, तो टुमारो इज नेवर, आज जो कर लिया
0: जो करना है
1: आज ही करना है,
0: आज इंटरव्यू आज ही करना था, इन्होंने मेरे को बोला भाई कल मत कर आज ही करना है, आज ही करना है,
1: बिकॉज
0: वो आज ही हुआ।
1: हाँ क्योंकि वो टलता है तो फिर टलता चला जाता है, तो फिटनेस को मजाक ना ले सभी लोग, आप प्लीज कल ना सोचे आज अभी, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो तो तुरंत भाग के जाकर रजिस्ट्रेशन करा के आए जिम में,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: और फीमेल्स को भेजे हमारे पास और मेल्स जाम,
0: वेरी नाइस। चलो भाई राज कुछ कहना चाह रहे हो पूछना चाह रहे हो?
2: फिलहाल देखो ऐसा है ना कि आनंद भैया हो गए बहुत सारे सवाल,
0: एग्जैक्टली
2: है ना, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी भावनाओं में बहूं, तो एक काम करते हैं मैम को थोड़ा सा
0: फ्री करते हैं अभी आज के लिए, एंड सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट आपकी फिटनेस में जो आप इतना अच्छा रॉक मचा रही हैं स्पेशली विमेंस के लिए, हमारी तरफ से हमारी टीम की ओर से है ना हमारे रेडियो स्टेशन की ओर से बहुत बहुत बधाइयां, एंड आई एम श्योर आप आगे भी ऐसी रॉक मचाती रहेंगी, एंड मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी जरूर आएंगी, ठीक है, आपके अल्टीमेट फिटनेस जिम को बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: थैंक यू सो वेरी मच। और आप
0: जी राज का ख्याल रखेंगे हम, आप दोबारा
1: राज और आनंद आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम 89.6
0: FM। एक चीज और मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी टू से, अपूर्वा जी के बारे में जाने से पहले, ये ना रेडियो फैन भी बहुत अच्छी है, ये बहुत टाइम से रेडियो सुन रही है, तो रेडियो लवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी आवाजें आप गाड़ियों में सुनती हैं, आज आप लाइव हमें देख रही हैं, हमारे साथ बैठी हैं, सो कैसा फील?
1: वही मैं बोल रही थी कि मतलब इसलिए मैं आप लोगों को थैंक्स करूंगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो कई बार ऐसा होता है हम हाथ में मोबाइल नहीं ले पाते हैं या स्क्रीन पे नहीं बैठे होते हैं, तो गाड़ी जो चलाते हैं हम वो टाइम हमारा बड़ा ना वेस्ट सा टाइम होता है डिस्टेंस को मेंटेन करने के, उस वक्त हम ना कोई फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं ना किसी से ज्यादा कॉल पे बात कर सकते हैं, तो ये जो 89.6 से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और जो टाइम टू टाइम आपने ये नया इनिशिएटिव लिया ना, किसी भी अच्छे एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या फिर कोई डॉक्टर्स हैं या कोई फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, ये जो लगातार आप बुला रहे हो, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं उस टाइम अगर हमें कोई सुनने मिले तो एक तो बहुत मजा आता है, हमारा टाइम पास हो रहा है बहुत अच्छा,
0: और इन्फॉर्मेशन
1: मिल रही है और हमें डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं तो भाई बहुत बिग फैन हूँ रेडियो की, और मैं मुझे इतना मजा आता है आरजे आनंद और आरजे राज को सुन के, मेरा तो दिन बन जाता है सीरियसली। तो मैं आप सबसे भी बोलूंगी कि अभी जिन लोगों ने रेडियो 89.6 सुनना शुरू नहीं किया है वो सुनना शुरू कर दे, आज मुझे इस स्टूडियो में इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, इतना मजा आ रहा है, आप लोग सुनेंगे तो आपको कितना मजा आएगा
0: सीरियसली। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा मत बोलना नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे।
1: अकेले
0: सो मच, बंद करते हैं इस पॉडकास्ट को, सुनने वालों को लगेगा गाना नहीं आया, पूर्वा जी ने इतना अच्छा सुनाया, तो चलिए ये वाला गाना अब हम आपको सुनाएंगे। मैं और
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
8: इन्हें सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
9: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
8: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
10: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
8: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
8: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
10: टायर लो सोना जीतो।
11: क्या?
10: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
12: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
9: अपोजिट
12: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
13: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: कह दूं तुम्हें
7: हाँ
6: या चुप रहूं
7: ना,
6: दिल में मेरे आज क्या है?
7: क्या है?

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपका दोस्त अखिल और मेरे साथ है रीना। रीना कैसी हैं आप?
1: बहुत बेकार।
0: क्यों आप बेकार क्यों हैं? आपके पास कार
1: नहीं आ रही है।
0: अच्छा, लाइट नहीं आ रही है।
1: हाँ।
0: मैं तो सोचा था आपके पास कार नहीं है, इसलिए कहा कि मैं तो बेकार हूँ।
1: कार वार का कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चलाना ही नहीं आता तो कार का क्या करना।
0: ये बात तो सही कही, लाइट आ जाएगी, लाइट भी जाएगी, थोड़ी देर के लिए गई है वापस आ जाएगी।
1: अरे थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे हो गए लाइट नहीं आ रही है।
0: कोई बात नहीं, अब जब तक लाइट नहीं है तब तक हम अपनी बातें करते हैं। आज का जो शो है वो दिलवालों के नाम है, प्यार दोस्ती और वही ब्रेकअप और थोड़ी सी जिंदगी के
1: करवाते रहो बस आप,
0: थोड़ी सी
1: करो।
0: दिल जब जब जोड़ेंगे तभी ना, जब टूटा हुआ दिल को ही तो जोड़े आएगा। और जिंदगी के कुछ खूबसूरत सफर के नाम भी आज करेंगे अपने साथ। ये बताओ रीना, प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है क्या?
1: है बिल्कुल, अगर अच्छे इंसान से हो जाए तो,
0: क्या बात कही है,
1: वरना कब्र की दीवारें खोदते रहो आवाज नहीं पहुंचती है।
0: बहुत सही कहा आपने। एक थोड़ी सी एक छोटी मोटी सी शायरी मेरे पास आ रही है, कहो तो सुनाओ। तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी बातें मेरी जान बन गई, कुछ इस तरह बस गए हो दिल में कि तेरे बिना हर खुशी वीरान बन गई।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी शायरी रही आपकी। और आप यूं ही लोगों का दिल जोड़ते रहिए, क्योंकि दिल टूटे दिलों को जोड़ना बहुत मुश्किल है।
0: क्या बात कही। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ख़ास है तो आज उसे ज़रूर बताएं कि वो आपके लिए कितना ख़ास है और मैसेज करें 9837896896 पे।
1: बिल्कुल सही कहा। म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ और अखिल जी मेरे साथ है, मतलब मैं इनके साथ हूँ क्योंकि ये शो इनका है, दिल की बात है, दिल तक पहुँचाने के लिए हम आ जाते हैं आप सभी के बीच। और आज हम बात करने वाले हैं यानी कि दिल को, जो खून से नहीं दिल से रिश्ता बनाया जाता है।
1: क्या बात कही आपने।
0: और जो मुझे लगता है कि दिल से जो रिश्ता कनेक्ट होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है।
1: ये बात भी बिल्कुल सही कही आपने। क्यों ऐसा, क्यों कि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, क्यों?
0: क्योंकि उसके अंदर ना, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता है कि इससे, मतलब सबसे पहली बात तो कि वो आपको एक दोस्त बन जाता है। और दोस्त, जब दोस्ती करी है तो उसमें सोचने वाली बात क्या?
1: बिल्कुल सही,
0: सोचने वाली बात होती है वो दोस्ती नहीं होती है।
1: तो वही तो होता है ना, दोस्ती भी वही रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से बनती है। और सच्चा दोस्त वही है जो आपकी हर हंसी के पीछे का दर्द भी पहचान ले।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा मुस्कुराने का।
0: लेकिन आजकल लोग ना हजारों फॉलोअर्स रखते हैं लेकिन सच्चे दोस्त बहुत कम।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि आज की तारीख में आपके पास फॉलोअर्स इतने हैं कि अगर आप देखें तो कमी नहीं पड़ेगी, इतने सारे फॉलोअर्स आपको कर रहे हैं, मगर उसमें से दोस्त शायद इक्का दुक्का होंगे आपके पास।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: एक अच्छा जो दोस्त होता है हमेशा, रीना जी, एक पूरी जिंदगी बदल सकता है आपका।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने।
1: वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, लेकिन दोस्त नहीं बदलते,
0: बस वक्त के साथ और भी खास हो जाते हैं।

0: बिल्कुल
1: ना?
0: सही कहा, बिल्कुल सही।
1: क्या बात है।
0: तो करिए अपने उस खास दोस्त को आज मैसेज, हमें करिए मैसेज, हम उस खास दोस्त के लिए कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, या आपने कुछ कहना चाहते हो उस खास दोस्त के लिए तो आप हमें मैसेज करें, हम शेयर करेंगे 9837896896 पर।
1: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा नंबर है और इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी दिल की कहानियां सुना सकते हैं। फिलहाल कुछ म्यूजिकल ब्रेक।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज

0: दोस्तों, समय की बात करूं तो 9:48 हो चुके हैं और कभी कभी ना कुछ गलतियां करने से ही आपको अच्छी सीख मिलती है। इसीलिए कभी भी हम गलती कर देते हैं ना तो उसका रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप सीखते जरूर हो वहां से, तो इसीलिए अगली बार आपसे गलती हो जाए तो हमने सोचना नहीं है कि हमने गलती भी करी है। श्रोताओ, और बताइए जी।
1: चलिए, इस गलती की तो सज़ा मिलेगी बाद में। अभी तो ये बात है कि हम बात कर रहे थे रिश्तों की, प्यार की, और उस इस खास प्यार की भी जो आपके साथ हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ा होता है, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। तो अगर हम बात करें एक स्पेशल गर्ल की, तो हर लड़के की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की ज़रूर होती है जो उसकी दुनिया बदल देती है।
0: क्या बात है,
1: और उसी
0: आपने बदली है, इसका मतलब है ना?
1: वो हम बाद में बताएंगे हमने क्या बदला है, नहीं बदली है। और उस लड़की के लिए ही, मतलब उस ख्याल के लिए ही आपके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो लड़की नहीं, मेरी दुआ है, मेरे हर दर्द की दवा है। जब भी उदास होता हूँ मैं, उसकी मुस्कान ही मेरी वजह है।
0: क्या बात है। और सबसे बड़ी रिश्तों में ये है कि हर लड़की चाहती है उसको रिस्पेक्ट मिले, अंडरस्टैंडिंग हो, उस प्यार के अंदर समझ हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके दिल से कनेक्ट होता है, आपके भावनाओं से कनेक्ट हो, तो प्यार तो असली वो माना जाता
1: बिल्कुल सही कहा आपने रीना जी। और दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि खूबसूरती चेहरे में नहीं, सोच और व्यवहार में होनी है। अगर वो खूबसूरती आप चेहरे में ढूंढ रहे हैं, तो मतलब आप एक तरीके से बस छलावे पे हैं। और अगर
0: मतलब।
1: आप उस
0: प्यार मुझे लगता है कि खूबसूरती देखकर नहीं होनी चाहिए। आई नो कि आप देखोगे लड़की कैसी है, लेकिन सूरत और सीरत में फर्क होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: सूरत ढल जाता है, सीरत नहीं ढलता है।
1: तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी स्पेशल गर्ल है, तो उसे आज एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज ज़रूर भेजिए। और सुनते रहिए मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।
0: और श्रोताओ, आपके जिंदगी में भी कोई लड़की है तो यार उसको भी भेजो यार प्यारा मैसेज।

0: नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद एफएम। गुनगुनाते रहिए, बजाते भी रहिए। हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं रीना जी, और थोड़े से मैसेज प्यारे प्यारे से जो है आज हम पढ़ते हैं अपने श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल, वो तो हम डेली पढ़ते हैं।
0: हाँ, मतलब आज मैसेजेस जो हैं, दो तीन मैसेजेस हैं ये। पहला है सोनिया जी का, जो मुरादाबाद से ही हैं। वो लिखती हैं कि मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है वो मेरी माँ है।
1: क्या बात है,
0: क्या बात कही उन्होंने, माँ से बड़ा कोई दोस्त ही नहीं होता। सोनिया जी बहुत सही बात,
1: बिल्कुल सही कही है। देखिए जिंदगी में ना एक जो निस्वार्थ प्यार जिसको बोलते हैं वो सिर्फ माँ करती है, और बाकी यार सब प्यार में ना किसी न किसी को स्वार्थ जरूर होता है, तो सिर्फ निस्वार्थ तो प्यार आपसे माँ ही कर सकती है। और अगला मैसेज किनका आता है?
0: अगला मैसेज है रोहित जी का है, ये संभल से बात कर रहे हैं।
1: क्या बात है जी,
0: कह रहे हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कहना चाहता हूँ कि वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
1: क्या बात है,
0: क्या बात है रोहित जी, बहुत बढ़िया आपने तो संभल से भी बहुत संभल संभल के बात बोली है। ये
1: जिगरा होना चाहिए बात करने के लिए।
0: एक है आयुषी रामपुर से, इनका रहा ब्रेकअप के बाद भी मैंने खुद को संभाला है और अपने सपनों पर फोकस किया है।
1: क्या बात है जी,
0: आयुषी जी मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आप फोकस कर रहे हैं अपने सपनों पे, बिल्कुल सीरियसली इसे एक हिम्मत के साथ और एक डेडिकेशन के साथ जरूर करिए। जो भी आपने सपना देखा है ना वो जरूर पूरा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि जिंदगी में जब कुछ चीजें हो जाती हैं तो ये नहीं कि आपको उसके पीछे भागना है, बल्कि अपनी जिंदगी में ग्रो करना है, अपने आगे बढ़ना है। अदरवाइज आप उस चीज को लेकर सोचते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में।
0: अरमान साहब कहते हैं मुरादाबाद से, ये एक मैसेज हमारे पास अरमान साहब का है, दोस्ती और प्यार दोनों जरूरी हैं, लेकिन खुद से प्यार सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तो दोनों चीजों में फर्क ही नहीं पता चलेगा।
1: लेकिन आज के टाइम में हम कर नहीं पाते ना, बात तो ये खुद के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते हम, सोचते आज ये करेंगे वो करेंगे लेकिन सोचते ही रह जाते हैं।
0: ये बात भी है। इसके लिए एक मेरे को ने एक छोटी सी मोटिवेशनल एक शायरी में कहना चाहूंगा, गिर के उठना सीख लो, हालात से लड़ना सीख लो, जिंदगी हर दिन नया मौका देती है, बस खुद पर भरोसा करना सीख लो।
1: अगर अच्छी बात की आपने,
0: अगर आपको प्यार मिला है ना तो उसकी कदर कीजिए, दोस्त मिले हैं तो उन्हें संभाल के रखिए।
1: और जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन में अगर आपसे नोक झोंक हो जाती है थोड़ी सी तो वहाँ झुकना बेटर है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ईगो आता है और आपका अच्छा दोस्त है तो वो आप सोचिए कि आप अपने दोस्त को खुद से दूर कर रहे हैं। चलिए फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होंगे और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत।

0: अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक। चानन भेल विषम सर्रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तू जाने ना आतिफ असलम की आवाज़ में, और आज हमने बात करी है प्यार की, दोस्ती की, नफरत की, ब्रेकअप की और कुछ मोटिवेशन की भी। कहते हैं ना, रिश्ते बनाना तो आसान है मगर उन्हें निभाना एक कला होती है। हम रिश्ते बना तो आसानी से लेते हैं, मगर जब हम उन्हें से निभाने पे आते हैं तो कई सारी कठिनाइयाँ, कई सारी मुश्किलें हमारे साथ आती हैं कि हाँ, किस वक्त पे, कैसे वक्त पे उन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। और जो लोग आपके साथ हैं ना, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि वक्त जो है दोबारा नहीं आता। और जो लोग आपके साथ किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, तो थोड़ी सी तो कद्र उनकी बनती है, क्योंकि कद्र करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, कम से कम अगर मैं इनके काम आया हूँ तो ये भी मेरे काम आएंगे। तो इस वक्त को ना थोड़ा सा अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि जो कहते हैं ना, गुजरा हुआ वक्त दोबारा नहीं आता, तो सेम इसी के साथ ऐसे ही रहता है। और मैं चलने से पहले एक आखिरी शायरी आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा। जिंदगी हर पल कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो हर हाल में मुस्कुरा लेता है, मंजिल उसी के कदम चूमती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने जो अपने सपने हैं, उन सपनों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब तक उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उन्हें पाएंगे कैसे। हम सब लोग आपसे फिर मिलेंगे एक नए अंदाज और नई बातों के साथ, कल रात 9 बजे दोबारा। अभी तो रीना जी जो हैं पहले सोने चली गई हैं, तो कल रात उन्हें जल्दी बुला के एक साथ दोबारा से करेंगे प्यार भरी बातें। मिलते हैं मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, गुनगुनाते रहिए और बजाते रहिए।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: एक नए इतिहास के
4: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।
5: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
4: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत,
5: कनेक्टिविटी से समृद्ध। यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।
3: 9 साल विश्वास के, एक नए इतिहास के।
6: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: सके। नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर।
1: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
0: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत।
1: कनेक्टिविटी से समृद्ध, यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।